0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरी खुशी की लहर देख रहे हैं आप, और इसके पीछे का कारण भी बहुत साफ है, साफ इतना साफ है कि भाई टेक्निकल ग्लिच हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। फाइनली चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, फाइनली आपके लिए एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, और अब मेरी आवाज़ सिर्फ फ्रिक्वेंसी वालों को नहीं, एप्लीकेशन वालों को भी परेशान करने वाली है, क्योंकि मैं हूं आपकी आर्जुन अति और आप सुन रहे गुड मॉर्निंग गोंडा, और ये है आपके मॉर्निंग वाला शो आपके अपने एफएम रेडियो कैनस 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और हम करने जा रहे थे आपके साथ एक छोटा सा गेम। आप बॉलीवुड के शौकीन होंगे, आपने बॉलीवुड के कई गाने सुने होंगे, प्लस बॉलीवुड के बड़े सारे डायलॉग्स भी बोले ही होंगे, और बॉलीवुड के डायलॉग्स बोलते बोलते बोलते बोलते जैसे हमने इस गेम को अनाउंस किया था ना, हमारी एक होस्ट हैं, या फिर कहें तो हमारी फिलहाल के लिए एक गेस्ट है जो मॉर्निंग वाले शो में आई है, जिन्होंने गेम का नाम सुनते ही घर द्वार छोड़ के सीधे स्टूडियो में ही एंट्री कर ली है, उनसे भी मिलते हैं। क्या नाम है भाई आपका?
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
0: दोस्त बहुत अच्छे हैं। ये बताइए, गेम का नाम सुन के आप यहाँ आई थी या मेरी आवाज सुन के चली आई थी?
1: आपकी आवाज सुन के आई थी, और इसमें इंटरेस्ट
0: तारीफ करने के लिए या कुछ और था इसमें?
1: मैम गेम आपने कहा कि आप खिलाने जा रही हैं, तो हम सोचे कि हम भी चले खेल लें एक बार।
0: एक नहीं, हम एक बार नहीं, हम काफ़ी बार खेलने वाले हैं। तो लिसनर, क्या आप तैयार हैं? क्या आपको पता है बॉलीवुड के कुछ वो डायलॉग जो बहुत फेमस हैं, जिनको आपने कभी ना कभी बचपन से लेकर अभी तक ज़रूर सुना होगा? अगर आप बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों के शौकीन इंसान हैं तो आप मुझे बताइएगा, प्लस कुछ आपको आवाज़ें भी मिलने वाली हैं जिनमें हम आपको बताएंगे, यानी कि आप हमको बताएंगे, हम आपको आवाज़ सुनाएंगे और आप हमें बताएंगे किस वो एक्टर का है, किस एक्टर की आवाज़ है। आइला, अगर मुझे वो आवाज़ निकालनी आती ना, है ना, अगर मुझे आवाज़ निकालनी आती ना, मैं सबकी छुट्टी कर देती। पूछो क्यों
1: मैम? क्यों
0: क्यों? क्योंकि जब अमिताभ बच्चन का रोल करना होता, हाँ ही करके मैं पहुंच जाती।
1: अच्छा था मैम।
0: SRK का रोल करना होता, किरण करते मैं पहुंच जाती, मतलब उनको मैं मौका ही नहीं देती, और इसीलिए हमसे भगवान जी ने कहा कि नहीं, तुमको ये टैलेंट हम देंगे ही नहीं। तुम लोगों की जॉब खा रही हो।
1: नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है।
0: और ऐसा इसलिए बिल्कुल हो सकता था, बट हमारे फिलहाल हमारे पास चैलेंज नहीं है, तो हमारे पास चैलेंज जो है आपको हंसाने का, गुदगुदाने का, तो वही कर लेते हैं, क्योंकि आप सुन रहे गुड मॉर्निंग गोंडा, और चाहिए चलते हैं गेम की तरफ और देखते हैं आप कितने सारी आवाज़ों को, यानी कि डायलॉग्स को गेस कर पाते हैं।

हां जी, तो आपके लिए पहला डायलॉग है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये बताने वाले हैं आप हमें चैट बॉक्स में कि ये किस जनाब का डायलॉग है, किसने कहा था, क्यों इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। वैसे आपको पता है

0: जी मैम
1: नाम नहीं लेने का, नाम नहीं लेने का, जब तक हमारे लिसनर गेस ना कर ले कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, किसने कहा है, तब तक आप नहीं बोलेंगी।
0: ओके मैम।
1: तो भाई लिसनर, क्या आप गेस कर चुके हैं ये कौन है? और ओके, तो हमारे पास एक लिसनर का कॉल आ भी चुका है, आइए देख लेते हैं वो क्या बताते हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए प्लीज।
2: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ मैडम
1: जी। मुमताज जी बताइए।
2: ये श्री अमिताभ बच्चन की आवाज है। कनेक्टेड।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, आपके लिए क्लैपिंग तो बनती है
2: जी। मैडम और बताइए।
1: ओके, तो सारे गेम अभी आज खेलने वाले हैं, चलिए ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं मैम से। ऐसे छोटे छोटे शहरों में, या कहें तो बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, ये थोड़ा 90s वाला हो गया, ट्रिकी क्वेश्चन। बताइए बताइए, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, ये डायलॉग किसका है? ओके, लगता है मुमताज जी थोड़ा सोच में डूब चुके हैं। मुमताज जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, आपसे मेरा सवाल था कि बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, ये बात किसने कही है, मतलब किसका डायलॉग मारा है?
2: बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी बातें होती रहती है,
1: यहाँ तो आप गलत हैं जनाब, ये अमिताभ बच्चन का नहीं है। आइए देखते हैं प्रेम पांडे जी अभी के हमारे लिसनर जो हैं वो क्या कहते हैं। हेलो।
3: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, आपका नाम?
3: अनु पांडे।
1: अनु पांडे जी, क्या बात है, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में, कैसी हैं आप?
3: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, अभी आपकी आवाज़ सुनकर और भी अच्छी हो गई, और आप इतना अच्छा गेम खिला रही हैं कि और भी ज्यादा अच्छी हो गई, कॉल लगने
1: ओके okay, मतलब प्लस प्लस प्लस प्लस प्लस
3: खुश हो गई।
1: ओके okay, मतलब कि इस तरह से हम कर सकते हैं कि 1+2+3+4+ चलिए आपसे मेरा सवाल है फिर ये कि बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, किसने कहा था?
3: शाहरुख खान।
1: ओ माय गॉड, एसआर के किस फिल्म में कहा था?
3: फिल्म का नाम तो नहीं याद है मैम, लेकिन मैंने फिल्म देखी है और शाहरुख खान ने कहा था, और पहला डायलॉग भी मुझको आता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप कॉल ले रही हो।
1: आज मैं कॉल और मैं चैट बॉक्स दोनों ले रही हूँ, बस आप कहीं भी मुझे अपने जवाब भेज दीजिए।
3: काम कर रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, ओके थैंक यू सो मच, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तारीफ सुबह सुबह में बड़ी अच्छी लगती है।
3: नहीं आप ऐसा काम ही कर रही हैं तो जाहिर सी बात है टाइट तो होगी होगी, जब इतना अच्छा काम करोगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी आपका। चलिए जाने से पहले एक और डायलॉग हो जाए आपके साथ।
3: हाँ,
1: और वो डायलॉग सौम्या पूछेंगी। पूछे पूछे पूछे, लगता है भाई सौम्या जी के होश उड़ चुके हैं।
3: सौम्या जी कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात कर लीजिए।
1: चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। पुष्पा आई हेट टीयर्स।
3: अरे कुमार
1: पक्का? भाई पुष्पा आई हेट टीयर्स लिस्टर, आप चैट बॉक्स में बताइए या फिर आप कॉल करके बता सकते हैं, और ये भी बताइएगा क्या अनु जी ने सही जवाब दिया कि नहीं दिया। आप इंतजार कीजिए, देखते हैं कि आपके जवाब को कितने लोग सही बताते हैं। वैसे आपने क्या नाम बोला था दोबारा बोल दीजिए ताकि हमारे लिस्टर साफ सुन लें।
3: अक्षय कुमार।
1: अक्षय कुमार, पुष्पा आई हेट टीयर्स, अक्षय कुमार बोलेंगे तो कैसा लगेगा?
3: नहीं बोलेंगी
1: आयुषी मैम तो नहीं है फिलहाल के, आयुषी मैम को आने में वक्त लगेगा, हमारे पास सौम्या जी बैठी
3: हैं। सौम्या बोलेंगी।
1: सौम्या जी, अक्षय कुमार की आवाज निकालिए।
3: सौम्या जी थोड़ी सी कोशिश करिए ना, बहुत अच्छा लगेगा।
4: काजल मेरी
1: यो का था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा करो दोनों लोग मिलकर ट्राई करो, तब तक के लिए हम चलते हैं अगले वाले का।
3: ये वाला डायलॉग ना, किरण वाला।
1: जी जी जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया,
3: तुम सिर्फ मेरी हो।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी, आपका दिन अच्छा हो, और अगला जवाब अगर आपको आएगा तो जरूर से कॉल कीजिएगा। पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। और ये डायलॉग किसने बोला है या मुझे चैट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए एंजॉय करते हैं जिस गाने को हमने बीच में ही रोक दिया था, थाम दिया था, मोहित चौहान की आवाज़ में। आप सुन रहे हैं जन्नत 2 से रब का शुक्राना, और इसके बाद अपना गेम कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपने दिमाग के गेट्स को खोल के बैठ जाइएगा, स्टूडियो सुनते रहिए। गुड मॉर्निंग, अपनी आरजी के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 91.6 एफएम पर।

0: और इसी के साथ अगला गाना आपके लिए पेश करते हैं हम डॉन फिल्म से, क्योंकि कुछ देर पहले अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग बताया था हमारे मुमताज जी ने और ये गाना उनके लिए स्पेशली है। तो भाई जो अपने डायलॉग्स बता रहे हैं उनके लिए हम स्पेशली उस फिल्म का एक गाना ज़रूर से प्ले करेंगे, तो इस गेम में पार्टिसिपेट कीजिए और अपना पसंदीदा फिल्म का पसंदीदा गाना सुनिए। स्टे ट्यून्ड, हालांकि वो गाना हम ही डिसाइड करेंगे।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से।

0: आती है?
1: मुझे फिल्म की याद आ रही थी, कुछ कुछ होता है.
0: अच्छा अच्छा कुछ
1: एक बार वापस स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोजा में. मैं हूं आपकी आरचुनती और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM. ये है गोना शहर की धड़कन पर. अगला डायलॉग बोलने से पहले आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और आपके मैसेजेस को पढ़ लेते हैं कि आपने क्या कुछ पैगाम लिख कर भेज दिए हैं, और उसके बाद हम चलेंगे हमारे गेम की तरफ.

0: हां जी, तो प्रीति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो मैं सुन रही हैं बहराइच से, और लिखा है रोज रोज टेक्निकल इशू कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सनरीटा। एंड गुड मॉर्निंग उन्होंने लिखा है मुकेश यादव जी ने, गुड मॉर्निंग यूडी मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। इट्स कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। जॉन हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। के गुप्ता जी हमें सुन रहे तिरंगा कॉम्प्लेक्स से और जुड़कर बोल रहे हैं, प्रिय आर श्रीमती जी गुड मॉर्निंग दिल से। गुड मॉर्निंग आपको भी दिल से, दिमाग से, फेफड़ों से, किडनी से, हर तरह से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ गुड मॉर्निंग गोना में। आज के सॉन्ग सभी बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच, कनेक्ट हो गया ये भी। और यही खुशी मुझे भी होती है। अमिताभ बच्चन बोल रही है हाय। एंड शाहरुख खान, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या होता है पता नहीं क्या होता है, आए क्या होता है क्या होता है? ओ अच्छा, मतलब कुछ कुछ होता है लेकिन पता नहीं क्या होता है। खैर कोई बात नहीं, आप पता करके आएंगे, तब तक के लिए हम आपको देते हैं दूसरा डायलॉग और इसको फुल अंदाज में बोलेंगे, लेकिन सनी पाजी वाली आवाज मेरे अंदर है नहीं। उप्स, माय मिस्टेक। डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख ही मिलती रहती है माय लॉर्ड, इंसाफ कभी नहीं मिलता। ये बताइए किस फिल्म का डायलॉग है, किस जनाब ने बोला था ये? तो हमने कोशिश की है उनकी तरह बोलने की, लेकिन हम बोल नहीं पाए क्योंकि आवाज में वो दम नहीं है, वो खम नहीं है, और दम खम की वजह से थोड़ा सा कम पड़ गया है। ओके, हमारे पास अकेला एक कॉल है, लेट्स सी। हेलो जी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख ही मिलती रहती है माय लॉर्ड, कभी इंसाफ नहीं मिलता। किसने कहा था?
1: सनी देओल ने कहा था, मूवी का नाम है दामिनी।
0: क्या बात है भाई, अनु पांडे जी एकदम सही जवाब आपका।
1: ये मूवी भी मैंने देखी है, मुझको याद है अच्छे से।
0: ऑल राइट, क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब दिया था बाय द वे आपने।
1: और मैं जो पिछला आपने क्वेश्चन किया था ना
0: जी,
1: वो अक्षय कुमार नहीं, उनके ससुर जी थे।
0: याद आया? राजेश खन्ना का डायलॉग था ये, राजेश खन्ना का डायलॉग था शर्मिला टैगोर से, और वो कह रहे थे कि पुष्पा आई हेट टीयर्स।
1: पुष्पा अपनी आंसू पोंछ लो, ये आंसू अच्छे नहीं लगते, उसके बाद बोला था ये।
0: जी जी जी, और हमें लगता है कि आपने पूरा निकाल लिया है, निचोड़ है।
1: मुझको याद आ गया, याद करने लगी कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, फिर याद आ गया
0: कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। ऑल राइट,
1: क्योंकि राजेश खन्ना की मैंने बहुत मूवियां देखी है।
0: ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सही जवाब दिया है, थैंक यू सो मच।
1: ओके मैम।
0: और एक और सवाल, क्योंकि इसका जवाब तो हमें मिल चुका है, तो आइए सवाल बदल देते हैं, डायलॉग बदल देते हैं। और डायलॉग है कि मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है, जहां हर मोड़ पर एक नया मोड़ होता है। क्या बात है, टंग ट्विस्टर।
2: यस मैम।
0: मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है, जहां हर मोड़ पर एक नया मोड़ होता है, ये किस फिल्म का डायलॉग है, ये आप मुझे ज़रूर से बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर, या फिर डायरेक्ट कॉल करके आपके अपने नंबर 6393316429 पर, यानी कि 6393316429 इस पर कॉल करके भी आप अपना जवाब दे सकते हैं। जब तक आपके जवाब आते हैं, तब तक के लिए आइए इन्जॉय करते हैं इस प्यारे से, बेहतरीन से, खूबसूरत से गीत को जो आप सुन रहे हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे से, रुक जा ओ दिल दीवाने। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: सच है कुछ भी नहीं।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो गाना स्लेट 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और भाई अभी तक हम आपके साथ गेम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वक्त है आपके साथ शेयर करने का उस कॉन्टेंट को जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आपके अलावा किसी और के लिए भी बेहद ज़रूरी है। भाई हमारे पास इतनी कितनी सारी बुक्स होती है ना, जिन्हें हम बेच दिया करते हैं रद्दी में, जब भी हम स्कूल से निकलते हैं, जब भी हम कॉलेज से निकलते हैं, या फिर हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, तो उनके पास हर क्लास में कुछ बुक्स होती हैं, कुछ नोटबुक्स होती हैं, कुछ कॉपीज होती हैं और कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं, जिन्हें हम रद्दी के भाव बेच दिया करते हैं। लेकर 150 रुपये में आते हैं और एक एक किलो, दो दो किलो बेच देते हैं, यानी कि एक कॉपी जो 150 रुपये की है उसका एक किलो बना करके पूरा बंडल हम 150 रुपये में बेच के चले भी आते हैं, या फिर कहें तो उससे कम ही हमको मिलता है और हमें लगता है ये हमारे मुनाफे की चीज़ है। लेकिन हाल फिलहाल में एक ऐसे एनजीओ ने काम करना शुरू किया है जो कहते हैं आओ खुशियाँ बांटे, और उनके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा है जो आपसे कुछ मदद चाहते हैं। तो भाई उनकी मदद क्या है हम आपको बताते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आरजी उन्नति के साथ।

0: हां जी, तुम आपको बता दें, राजगढ़ की चार स्कूली छात्राओं ने पुरानी कॉपियों से बचे हुए पन्नों से नोटबुक बनाई है और वो नोटबुक बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों को, या फिर कहें तो बहुत ज़रूरतमंद बच्चों को दे दी जाती हैं। उन बच्चों को जिनके पास पैसे नहीं होते हैं किताबें खरीदने के, कॉपीज़ ख़रीदने के, तो जो कॉपीज़ हमारे पास बच जाती हैं, क्योंकि हम पूरी कॉपी में नहीं लिखते, कुछ पेजेस बच जाते हैं और उन पेजेस को वो निकाल कर उनकी कॉपीज बनाकर उन तक पहुंचा रही हैं जिनके पास कॉपी खरीदने के पैसे नहीं हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनकी वो आर्थिक स्थिति उन्हें परेशान कर रही है। तो वो उन्हें फ्री में कॉपीज दे रहे हैं, फ्री में नोटबुक्स दे रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी नोटबुक है जो खाली हो चुकी है, या आपने अभी अभी कॉलेजेस पास किए हैं, आपने अभी क्लास को अपने जंप किया है, पास किया है, पास आउट हुए हैं, आपके एग्जाम्स ख़त्म हुए हैं, या आपके पास बहुत सारा बंडल है जो कि उन कॉपीज़ का है, उन नोटबुक्स का है जो खाली पड़ी हुई है, जिनमें पेजेस में आपने कुछ भी नहीं लिखा है, तो उनको फाड़ कर एरोप्लेन बनाने से अच्छा है, उनको फाड़ कर बोट बनाने से अच्छा है, उन्हें इधर उधर बिछाने से अच्छा है, या फिर रद्दी के भाव बेचने से ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप उन्हें किसी को दे देते हैं। किसी को देने का मतलब है आओ खुशियाँ बांटें, ये वो लोग हैं जो आपसे आपकी बुक्स ले रहे हैं। यूँ तो मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जो आप आम और लीची इस गर्मी के मौसम में खा रहे हैं, आप उसे ज़रूर दें, उसे ज़रूर डोनेट करें, जिससे हम पेड़ लगा सकें। और हाल फिलहाल में एक और नई चीज़ चल रही है और इसमें ही आपने बात की आज डोनेशन की। लेकिन ये डोनेशन करना कहाँ है, कैसे करना है, तो आइए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। आओ खुशियाँ बांटें, अपनी पुरानी पुस्तकों का, यानी कि अपनी पुरानी नोटबुक्स का आप दान करने जा रहे हैं, डोनेट करने जा रहे हैं किसी की मदद के लिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप स्थानीय शाखाओं से जुड़ सकते हैं। अगर आप उनके आसपास रहते हैं तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनके लोगों से जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। आपके निकटतम योजना समिति और छात्र समूह के साथ आप जुड़ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, और उसके बाद डायरेक्ट अपने शहर में जहाँ पर उनका कार्यस्थल है आप वहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और अगर आप बहुत दूर रहते हैं, दूर का मतलब है अगर आप गोंडा, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर ऐसे शहरों से सुन रहे हैं या ऐसी जगह से सुन रहे हैं जहाँ से बहुत दूर है राजगढ़, और वहाँ से आप अपनी बुक्स को डोनेट करना चाहते हैं, आप किसी का भला करना चाहते हैं, तो आप उन्हें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है आओ खुशियाँ बांटे, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके उन्हें आप बता सकते हैं और वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे कि जो आपकी बुक्स हैं उनकी मदद कैसे करने हैं और आपको कैसे डोनेट करना है। मेरे ख्याल से ये एक मुहिम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकें, आप चाहते हैं कि आप लोगों की मदद कर सकें, उन छोटे छोटे बच्चों के सपनों को पंख लगा सकें बिना कुछ करें। हमें जब भी किसी बच्चे को देखते हैं होटल्स में काम करते हुए, छोटे छोटे ढाबाओं पर काम करते हुए, तो हमें लगता है यार काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता। अब इस बार आपके हाथ में मौका है कि आप कुछ करके दिखा सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो पुरानी कॉपीज पड़ी हैं जिनमें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिनको आप दिवाली की सफाइयों में या तो रद्दी वाले को बेच देते हैं या तो उनको फाड़ के एरोप्लेन बना देते हैं, रोटी के नीचे बिछा लेते हैं, जो कि एक गलत तरीका भी है क्योंकि उनमें जो इंक होती है वो कहीं ना कहीं कैंसर के कॉजेज भी क्रिएट करती है, तो उनको फाड़ने से अच्छा है, उनको फेंकने से अच्छा है, उन्हें रद्दी में बेचने से अच्छा है कि आप किसी के सपनों को पूरा करने के लिए उसे डोनेट कर दें। ये पॉइंट आपको कैसा लगा, ये मुहिम आपको कैसी लगी, ये कॉन्टेंट आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर से बताइएगा। खैर, क्या आप जा रहे हैं अपनी बुक्स को डोनेट करने? क्योंकि भाई मैं तो जा रही हूँ। इस बार सफाई में जो भी बुक्स निकलेंगी, अगर उसमें से कोई भी पेज है जो अभी भी फ्री है, जिसमें से 15-20 पेजेस अगर किसी भी नोटबुक के बचे हुए हैं, तो भाई आरजी होती तो चलिए डोनेट करने। आइए सौम्या से पूछ लेते हैं, क्या वो डोनेशन में काम करने वाली हैं?
1: जी बिल्कुल मैम, क्योंकि बहुत बच्चों का सपना होता है, बहुत गरीब बच्चों जो होते हैं वो अक्सर किताबें नहीं ले पाते हैं, तो मैं भी कहना चाहती हूँ अपने लिसनर से कि वो ज़रूर करें ये डोनेट, क्योंकि उनके सपने पूरे हो सकते हैं आपके थोड़ी सी मदद करने की वजह से।
0: बिल्कुल बेशक, और ये मुझे ना सबसे खूबसूरत बात भी लगती है, आजकल जहाँ हम कहीं ना कहीं सरकार का इंतज़ार करते रहते कि सरकार कुछ करेगी, वहीं पर कुछ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, जो डॉग्स के लिए काम कर रहे हैं, जो एनिमल ब्लड बैंक में डोनेशन दे रहे हैं, जो किताबों के लिए डोनेशन पर काम कर रहे हैं, और वो आपकी बस थोड़ी सी मदद चाहते हैं, पैसे नहीं चाहते, कोई प्रमोशन नहीं करना चाहते, वो बस इतना चाहते हैं कि जब वो कोई काम करें जो किसी की भलाई के लिए हो, समाज के सुधार के लिए हो, बच्चों के लिए हो, या फिर हम अपनी नदियों को साफ कर रहे हों, तो आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ी सी मदद ज़रूर करें। आइए लेते छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, और जाने से पहले आपके मैसेज को पढ़ने वाले हैं और एक खूबसूरत सी बात और बताने जा रहे हैं आपको, जो कि ये है कि अगर आप सफ़र पे निकलने जा रहे हैं तो इस वक्त आपके आसपास कुछ बीज हैं जो बहुत आसानी से उग जाते हैं, जिसमें नीम के बीज आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग ओना अपनी आशीर्वती और मेरी को होस्ट सौम्या के साथ आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, तो भाई आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आरजी मोदी के साथ, आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन पर। यूं तो वक्त होता जा रहा है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी गुहार मेरी भी है, सरकार की भी है, एनजीओ की भी है, लोगों की भी है और आने वाली जनरेशन की भी है। और वो ये है कि अगर इस वक्त आप निकल रहे हैं किसी भी सफर पर, तो आपके आसपास आजकल नीम की निबोरी बहुत ज़्यादा गिर रही है, यानी कि नीम के जो सीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो उनको फेंकने की गुस्ताखी ना करें, प्लीज़ उन्हें उठाकर अपने पास रखें और उन्हें छोटी छोटी बॉल्स में, मिट्टी में कन्वर्ट करें। और जब अपने साथ निकलें तो उन्हें भी लेते जाएं, रास्ते में इधर उधर फेंक दें, जिसके बाद वो उग जाएंगे जब बारिश होगी। और ये गुहार आपसे हर वो इंसान कर रहा है जो पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि मुझे फॉलो करो, लाइक करो तो मैं एक पेड़ लगाऊंगी आपके नाम का, ना ना ना ना, ये सब काम हम नहीं करते। क्योंकि कुछ टाइम पहले सेम काम विजय ने भी किया था। विजय जो फिलहाल के लिए सीएम है और हमारे फेवरेट एक्टर भी माने जाते हैं साउथ इंडस्ट्री से, उन्होंने भी सेम काम किया है। वो सीड बॉल्स को आसमान से बिखेर रहे हैं, और सिर्फ हमारा देश ही नहीं, बाकी दूसरे देश भी यही काम कर रहे हैं। लोग अब हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, मिलियंस ऑफ बॉल्स जिनके अंदर बीज होते हैं, अंकुरित होने वाले बीज होते हैं, उन्हें आसमान से बड़े बड़े जंगलों में फैलाया जा रहा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अमेजोन के जंगल के जो पेड़ खराब हुए हैं, जो हमारी बदौलत नेचर को नुकसान पहुंचा है, उसको ठीक करने की एक कोशिश है। इस कोशिश में आप भी साथ देख सकते हैं। आपके पास भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, आप फल खाते हैं फिलहाल के लिए, जिसमें आप लीची खा रहे हैं, आप आम खा रहे हैं, ये वो फल हैं जिनको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास जगह नहीं है, तो इन्हें उस इंसान तक ज़रूर पहुंचा दें जो पेड़ लगाने का काम कर रहा है, जो आपसे सिर्फ आपके बीज मांगता है, वो भी वो जो आप खाकर फेंक रहे हो। उन्हें इधर उधर फेंकने से अच्छा है सुखाकर अपने पास रख लीजिए और उसे डोनेट कर दीजिए। डोनेशन में आज तक आप सिर्फ पैसे देते आ रहे थे, लेकिन अब ज़रूरत पैसों की नहीं, अब ज़रूरत कुछ और है। ज़रूरत है लोगों को अपने पर्यावरण की बचाने के लिए, क्योंकि भाई आपको हम बता दें, मुंबई जैसे महानगर में 45 दिन का पानी बचा, यानी कि वाटर क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर लोगों के पास पानी मौजूद नहीं है पीने के लिए, बादल नहीं दिख रहे हैं आजकल आसमान में, क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्यों हर एक चीज़ बदलती जा रही है, ये सोचना शुरू कीजिए और सोचने के साथ साथ इस पे थोड़ा काम भी कीजिए। आज तक हमने नेचर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, इससे पहले कि नेचर हमें नुकसान पहुंचाए, आइए नेचर को ठीक करते हैं, प्रकृति को वो चीज़ वापस करते हैं जो हमने उससे ज़बरदस्ती छीनी है। बहुत सारे पहाड़ों पर लोग हैं जो पेड़ों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपने हमेशा से चिपकू आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें औरतों ने पेड़ से चिपक कर पेड़ों को कटने से बचाया, जिसमें बहुत लोगों की जान गई है। और पहाड़ों में आज भी ये आंदोलन चल रहा है। आज भी जब कोई डेवलपमेंट के नाम पर, जब कोई प्रोग्रेस के नाम पर, उन्नति के नाम पर वहाँ पहुँचता है और पेड़ों को काटने की कोशिश करता है, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हम पेड़ नहीं कटने देंगे, हमें कोई बड़े बड़े मॉल्स नहीं चाहिए, हमें कोई बड़े बड़े सिटी मॉल्स नहीं चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, हमको हमारे पेड़ पसंद है। और इसीलिए तो हम भी भागते हैं ना, हमें लगता है कि यार पहाड़ों पे सब अच्छा है, पहाड़ों पे पेड़ है, पहाड़ों में नज़ारा है, हरियाली है, सब कुछ अच्छा है। हरियाली हमारे पास भी थी, लेकिन हमने अपने पेड़ों को खुद काटा है और अब हम धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जिन पेड़ों से, जिन ओशियन से हमें इतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिनसे हमारी ज़िंदगी चलती है, उनको ही बर्बाद करने पर सबसे आगे हम ही रहते हैं। तो इस बार आई होप आप मेरी बात सुनेंगे, मदद करेंगे, अपनी मदद करेंगे, किसी और की मदद ना सही, लेकिन ये आपको पता होगा नेचर आपके साथ भी रहती है। नेचर ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। आप किसी और की मदद ना करना चाहें तो भी आप अपनी मदद ज़रूर कीजिएगा। बढ़ती हुई गर्मी, कम बारिश और पानी के अभाव में जीने से अच्छा है कि पेड़ों को लगाया जाए, अपनी प्रकृति को बचाया जाए, ओशियंस को साफ रखा जाए और मदद की जाए उनकी जो ये काम करना चाहते हैं, यानी कि जो मदद करना चाहते हैं आपके बिना किसी पैसे लिए, क्योंकि आजकल इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी से मतलब नहीं रखता। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे चैट बॉक्स में और आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। हमने लास्ट मैसेज जो पढ़ा था वो मुकेश यादव जी का था जो लिख रहे थे, उन्हें डायलॉग नहीं पता है, कोई बात नहीं भाई, वो डायलॉग राजेश खन्ना का था। एंड इसके बाद माय डियर सिस्टर वेरी नाइस लिखा गया है अनु पांडे जी के लिए, क्योंकि भाई उन्होंने जवाब दिया है। प्रीति जी ने लिखा है कि शायद मूवी है मोहब्बतें, जी नहीं उस डायलॉग की, यानी कि मोहब्बत एक जिंदगी की तरह होती है, हर मोड़ पर एक नया मोड़ है, ये मोहरा फिल्म का डायलॉग है, मोहब्बत का तो बहुत फेमस डायलॉग है, अनुशासन प्रतिष्ठा परंपरा, जिसको आजकल हर कोई जानता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश जी लिख रहे हैं, लगता है जो डायलॉग मुझे पता नहीं वही डायलॉग आज यूडी मैम पूछ रही है। आज ही हम तो बस डायलॉग पूछ रहे थे, अब मुझे क्या पता आपको कौन सा पता है कौन सा नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है जो हमने पूछा वो आपको पता हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन सपनों की रानी आएगी उस दिन तुम्हारी एक कहानी बन जाएगी, मछली पानी में भी तड़प जाएगी। क्या बात है, क्या राइमिंग निकाली आपने, वेरी ब्यूटीफुल। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल जीत लेने वाली, किसी को किताब मिलेगी तो उसके मुस्कान देखने लायक होगी, दिल को एक अलग सा सुकून मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए तो उसका नाम रखा गया है आओ खुशियां बांटे। आई होप आप उनकी मदद करने जा रहे होंगे। यूडी मैम जी, आपके बगल वाले को भी गुड मॉर्निंग, बोलने में शायद बहुत देर कर दी, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, हम आई थिंक आपने बुरा नहीं माना होगा।
1: नहीं मैम,
0: देखा बुरा नहीं मानते हैं।
1: गुड मॉर्निंग मुकेश जी।
0: एंड मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप। टेक्निकल इश्यू के लिए एक बार वापस से माफी चाहेंगे, काफी देर से हम आपने हमें सुना एप्लीकेशन पर, लेकिन आप जितनी भी देर हमारे साथ जुड़े थे रेडियो गार्डन एप्लीकेशन या फ्रीक्वेंसी से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। और इसी के साथ आप चाहेंगे आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना 89.6 FM रेडियो ज्ञानवर्धिनी, आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन अपनी आर जी होती, और मेरी को होस्ट सौम्या के साथ आपका अगला प्रोग्राम है गाँव की कूच, यानी कि आपको आपकी मिट्टी की खुशबू वहां भी मिलेगी जहाँ आप अपने गाँव से दूर होंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।

कभी तो टी-शर्ट से मैचिंग फरारी हो, कभी तो बैंक में करेंसी करारी हो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: राव की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
4: नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जैसा कि आप सभी पहले से ही गांव की गूंज के कई एपिसोड सुन रहे हैं, तो अब मैं गांव की गूंज के नए एपिसोड लेके फिर से आ रही हूं, जिसमें हमारी मुख्य गायिका श्रीमती किरण पांडे की मधुर आवाज में मधुर मधुर गीतों की माला होगी, और जिनका साथ दे रही हैं उनकी सह कलाकार श्वेता सिंह जी।
5: हेलो, मैं किरण पांडे। कितने दिनों बाद हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद है कि हम लोगों का गांव अयोध्या नगरी से होकर पड़ता है। चलो चलो, सरयू मैया को प्रणाम कर लेते हैं।
6: अरे किरण दीदी, क्या दूध जैसा निर्मल पानी है और कितना ठंडा है। हम लोग तो शहर में इतना शीतल जल देखने के लिए तरस गए हैं।
4: हाँ श्वेता, यहाँ की सरयू माँ के जल में इतनी सफेद सफेद लहरें, मेरा तो मन कर रहा है कि चलो हम सब लोग यहाँ पर थोड़ा स्नान करके हाथ मुंह धो लें। अरे किरण दीदी, ये मन में क्या गुनगुना रही हैं? चलिए घाट पे बैठकर इस गीत को गाते हैं। अरे लो, शीला काकी भी यहीं पे है। आओ आओ शीला काकी, सभी मिलकर यहाँ सरयू मैया की जय जयकार करते हैं। तो बोलो सरयू मैया की
7: जय।

0: वाह वाह किरण दी, अति सुंदर, अति मनमोहक और मन को मोह लेने वाला भजन गाया आपने, क्यों समता दी?
1: हाँ हाँ श्वेता, बिल्कुल मन को तो मोह ही लिया। चलो हम लोग यहाँ तक तो आ ही गए हैं, तो अब अयोध्या दर्शन करते हुए अपने गांव की ओर चलते हैं, क्यों किरण दी?
2: अच्छा चलो चलो चलते हैं। ये देखो ये चाय की दुकान। अरे हम लोग चाय की दुकान पर पहुंच गए। और श्वेता तुम्हें कुछ याद आया ये चाय की दुकान देखकर?
0: नहीं किरण दी, अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। समता दी क्या आपको कुछ याद आ रहा है इस चाय की दुकान को देखकर?
1: नहीं श्वेता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है, क्योंकि इतने दिनों के बाद तो हम सब यहाँ पर मिले हैं, तो मुझे तो ये चाय की दुकान बिल्कुल भी नहीं याद है।
2: अच्छा सुनो, मैं सबको याद दिलाती हूँ। याद करो वो सोंधी सोंधी खुशबू अपने गांव की। बहुत दिन बाद हम लोग वापस आए हैं ना अपने गांव की तरफ, तो इसलिए नहीं याद आ रहा है। याद करो वो कुल्हड़ की चाय जो हम लोग बैठ के पीते थे, है ना? तो अरे भैया जरा चाय दे देना तीन, और वो कुल्हड़ वाली चाय देना। अरे छोटू कितना बड़ा हो गया छोटू। अरे छोटू सुनना, जरा सुनो, तीन चाय देना हमें।
3: अरे किरण दीदी आप कितना दिन बाद आवागा है, कहाँ रहे हो आप सब, का हाल चाल है? दीदी चायवा तो हम पिलाई दिए, लेकिन कुछ गौनेवा सुनावे पड़ी।
2: हाँ हाँ क्यों नहीं छोटू, हम तुम्हारी पसंद का कोई गीत सुनाएंगे अभी। चलो चलो सब लोग मिलकर ये गीत छोटू के लिए सुना दें।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं
1: क्यों नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं।

0: वाह दीदी, बहुत नीक गायो आप सब है, हम इतनी बधैया सुनाई दीन जाए।
1: ठीक है छोटू, ठीक है, तुम कहते हो तो एक बधाई गीत सुना ही देते हैं। श्वेता, वो बधाई गीत जो तुम अक्सर गाया करती थी राम जी का, वही सुना दो।

0: दीदी और सोहर कहाँ है हमारा?
1: अरे भाई, सोहर मुझे याद है। और सबको पता है कि सोहर क्यों गाया जाता है?
0: नहीं किरण दी, सोहर के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, थोड़ा आप जरा बताएं।
1: अरे भाई, सोहर मुझे याद है। क्या सबको पता है सोहर कब गाया जाता है? तो सुनो, सोहर तब गाया जाता है जब बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते समय सोहर गाया जाता है, विवाह में भी गाया जाता है, लेकिन सोहर जो मेन होता है वो बच्चा जन्म लेता है तब गाया जाता है। तो एक सोहर मुझे याद है समता, मैं थोड़ा गुनगुनाती हूँ, ठीक है?

0: हाँ हाँ किरण दी, यही सोहर तो हम सोच रहे थे कि आप हमें सुना दें, तो चलो हम सब मिल करके अब यही सोहर सभी गाएंगे, क्यों किरण दी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल।

0: वाह किरण दी, मजा आ गया। अवधी हमारे अवध प्रांत की मुख्य भाषा है, और कुछ भी हो मुझे तो सुन के बड़ा ही मजा आ गया, क्यों श्वेता?
1: हाँ हाँ समता दी, क्यों नहीं, आनंद तो आना ही था। एक तो हम आज सभी सहेलियां मिले हैं अवध में, और उसी में हमारी प्यारी किरण दी की आवाज, आहा क्या बात है। और यहाँ की मिट्टी की खुशबू और किरण दी की आवाज, क्या ही बात है।
0: यह हम सभी जानते हैं कि यह हमारी अयोध्या नगरी एक ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी है, और यह सरयू नदी के तट पर स्थित है, और अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है, एवं प्रभु श्री राम की जन्म स्थली होने के कारण अयोध्या को मोक्षदायिनी एवं हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल भी कहा जाता है।
1: वाह, वो कॉलेज के दिन फिर से लौट कर आ गए हैं, वही मस्ती बिना किसी टेंशन के, सचमुच कितना मजा आ रहा है। किरण दी, अयोध्या कितनी बदल सी गई है।
2: हाँ सच में श्वेता, ये लता मंगेशकर चौराहा, ये राम की पैड़ी, ये तो हमारी भगवान राम की नगरी बिल्कुल मॉडर्न लुक दे रही है। अब तो हर गली घूम कर ही जाएंगे। तो चलो हनुमान गला की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और पुजारी जी के साथ मिलकर हनुमान जी के भजन गाते हैं।

0: वाह वाह किरण दी, बहुत ही मधुर भजन था। और क्या इसी के साथ आपको एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है जो कि हनुमान जी से है और प्रभु श्री राम और माता सीता जी से है, तो क्या किरण दी मैं छोटी सी ये कथा आपको सुनाऊं?
1: हाँ क्यों नहीं, सुनाओ सुनाओ।
0: तो आइए मैं एक छोटी सी ये कथा हनुमान जी की सुनाती हूँ। एक दिन माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, तब तक हनुमान जी आज्ञा पाकर कक्ष में प्रवेश किए तो देखा माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। जिज्ञासा से श्री हनुमान ने माता सीता से पूछा, माते यह आप क्या लगा रही हैं? तो माता सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रभु श्री राम की दीर्घ आयु के लिए अपने मांग में सिंदूर लगा रही हूँ। इसको लगाने से प्रभु दीर्घ आयु रहेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर पर वह नारंगी रंग का सिंदूर लगाकर सभा में प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गए और वहां प्रभु श्री राम जी के पूछने पर कहा, यदि माता सीता जी के एक चुटकी सिंदूर से आप दीर्घ आयु हो सकते हैं तो हमने तो पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया।
2: समता दी की कहानी सुनते सुनते कब हम लोग कनक भवन आ गए पता ही नहीं चला। और किरण दीदी कुछ गुनगुना रही हैं, तो चलिए किरण दी के स्वर में मीठा सा गीत सुन लेते हैं।

0: किरण दी अवध में आई हैं तो सारे गीत अवधि में ही सुना रही हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किरण दी और श्वेता, एक छोटी सी एक और मुझे कहानी याद आ रही है, तो कहिए तो मैं छोटी सी कहानी और सुना दूं।
1: सुना दो, सुना दो।
0: कनक भवन जैसा कि देखने में इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, वह अंदर से भी अति सुंदर और मनमोहक छवियां हैं। और क्या आप सभी को पता है, यह भवन प्रभु श्री राम जी से विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकई जी के द्वारा देवी सीता को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता जी व भगवान राम का महल भी है।
1: अच्छा, तो चलो अब हम लोग चलते हैं। और चलते चलते मुझे एक राम विवाह गीत भी याद आ रहा है, तो हम लोग गाते हुए चलते हैं।

0: कहाँ चलें?
1: चलिए चलिए, अब तुलसी उद्यान के तरफ चलते हैं। वही समता दीदी जो पूरी सब्जी लाई हैं, वो खाते हैं।
2: वाह क्या बात है।
0: अरे वाह, लहसुन की चटनी किसने बनाई श्वेता? मम्मी ने या भाभी ने? और श्वेता बचना बंदर।

0: ये तो पुरानी अयोध्या का वर्णन है। नया घाट लता मंगेशकर चौराहा, यह नई अयोध्या की पहचान है। समता, क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में?
1: हाँ किरण दी, थोड़ा बहुत जानकारी है जो मैं आपको बताती हूँ। जब हम यहाँ पढ़ते थे तब 14 कोसी मार्ग सब कच्चा था, पर अब कितना खूबसूरत बन गया है। ये लता मंगेशकर चौराहा नई अयोध्या की पहचान है। और किरण दी जानती हैं, इस चौराहे पर 40 फीट लंबी और 14 टन वजनी वीणा को स्थापित किया गया है और इसके चारों तरफ 92 कमल के फूल भी लगाए गए हैं। तो किरण दी, आपसे ये गुजारिश है कि लता दीदी के गाए हुए गीतों में से कुछ 4 लाइन आप अपने स्वर में गुनगुना दीजिए।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं समता।

0: वाह वाह किरण दी, लता दी की तो बात ही कुछ और है। और आपने उनके जो गीत गाए हैं आज आपकी आवाज़ में सुन के बड़ा ही अच्छा लग रहा है।
1: और पता है तुम दोनों को कि छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं।
0: तो ठीक है किरण दी, अब की बार हम लोग दीपोत्सव देखने जरूर आएंगे।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पक्का वादा। और पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही।

0: अच्छा अब चलो, अपना गांव हमें पुकार रहा है, वहां की माटी हमें बुला रही है। अब हम लोग गोंडा के नौबस्ता गांव में मिलेंगे। किरण दी और श्वेता, सरयू आरती का समय हो गया है, तो चलिए सभी आरती करके अपने गांव की ओर चलते हैं।
1: हाँ, क्यों नहीं।

0: अरे अरे वेट, ज्ञानस्थली लाइव जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ आपके अपने ज्ञानस्थली डिपार्टमेंट से और सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। सो ये सब आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव में रोज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
8: नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी का। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत से प्रोग्राम को, जो कि स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञानस्थली की खूबसूरत पहल है, जिसके अंदर आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिटनेस पर। फिटनेस ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जिम में भारी वजन उठाते लोग या फिर रैंप वॉक करती हुई जीरो फिगर की मॉडल्स? सही कहा ना, सबसे पहले यही ख्याल में आता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि कोई फिट है तो हमें लगता है लड़कियां हैं तो जीरो फिगर वाली होंगी और लड़के हैं तो बॉडी बिल्डर होंगे या तो वो कहीं भारी वजन उठा रहे होंगे। बट क्या सच में यही फिटनेस होती है? क्या फिटनेस का मतलब बस इतना ही होता है या फिटनेस का मतलब कुछ और होता है, अंदरूनी ताकत या फिर जीरो फिगर? क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं और हमें लगता है कि ये फिट है, या जब भी हम किसी को देखते हैं और उसका वजन ज्यादा होता है तो हमें लगता है ये अनफिट है। बट एक्चुअल में ऐसा तो नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कुछ चीजें वो लोग कर जाते हैं जिनका वजन ज्यादा लगता है, और कुछ चीजें वो लोग कर जाते हैं जिनका वजन देखने में बहुत कम लगता है। और हमें लगता है कि फिटनेस का सीधा एक पैमाना होता है, बट वो नहीं होता। तो आज जानने वाले हैं कि फिटनेस क्या है, जो किसी मॉडल के लिए नहीं, हमारे घर में हमारी माओं के लिए, बहनों के लिए, हमारे भाई के लिए, और जो कामकाजी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकल रही हैं या जो घर में रहती हैं, वो किस तरह से अपने फिटनेस लेवल को चेक करने वाली हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो फिट हैं या नहीं है, और फिटनेस की असली परिभाषा क्या है? क्यों हमारी दुनिया में ऐसा हो गया है कि हर दूसरा इंसान फिटनेस की सिर्फ एक ही परिभाषा निकाल कर बैठ चुका है? अगर आपका वजन कम है, आप दिखने में बहुत पतले हैं, इसका मतलब आप फिट है। बट वहीं पर फिटनेस का दूसरा मतलब ये भी निकल के आता है कि आपका BMR क्या है, यानी कि आपके बॉडी मास इंडेक्स क्या कुछ कहता है आपके बारे में, आपका BMI क्या कहता है आपके बारे में, आपका शरीर क्या कहता है, क्या आप काम कर पाते हैं। यदि फिटनेस रूल से कोई भी अपनी फिटनेस बरकरार रख सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो लोग दिखने में तगड़े होंगे उनकी फिटनेस भी उतनी ही अच्छी होगी, या जो लोग बिल्कुल दुबले पतले होंगे उनकी फिटनेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। कई बार दुबला पतला आदमी वो काम कर जाता है जो शायद एक हट्टा कट्टा आदमी नहीं कर पाता। इसका सीधा संबंध फिटनेस से होता है। आप अपनी फिटनेस को कैसे चेक करने वाले हैं ये जानेंगे आज के आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगिनी में। तो सुनते रहिए मेरे साथ। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं और बात करते हैं फिटनेस के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि फिटनेस क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे कि फिटनेस को टेस्ट कैसे करना है घर पर बैठे बैठे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
9: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
10: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
11: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
12: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
13: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
14: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
15: मतलब?
14: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
16: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
17: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
14: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
15: मतलब?
14: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
16: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजे रती और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। और आज के आपके सेहत के स्पेशल वाले शो में जो हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले, उसमें हम बात कर रहे हैं फिटनेस की। और जैसे ही आजकल ये शब्द हम सुनते हैं ना, फिटनेस, लगता है पतली सी कमर, डोले शोले, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स वाले बंदे, और हमको लगता है ओए ओए यही फिटनेस है। बट क्या सच में यह फिटनेस होती है? या फिर वो महंगी ग्रीन टी पीने वाले लोग जो पहला ही घूंट लेते ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे करेले का जूस मुंह के अंदर चला गया है और बिल्कुल क्या ही टेस्ट आया है। अब ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि भाई इनकी फिटनेस तो क्या ही लेवल पर होगी, बट सच हमेशा इसका उल्टा होता है। तो चलिए जान लेते हैं, थोड़ी सी सीरियस बातें कर लेते हैं मजाक से हटकर, क्या वाकई यही फिटनेस होती है? बिल्कुल नहीं। मेडिकल साइंस कहता है कि फिटनेस का हिंदी में असली मतलब है आपके शारीरिक और मानसिक योग्यता, यानी आपके शरीर के अंदर आप कितने तैयार हैं। अगर आपके पास सिक्स पैक एब्स नहीं है लेकिन सुबह उठकर आपके पीठ में दर्द नहीं रहता, आप चिड़चिड़े नहीं रहते, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और काम की एनर्जी आप में बनी रहती है, तो इन्हें आप फिट कह सकते हैं। बट अगर आपके अंदर एब्स तो हैं, आपके बाइसेप भी हैं, और हो सकता है कि भैया पतली कमर भी हो और वो जो 11 लाइन दिखती है पेट पर वो भी दिख रही हो, लेकिन आप फिट ना हो, क्योंकि आप सुबह उठते हैं तो कभी कमर दर्द, कभी सर दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, चिड़चिड़े से हमेशा गुस्से में रहते हैं। और इसको अगर आप फिटनेस के लेवल पर देखेंगे और सिर्फ ये सोचते हैं कि सेल्फीज में तो हमारी फोटोज बड़ी सुंदर आ रही हैं, पोस्ट कर रहा हूँ बड़ी लाइक्स आ रहे हैं, इसका मतलब मैं फिट हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल साइंस आपको तुरंत नकार देगा और कहेगा कि ना ना जनाब ना, अभी तो आप फिट नहीं हो, फिट करने के लिए थोड़ा सा और मेहनत लगेगी। और इसीलिए हमेशा वर्कआउट के साथ डाइट का नाम आता है कि डाइट कीजिए। अब डाइट में लोग सोचते हैं कि बस जंक फूड खाना बंद कर दो, घास फूस चबाते रहो और इससे हमारी डाइट हो जाती है, जो कि असल खाना होता है। सही मायने में देखा जाए तो सब्जियां और फल खाना असल खाना होता है, जिसको हम हमेशा से खाते आए हैं। बट क्योंकि हमारी जिंदगी में जंक फूड इतना ज्यादा नॉर्मल हो चुका है कि हमें लगता है कि नॉर्मल फूड का मतलब है पैकेट वाले फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहना, समोसे चाट ये सब एंजॉय करना, ये होता है नॉर्मल फूड। और अगर कोई इंसान फलों पर ज्यादा ध्यान देता है, सब्जियां ज्यादा खाता है, तो वो डाइट कर रहा है। अब बताइए कैसी दुनिया में हम रह रहे हैं, जहां पर फिटनेस का मतलब हो चुका है सिक्स पैक्स एब्स और डाइट का मतलब हो चुका है कि घास फूस खाना, क्योंकि असल चीज होती ही नहीं है। सच्ची फिटनेस तो वो होती है जब आप पूरे दिन की भागदौड़ के बाद भी घर पर आए तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान हो, थकान की लकीरें नजर ना आ रही हो। हालांकि आप थक जरूर जाते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी बरकरार है, आप चिड़चिड़े नहीं होते। आपके पास जब आपके बच्चे आते हैं या आपसे कोई बात करने आता है तो आप बौखला कर चिल्ला नहीं देते कि अरे चुप नहीं रहा जाता तुमसे, दो मिनट चुपचाप बैठ जाओ, पूरा दिन का थका हुआ हूं। आप उनसे ठीक से बात करते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं और थकान के चक्कर में आकर लेट नहीं जाते। आराम करना इज अ डिफरेंट थिंग, कि आपने आराम किया है, आपने रेस्ट किया है, आपने पावर नैप लिया है, लेकिन चिड़चिड़े रहना, काम ना कर पाना, उठने का मन ना करना, आलस चढ़ा रहना, ये अलग ही चीज हो जाती है और इसको हम फिटनेस नहीं कहते। तो आजकल की सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई वजन कम करने में लगा हुआ है और वजन कम करके ही लोग सोच लेते हैं कि हाँ हमारी तो फिटनेस बन गई, जो कि ऐसा होता नहीं है। अब भले ही कितनी ही अच्छी पिक्स क्यों ना देख ले, भले ही आप कितने अच्छे कपड़े क्यों ना पहन ले, भले ही आपके अंदर कितनी ही बढ़िया फिगर आपको नजर क्यों ना आ रही हो सकता है आपकी बॉडी शेप अलग हो, किसी का पियर होता है, किसी का एप्पल होता है, फलाना ढिमकाना, आपको हजार टाइप के बॉडी टाइप्स दिख जाएंगे। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर एक बॉडी टाइप को आर ग्लास बनना ही जरूरी होता है और आर ग्लास बनके ही हर कोई फिट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पर सोशल मीडिया के जमाने में यूं तो लोगों ने प्रोटीन, फाइबर और न जाने कितनी ही चीजों को हाइप तो दे रखी है, बट जो असल फिटनेस है उसकी बात कोई भी नहीं करता। कोई कहता है कि सुबह उठ के नींबू पानी पी लो, आपकी फिटनेस बरकरार रहेगी। कोई कहता है कि शहद पीने से फिटनेस बरकरार रहेगी। कोई कहता है शुगर छोड़ दो तो फिटनेस बरकरार रहेगी। अब इस जमाने में जहां हर दूसरा इंसान हमें कुछ ना कुछ नई बातें बता रहा है, तो कुछ आकर ये भी कह देते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पियोगे तो भी बीमार पड़ जाओगे और पानी नहीं पी रहे तो भी बीमार पड़ जाओगे। उस दौर में एक आम इंसान जाए तो जाए कहां और करे तो करे क्या? क्या फिटनेस के लिए हमें सच में सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए? क्या जीरो फिगर दिखना या फिर आर ग्लास बॉडी होना या सिक्स पैक्स एब्स होना यही सब फिटनेस का कारण होता है? इसी के होने के बाद हम फिटनेस में माने जाएंगे कि हम फिट होते हैं, हम काम कर सकते हैं? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है जिस बॉडी बिल्डर इंसान को आप देख रहे हो वो शाम तक घर आते आते आते आते इतना चिड़चिड़ा हो जाता है कि उससे बात करने वाला कोई नहीं, क्योंकि बार बार पर उनका गुस्सा फूट पड़ता है। हो सकता है जिन्हें आप रैंप वॉक करते देख रहे हो, जो अभी तक आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिनकी कमर 25 इंच की हो रखी है और आपको फोटोज में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बट उनके पीरियड्स कभी रेगुलर नहीं होते हैं, उनके हेयर फॉल्स होते हैं, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस रहते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती और इसकी वजह से वो डॉक्टर्स के साथ आए दिन कंसल्ट किया करते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इन सारे ट्रेंड्स को फॉलो करते करते रियल फिटनेस का मतलब भूल जाएं। तो रियल फिटनेस होती क्या है? क्या महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर लेना, जिम में जाके सेल्फीज लेना ये फिटनेस है, या जिम की सेल्फी छोड़ देना ये फिटनेस है? ये सारे सवाल जब दिमाग में चलते हैं तो हमें लगता है कि हम आजकल के इस फेक न्यूज के दौर में रियल चीजों को ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। आजकल अगर कोई कह दे कि थोड़ा सा पैदल चल लो तो लगता है ओए पैदल कौन चलेगा यार, बाइक है, ऑटो है, रिक्शा है, कुछ भी चल सकते हैं, किसी से भी चल सकते हैं। यानी कि पैदल चलना हम छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि जो लोग जिम जाते हैं वो भी अपनी बाइक पे बैठ के जाते हैं, 2 घंटे का रास्ता 15 मिनट में कवर करके 2 घंटे जिम में पसीना बहा के कहते हैं हम तो बड़े फिट हैं। और कोई कोई ये भी कहता है कि 10,000 कदम दिन के पूरे कर लो तो बाकी कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। बट ये सब फिटनेस के एक पैमाने में आते हैं, यानी कि आप अपने आप को फिट करने के बहाने ढूंढ रहे हो। आप खुद को बढ़िया दिखा रहे हो और ये एक अच्छी आदत है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिट हो। फिट होने का मतलब है कि आपका दिल, आपका फेफड़ा, आपकी मांसपेशियां भी स्वस्थ होनी चाहिए, वो भी काम कर रही होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। कई लोग जिम में जाकर हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, तो कई लोग घर बैठे ही कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वॉक कर रहे हैं और इसके बाद भी उनके पास इतनी ताकत होती है कि जिम वाले को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो इसी पैमाने को समझते हुए आज हम जानेंगे कि असल फिटनेस क्या होती है, यानी कि फिटनेस जो आपके शरीर की योग्यता, इस पर मायने रखती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप चार सीढ़ियां चढ़ते हो और आपकी सांसें फूल जाती हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके दादाजी के अंदर नजर आती है, अगर आपने भी 10 सीढ़ियां चढ़ी हैं और आप हाफने लग गए हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने वर्कआउट तो भले ही अच्छा कर लिया है लेकिन आपका शरीर अंदर से फिट बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप में खून की कमी हो सकता है आपको अनीमिया हो, या हो सकता है आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो, या कोई और बीमारी हो जो आप नजरअंदाज कर रहे हो। तो भाई आज फिटनेस टेस्ट तो हम यहीं पे कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो कि लाइव फिटनेस टेस्ट है वो कैसे होने वाला है, घर पे बैठे बैठे फिटनेस टेस्ट कैसे करा जा सकता है। तो आइए बताते हैं कि घर पे बैठे बैठे आप अपने फिटनेस को कैसे टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबकी स्ट्रेंथ, सबका इंड्योरेंस और फिटनेस स्ट्रेंथ जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही लगा था ऑलमोस्ट लोग घर पर बैठकर अपनी इन सारी चीजों को खो चुके थे जिसमें स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और फिटनेस आ रही थी। अगर आप भी चेक करना चाहते हैं कि आप फिट हैं या नहीं हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगिनी। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो एक बार वापस से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने वाले शो स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनसली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आज हम बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य के शो में फिटनेस की, यानी कि जर्नल फिटनेस, जो हर किसी को पता होना चाहिए। फिटनेस पता करने के लिए अब हम जा रहे हैं कुछ टेस्ट करने, कुछ टेस्ट की जानकारी देने, जो आप घर बैठे बैठे अभी कर सकते हो। अब आप भी अगर सोच रहे हो कि घर बैठे बैठे कैसे टेस्ट हो सकता है, यूँ तो सारे टेस्ट जाके लैब में होते हैं, बट हमारे टेस्ट लैब में नहीं होने वाले हैं, आपके बेड पे ही होने वाले हैं। अगर आप कहीं पर हैं और मौजूद हैं, अगर आप बैठे हुए हैं, आपके आसपास कहीं कुर्सी है, बेड है, चेयर है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पे पहले आराम से बैठ जाइए और उसके बाद कोशिश कीजिए सिट एंड रीच की, यानी कि आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह से अपने दोनों पैरों को सीधा करिए, सामने की तरफ ले जाइए और अब धीरे से सांस छोड़ते हुए झुकें और अपने हाथों से पैरों के अंगूठों को छूने की कोशिश करें। क्या आप आसानी से अंगूठे छू पा रहे हैं या आपकी पीठ और घुटनों में खिंचाव हो रहा है? अगर आप बिना घुटने मोड़े अंगूठों को छू लेते हैं तो बधाई हो, आपकी बॉडी का लचीलापन अच्छा है, यानी कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल तो है बॉस, ये तो आप मानते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट हैं जो आप कर सकते हैं। पहला आता है BMI मेजरमेंट, यानी कि आपके बॉडी मास इंडेक्स का एक फॉर्मूला। बॉडी मास इंडेक्स

जो आपके वजन और लंबाई के आधार पर शरीर के फैट परसेंटेज का अनुमान लगाता है। ये शरीर के अंदर कितना फैट है इसके बारे में बताता है। अगर आप अपना BMI निकालते हैं और आप 20 या 24 के बीच में आते हैं तो नॉर्मल माना जाता है, और अगर उसके नीचे हैं तो आप कुपोषित माने जाते हैं, यानी कि आप अंडरवेट माने जाते हैं। उससे भी नीचे जाते हैं भाई तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और अगर आप ऑरेंज जोन में जाते हैं तो आपको ओवरवेट माना जाता है। यानी कि नॉर्मल होना आपकी हाइट से आपका वेट मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उससे पता चलता है कि आप फिट हैं या नहीं है। BMI में मसल्स के वजन और फैट का वजन पता कभी नहीं चलता, ये सिर्फ ये बताता है कि आप फिट हैं या नहीं है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। अब इसमें आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि ये आपके मसल्स का वेट है या आपके पानी का वेट है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर आप शाम के वक्त वजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का वेट आता है। आपने जो कुछ भी खाया पिया है उसका वेट आता है, पानी का वेट आता है। तो भाई अगर आप अभी तक कॉन्स्टिपेशन से शिकार चल रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन से परेशान चल रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ा हुआ ही आएगा। तो कोशिश करें कि सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपना वेट करें और उसके बाद इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें। BMI की हेल्दी रेंज 18.5 और 24.9 के बीच होती है, जिससे पता चलता है कि आपका BMI अच्छे लेवल पर है। 25 से 29 तक जाने पर आपको ओवरवेट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका फिटनेस लेवल क्या है, यानी कि आप हेल्दी रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरे टेस्ट की अगर बात करते हैं तो वो है पुशअप टेस्ट। जी हाँ, पुशअप आपकी अपर बॉडी की अच्छी एक्सरसाइज है। इससे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ आप पता कर सकते हैं क्या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, क्या आपकी अपर बॉडी में वो स्ट्रेंथ है। पुशअप आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने और साथ ही बॉडी को सही शेप में लाने में मदद करती है। इससे आपके फिटनेस लेवल को भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप बिना रुके 15 से 20 पुशअप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फिटनेस अच्छी है। हालांकि अगर किसी की उम्र ज्यादा है तो वो इतने पुशअप नहीं लगा पाएगा। कोशिश करें कि आप कम से कम 10 पुशअप जरूर लगाएं। इसी के साथ बात कर लेते हैं स्टेयर्स टेस्ट, यानी कि अक्सर लोग सीढ़ियां चढ़ते वक्त थक जाते हैं या उनकी सांस फूलने लग जाती है। हम आपको बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित विनर डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक अगर आप अपने घर की सीढ़ियां लगातार 2 बार चढ़कर उतार लेते हैं और आपकी सांस नहीं फूलती तो आप खुद को फिट साबित कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि आप फिट हैं। क्योंकि जब भी हम अपने घर की सीढ़ियों को ही चढ़ते हैं, भले ही वो 15 से 18 सीढ़ियां ही होती हैं, हमारी सांस फूलने लग जाती है, हम थक जाते हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है और बीच में ही कई कई बार तो रुकना भी पड़ता है। अगर आप बिना रुके 2 बार लगातार ऊपर जाकर नीचे आ सकते हैं तो मुबारक है, आप फिट हैं, आप अपने आप को फिट बोल सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं 12 मिनट रन टेस्ट का। जी हम आपको बता दें कि अगर आप 12 मिनट बिना किसी थकान के, बिना सांस फूले दौड़ सकते हैं एक स्पीड में, तो आप अपने आप को फिट बोल सकते हैं। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। और इसी के अलावा आता है वॉक टेस्ट। अगर आप 6 मिनट में 500 मीटर से ज़्यादा चल सकते हैं तो आप फिट हैं, लेकिन अगर आप 6 मिनट में सिर्फ 200 मीटर चलते हैं या उससे कम चलते हैं तो आप अस्वस्थ हैं। इतना ही नहीं, आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत भी हो सकती है। यदि आप 200 से 500 मीटर के बीच चल सकते हैं तो आपको अपने फिटनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जिन्हें आप घर पर बैठे बैठे या फिर घर पर ही कहीं चलते फिरते आप टेस्ट कर सकते हो। 10,000 कदम की बात नहीं की जा रही है। 6 मिनट में आप अपना टाइमर सेट कीजिए फ़ोन में और देखिए क्या आप 500 मीटर चल पा रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा चल पा रहे हैं, या 200 से 500 मीटर के बीच में है या उससे भी कम है। अगर उससे कम है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह लीजिए। और अगर बीच में है तो वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, डाइट सुधारिए, जंक फूड को बाय-बाय कीजिए, टाटा कीजिए और अपने तेल वाली चीज़ों को ज़रा साइड में कर दीजिए। क्योंकि भाई अगर तेल की बात की जाए तो तेल हमारे लिए दुश्मन और दोस्त दोनों हो सकता है। अगर आप एक सही मात्रा में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके टेस्ट को भी ठीक करता है, प्लस आपको गुड फैट भी देता है। बट वहीं पर क्योंकि हमारे भारतीय खानों में तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और फ्राइड फूड हम बहुत ज़्यादा खाते भी हैं, तो इसकी वजह से हमारी फिटनेस ख़राब होती रहती है। एक चम्मच तेल के अंदर 120 कैलोरीज पाई जाती हैं, और अगर आप इन कैलोरीज को ध्यान में रखकर खाना खाते हैं तो आप अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। हम आपको बता दें कैलोरीज आपके वजन को भी निर्धारित करती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं तो आपका वजन आए दिन बढ़ता जाता है, फिर चाहे आप कितना ही वर्कआउट क्यों ना कर लें। और इसी वजन को कम करने के लिए कई लोग बहुत सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसी ट्रिक्स आती हैं, और लोगों को लगता है कि अगर हम हफ्ते भर
के अंदर वजन कम करना चाहते हैं तो 16 घंटे फास्ट रह लेते हैं और 8 घंटे के अंदर हम कुछ भी खा लेंगे। 8 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं खाना होता है, अगर आप सेम कैलोरीज भी खा रहे हैं तो भी आपके वजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 16 घंटे भूखे रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप आगे आने वाले 8 घंटे या फिर आगे आने वाले 7-6 घंटों के अंदर फिर से वही चीज़ें खाने वाले हैं जो हाई इन कैलोरीज हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो मदर नेचर जो आपको चीज़ें देती है जिनमें फल और सब्जियां आती हैं, ये खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कैलोरीज हमेशा कम होती है। आप कैलोरीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने खाने को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप खा सकते हैं। अब बात कर लें अगर खाने की ही, तो खाने में क्या कुछ खाना चाहेंगे। एक आम इंसान जो शायद जिम नहीं जा रहा, जो बॉडी बिल्डर नहीं बन रहा, और अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या कुछ खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करना ही आपके लिए ज़रूरी है, या फिर आप एक फ्लेक्सिबल डाइट रख कर जिसमें आप अपना पसंदीदा चीज़ भी खा सकते हैं, फिर भले ही वो बर्गर क्यों ना हो, भले ही वो चाउमीन क्यों ना हो, और उसको रखते हुए अपनी फिटनेस को कैसे बरकरार रखें। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के उस पार, उसके बाद बताते हैं कि आपको अपने खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए जिससे आप अपनी ज़िंदगी में फिट रहें, आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट ना करना पड़े, आप अपने पसंदीदा खाने के लिए तरस भी ना जाएं और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करके अपना वजन भी ना बढ़ा लें, प्लस खुद को बीमार भी ना करें, क्योंकि धीरे धीरे इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है और इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। फिलहाल आइए रहते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार मिलते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी। आप सुन रहे हैं रेडियो कैनवास 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए की इस खास पहल को, जो कि स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की है, जिसके अंदर बात करते हैं आपके सेहत की, आपके स्वास्थ्य की। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और आज का हमारा विषय था, आज का हमारा टॉपिक था जनरल फिटनेस, यानी कि वो फिटनेस जो हर किसी को पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फिटनेस में खाना क्या चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यूं तो हम बचपन से न जाने क्या क्या खाते आ रहे हैं, पहले के और आज के खाने में बहुत फर्क हो चुका है। पहले जहां लोग फल और सब्जियों को ज्यादा खाते थे, वहीं आजकल ट्रेंड में पिज्जा, बर्गर, पास्ता, सैंडविच न जाने क्या क्या आ चुका है। बच्चे भी लंच में सब्जी पराठों की जगह पर न जाने क्या लेके जा रहे हैं। और इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल क्यों बनता जा रहा है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के जमाने में आजकल लोग अपनी फिटनेस को ध्यान तो देने लगे हैं, प्रोटीन को हाइप मिल चुकी है और अब हर इंसान प्रोटीन पर ध्यान दे रहा है। हर दूसरा इंसान सोच रहा है कि भाई मेरे एक मील में कम से कम 40 ग्राम प्रोटीन तो हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ प्रोटीन से ही काम चलेगा? क्या कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाने हैं या खाने हैं? क्योंकि वर्कआउट के पहले और बाद में अपने शरीर को सही आहार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हैं तो भी अपने शरीर को सही आहार देना, सही न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ये आहार आपको मिलेगा कहाँ से? क्या आपको, जो लोग कहते हैं कि मैदा आपकी सेहत के लिए ख़राब है, क्या ये उतना ख़राब है जितना हम सुनते आए हैं, या इसके पीछे कोई और कारण है? या अगर सही मात्रा में लिया जाए तो मैदा भी आपके लिए उतना ही ठीक है जितना आप गेहूँ? चलिए यही बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं सही पोषण क्या होता है और सही पोषण से क्या क्या होता है। आपका शरीर अपनी ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए प्रोटीन और बाकी चीज़ों के लिए आपके हार्मोन बैलेंस करने के लिए फैट की ज़रूरत मांगता है। बट अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा देते हैं तो आपका शरीर अंदर से कमजोर होने लग जाता है। अगर आप वर्कआउट से पहले सोचते हैं सिर्फ प्रोटीन खाने से काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता। प्रोटीन आपको हमेशा वर्कआउट के बाद में लेना चाहिए। हम आपको बता दें, वर्कआउट करने से पहले आपको नाश्ते में या फिर अगर आप शाम में वर्कआउट करते हैं तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो कि जटिल हो, उनमें प्रोटीन हो लेकिन फाइबर की मात्रा उनसे थोड़ी ज्यादा हो, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी पच जाते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे भूख बहुत तेजी से लगती है। वहीं पर अगर आप फाइबर ऐड कर लेते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट के साथ तो बहुत धीरे धीरे इसकी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत धीरे धीरे खाना पचता है और आप फुल महसूस करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको क्या क्या लेना चाहिए, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप ओट्स ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं या एक उबला हुआ आलू भी खा सकते हैं, और उसी के साथ आप दही, अंडे या फिर प्रोटीन शेक जैसी चीज़ों को शामिल भी कर सकते हैं। हम आपको बता दें, अगर आप ब्राउन ब्रेड या फिर कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट में अच्छी है लेकिन वो फ्राइड नहीं है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप उबली हुई सब्जियां भी ले सकते हैं, उसके साथ शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम है और आप वर्कआउट जल्दी करने वाले हैं तो आप केला खा सकते हैं, और केला खाकर भी आप अपने वर्कआउट को कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलती है और आप वर्कआउट के बीच में आपको चक्कर नहीं आता, कमजोरी महसूस नहीं होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या वर्कआउट से पहले भरपेट खाना खाना चाहिए। जी नहीं, आपको सिर्फ 80% खाना खाना चाहिए ताकि आपके पास एनर्जी रहे। आप भरपेट खाना खाने के बाद तुरंत वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। भरपेट खाना खाने के बाद आपको कम से कम 2-3 घंटा इंतजार करना चाहिए। इवन अगर आप खाना खा भी रहे हैं, 80% ही आपने खाना खाया है, तो 1.5 घंटा आपको ऑलमोस्ट रुकना चाहिए और उसके बाद ही आपको वर्कआउट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि वर्कआउट के बाद क्या खाएं। वर्कआउट के बाद सबसे पहले कोशिश करें कि 30 से 60 मिनट के अंदर आप कोई अच्छा प्रोटीन का सोर्स लें। प्रोटीन के सोर्स में आप सोया चंक्स ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन आपके लिए बेहतर है, आप ले सकते हैं। और अगर आप नहीं खाते हैं तो आप पनीर, टोफू की तरफ जा सकते हैं। इससे आपके शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है और वर्कआउट के बाद जो भी आपका लॉस होता है उसमें रिकवर करने में आपकी मदद मिलती है। हम आपको बता दें कि इसके बाद आपको लेना चाहिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वर्कआउट करते टाइम हम बहुत सारा पसीना बहाते हैं और उस पसीने में हमारे कुछ बहुत ही ज़रूरी तरल पदार्थ भी निकल जाते हैं, जिसमें मेनली सोडियम और पोटेशियम आता है। तो उनके स्तर को बढ़ाने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं या थोड़ा सा नमक अपने पानी में मिलाकर पी सकते हैं। थोड़ा सा का मतलब है एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो हो सकता है कि आपका बीपी बढ़ जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको वर्कआउट के बाद लेनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो वर्कआउट कर ही नहीं रहे हैं, जो घर में हैं और घर में रहकर काम कर रहे हैं, जो जिम जाकर पसीना नहीं बहा रहे, क्या उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन का ध्यान रखना है। आप जब भी अपनी प्लेट सजाते हैं या फिर जब भी खाना खाने बैठते हैं तो सबसे पहले चीज़ जो आपको लेनी है वो है प्रोटीन का सोर्स। प्रोटीन को सोर्स में सिर्फ दाल को लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि दाल कंप्लीट सोर्स नहीं होता। चावल के साथ वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमें उतना प्रोटीन नहीं मिलता जितना हमें एक बार में चाहिए। आप 25 से 40 ग्राम प्रोटीन एक बार के मील में ज़रूर लीजिए और कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपनी प्लेट लगाएं तो सबसे पहले प्रोटीन का ही कोई सोर्स रखें। या तो आप पनीर शामिल कर सकते हैं या फिर आप टोफू शामिल कर सकते हैं। आप अंडे खाते हैं तो अंडे ले सकते हैं, और अगर आप चिकन खाते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइबर को ऐड करना। फाइबर जो आपको सब्जियों में मिलता है, चिया सीड्स में मिलता है, हलिम सीड्स में मिलता है, जो आपको बीजों में आसानी से मिल जाता है या फिर इसबगोल में मिलता है, तो फाइबर को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। फाइबर के लिए आप फलों की तरफ जा सकते हैं। फलों में 250 ग्राम पपीता ले सकते हैं, 250 ग्राम के करीब आप अमरूद ले सकते हैं या फिर नाशपाती ले सकते हैं। ये वो तीन फल हैं जिनके अंदर फाइबर सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। तो आप अपने खाने में सब्जियों के साथ साथ पनीर को ज़रूर ऐड करें, यानी कि प्रोटीन, प्रोटीन के बाद फाइबर, और फाइबर के बाद आता है आपका कार्ब्स। कार्ब्स में जो आपके सोर्सेज हैं वो है आलू, स्वीट पोटैटो, रोटी, चावल। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एनर्जी देती हैं। इसके बाद आप अपने दाल में एक चम्मच घी ऐड कर सकते हैं, जो गुड फैट का सोर्स होता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने खाने में तेल का इस्तेमाल कम करें और इससे आप अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा गुड फैट के लिए आप बादाम, अखरोट भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, यानी कि सुबह उठकर आप खाली पेट बादाम, अखरोट ले सकते हैं। बादाम की संख्या होनी चाहिए 4 से 5 और अखरोट 2 से 3। इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लेते हैं तो सिर्फ आपका फैट बढ़ता है, कैलोरीज बढ़ती हैं, और आप पूरे दिन में जो चीज़ें खाते हैं उनमें कैलोरीज बढ़ जाती हैं। तो ये वो बातें थीं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये है आपकी जनरल फिटनेस, यानी कि वो फिटनेस जो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप जिम जाते हों, भले ही आप जिम ना जाते हों, भले ही आप एक मेल हों, आप एक फीमेल हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप कोशिश करें कि अगर आपके खाने से जो चीज़ें पूरी ना हो रही हैं उन्हें सप्लीमेंट से ज़रूर पूरा करें, जिसमें हमारी कैल्शियम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। 30 साल के बाद हर फीमेल को कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी चाहिए। जी हाँ, आप बिना डॉक्टर की सलाह के भी ले सकते हैं, क्योंकि एक सप्लीमेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहें तो डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं और उनसे कोई बढ़िया सी सप्लीमेंट पूछ भी सकते हैं। अगर आप अपने डाइट में सप्लीमेंट भी शामिल करते हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले उन सप्लीमेंट्स की, यानी कि उन चीज़ों की आपके अंदर कमी हो। बिना ब्लड टेस्ट कराए उन चीज़ों को मत लीजिएगा, और अगर आप ले रहे हैं तो एक सही समय पर लीजिएगा, जैसे कि सुबह खाली पेट आयरन और विटामिन सी लीजिएगा, रात में सोते समय आप मैग्नीशियम, और अपने खानों के बीच में विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स या बायोटिन, जो भी आपको शामिल करनी है। लेकिन ज़रूरत तभी है जब इनकी ज़रूरत आपके शरीर में हो, यानी कि आपके शरीर में जब इनकी कमी होती है तभी आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। और सबसे अच्छा सोर्स यही है कि आप अपने प्रोटीन, अपने फाइबर, अपनी बाकी चीज़ों की जितनी भी पूर्ति है वो खाने के जरिए करें। फिलहाल आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार मुलाकात करते हैं आपसे वापस से। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी। आप सुन रहे हैं रेडियो 96.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन।
1: हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।
0: हाँ जी, आप सुन रहे हैं रेडियो 96.6 FM, यही गोना शहर की धड़कन पर आपकी आरज़ू मौजूद थी अब तक आपके साथ, और घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का। तो आज हमने बात की थी आपके स्वास्थ्य संगिनी में, यानी कि आपके सेहत वाले कार्यक्रम में, आपके फिटनेस के बारे में, फिटनेस टेस्ट के बारे में जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। प्लस हमने बात की खाने के बारे में, यानी कि आप खाने में क्या क्या शामिल कर सकते हैं, क्या क्या है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको इस पूरे शो में सुनने के बाद कहीं ऐसा लगा हो कि कुछ फिटनेस आपकी खराब चल रही है या कुछ तो गड़बड़ है बाबू मोशाई, तो प्लीज जाके अपना टेस्ट जरूर कराएं। अपनी डाइट पर ध्यान रखें, अपने वर्कआउट पर ध्यान रखें, आप योगा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो 20 से 30 मिनट अपने लिए जरूर निकालें, वॉक करें, थोड़ा वर्कआउट करें। पानी को ध्यान में रखें क्योंकि आजकल गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, तो अपने वाटर इनटेक को ठीक ठाक रखें, यानी कि पानी पीते रहें, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और घड़ी में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। आप सुन रहे हैं रेडियो कैलस 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। आपका अगला कार्यक्रम सेहतिया सिंह सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो गैनेस्ले 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की, जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
5: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
6: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
5: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
6: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है, और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
5: अच्छा।
6: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
5: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
6: बहुत सारी,
5: जैसे?
6: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक के करके बताता हूँ।
5: जी।
6: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
5: और बाकी?
6: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
5: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
6: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें की परवाह।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे बेहद जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो है किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य। जी हाँ, दरअसल 10 से 19 साल की उम्र में न सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी कई सवाल उठते हैं, ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती है और किस तरह माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। और इन सभी मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेहतिया भैया।
1: नमस्कार श्रोताओं, धन्यवाद आरजे अदनान। जैसे किसी बगीचा में सही समय पर यानी पानी और खाद न मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह न मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बातें जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। वैसे किशोरावस्था के दौरान शरीर और मन में क्या क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं, जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड शुरू हो जाती है। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर पड़ेगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा, अकेलापन लगेगा, ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की कोई बात नहीं है।
0: भैया जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखो भाई, कई बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की को और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर न लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझें कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए बचाव के तरीके जैसे गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझकर होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी है, ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में संकोच नहीं करना चाहिए, अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेना चाहिए।
0: सेहतिया भैया, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात करते हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं, जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी करने का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन इसका बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
1: बिल्कुल आरजे अदनान, चाहे गांव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई हो तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई है, लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे, इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, उनकी बात सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सेहतिया भैया, हम देख रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो क्या ये खतरनाक हो सकता है?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में वो गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का भी खतरा हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं, जिंदगी बस घर गृहस्थी तक सिमट जाती है।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छिपे गर्भपात करा लेती है, ये कितना खतरनाक है भैया?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती है तो वो चुपचाप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है। अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता है।
0: ठीक कहा भैया। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा आखिर क्यों बढ़ रहा है?
1: किशोरा अवस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं, वो बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती है, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वो कभी कभी ऐसे काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं है। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता है कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए तो अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: भैया, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें की, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कतें आखिर इतने क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है, रो नहीं सकता या तू लड़की है, समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाज़त नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता है, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहे, ऐसी बात मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं है, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो या घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि ये इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से फैसले लेनी चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मानना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल भैया, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के उपाय यानी कि गर्भ निरोधक की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: बिल्कुल दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
0: लेकिन भैया, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किशोरों को ये सब सिखाया गया, बताया गया, तो कहीं वो गलत रास्ते पे ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनना है। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया, तो कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो, तो खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सेहतिया भैया, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई पहल हुई है?
1: बिल्कुल भैया, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKS के, इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में सुविधा क्या क्या मिलती है? यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं?
1: RKS के बहुत ही काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। पहला, किशोर या अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहाँ किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अन्नपूर्ण कार्यक्रम, इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है, ताकि उनमें खून की कमी न हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना, इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बात कर सकें।
0: अच्छा भैया, ऐसा क्या है?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKS के से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है। जानकारी देती है कि सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझक के सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना है, इसमें सरकार सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसा देती है, ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थीं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता था। अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKS के सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं है, बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, NM, काउंसलर, सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सभी की मदद बिना भेदभाव के करें।
0: भैया, अगर RKS के जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचा दिए जाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं होंगे, बल्कि कॉन्फिडेंस से भी भर जाएंगे। क्या कहते हैं?
1: देखिए भैया, ARSH, इसका मतलब है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना है, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: ये तो बहुत बढ़िया है भैया।
1: हाँ, अब सरता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था, तो सरता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थीं, शर्मा जाती थीं। फिर एक दिन गांव में RKS के योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन NM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरता के दिल और दिमाग में घर कर गईं। अब सरता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
0: बिल्कुल भैया, जब कोई इतनी गंभीर बात हो और खास तौर पर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं, दूसरों का भी नुकसान होता है।
1: सरता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी। कुछ खाने का मन नहीं करता था, चक्कर आते रहते। फिर वह आंगनबाड़ी केंद्र गई तो वहाँ मौजूद एनम रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उसकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता न चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
0: मतलब ये योजनाएं सच में जमीन पर असर कर रही हैं।
1: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी। 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनबाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने माता पिता को समझाया, 18 साल से पहले शादी करना न सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि अब सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग भी देती है। धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और गांव और आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
0: वाह भैया, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने हौसले खुद लेने लगते हैं।
1: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते हैं और न ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वो बीच का सफर तय कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा भैया। दोस्तों, ये ठान लो कि हम अपने किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब सही जानकारी होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभकारी के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: इसे बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूले। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
6: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

स्वागतम स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम तहे दिल से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो यानी कि सुन सहेली में, जो कि आप सुन रहे हैं अपनी बहुत ही प्यारी सी दोनों आरजेज यानी कि आरज संता और आरज अंशिका के साथ। लेकिन लेकिन लेकिन आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी प्यारी सी क्यूट सी और हमारी सभी की बहुत ही अच्छी जो कि हमारी आरज संता जी हैं वो हैं छुट्टी पे, क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी काम है और बस बहुत जल्द वो आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। इसलिए आज के लिए आपकी दोनों सहेलियां एक आपके साथ प्रत्यक्ष हैं और एक आपके साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है लेकिन जुड़ी जरूर है। क्योंकि हम जानते हैं कि मैम भले ही हमारे साथ ना हो लेकिन उनका जो मन है ना वो हमेशा सुन सहेली के लिए और अपने लिसनर्स के लिए रहता है, ये मतलब उनके साथ ही रहता है। तो हम दोनों ही आपके साथ हैं और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि आज का हमारा जो दिन है वो है बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि आज हमारा दिन है वेनसडे। वेनसडे यानी कि हमारी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी क्यूट सी सहेलियों का दिन, महिलाओं का दिन। आज के दिन हम उनकी कुछ केयर को लेकर के, कुछ उनके इश्यूज़ को लेकर के बात करते हैं और आप सभी को बताते हैं। लेकिन उससे पहले पहले पहले आप सभी का पसंदीदा शो शुरू हो चुका है सुन सहेली, और सुन सहेली में हमने आगाज़ कर लिया है शानदार तरीके से। बस आप सभी के जुड़ने का इंतज़ार है, क्योंकि जब आप सभी जुड़ेंगे तभी तो मज़ा आएगा। और तभी तो कहते हैं ना कि जब हम दोस्तों से स्पेशली बातें करते हैं तो वो दोनों तरफा होनी चाहिए, और वो दो तरफा तभी होंगी जब हमारे जुड़ने के साथ साथ आप भी जुड़ेंगे। और फटाफट से आइए, फटाफट से जुड़िए हमारे साथ और अपनी बातों को शुरू कीजिए। सो लिसनर्स, हम अभी बातें करेंगे और आपको बहुत कुछ बताएंगे। उससे पहले पहले पहले चलिए चलते हैं हमारे सबसे स्टार्टिंग वाले सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक प्यारी सी पोएट्री। लेकिन उससे पहले आप सभी को सुन सहेली में सहेलियों की तरफ से शुभ दोपहरिया। आपकी दोपहरिया शुभ हो, अच्छी हो, बहुत ही शांत हो, और साथ ही साथ में आप हर दिन से कुछ नया सीखें, ऐसा हम आपसे कहना चाहते हैं। तो चलिए पोएट्री को शुरू करती हूँ। जैसे कि आज दिन महिलाओं का है तो पोएट्री भी कुछ हमारी प्यारी सी क्यूट सी सहेलियों को लेकर के है, तो सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो आज हमारा टाइटल है कोमल स्वभाव और मजबूत दिल। बिल्कुल, स्वभाव में कोमलता और दिल में मजबूती दोनों ही बहुत ज़रूरी होती है, और हमारी घर की जो फीमेल्स होती है ना उनमें ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल कहीं ना कहीं भरपूर होती है। तो क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आपको बताते हैं। तो चलिए इन लाइन्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहती हैं। स्वभाव में जिनके मखमली एहसास है, स्वभाव में जिनके मखमली एहसास है, सारे जहां में वो सबसे खास है। होठों पर सदा एक मीठी मुस्कान सजे, होठों पर सदा एक मीठी मुस्कान सजे, जैसे आंगन में कोई मधुर राग बजे। ममता की मूरत वो दया की खान है, ममता की मूरत वो दया की खान है, हर सुने घर की वही तो जान है। बातों में उसकी मिश्री सी मिठास है, बातों में उसकी मिश्री सी मिठास है, दुख में भी देती वो सुख की आस है, दुख में भी देती वो सुख की आस है। पर कोमलता ही उसकी कमजोरी नहीं, पर कोमलता ही उसकी कमजोरी नहीं, हर जुल्म को सहना उसकी मजबूरी नहीं, हर जुल्म को सहना उसकी मजबूरी नहीं। जब वक्त इम्तिहान का कभी आता है, उसका दिल चट्टान बन जाता है। भीतर छुपा है उसके फौलाद सा बल, भीतर छुपा है उसके फौलाद सा बल, बदल देती है वो मुश्किलों का हर पल। सलामत रहे उसका ये रूप निराला, सलामत रहे उसका ये रूप निराला, जिसने पूरी दुनिया को प्यार से संभाला, जिसने पूरी दुनिया को प्यार से संभाला। बिल्कुल, पूरी दुनिया को प्यार से संभालती है, पूरी दुनिया को सहेजती है और उसे एक नए मकाम पर पहुंचाती है, वो घर की महिलाएं ही होती हैं। बिल्कुल सही कहा गया है इस पोएट्री के थ्रू की, जैसे बताया गया आपको भी कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो चट्टान सी खड़ी हो जाती है। बिल्कुल, हमारे घर की जो महिलाएँ होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे घर की नींव होती हैं, कि कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी दुख हो, कितनी भी तकलीफें हों, वो जब भी आपके परिवार पे कोई भी मुश्किल आएगी तो हमेशा
सबसे पहले चट्टान की तरह आगे खड़ी रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें उनके हिस्से की फ्रीडम, उन्हें उनके हिस्से की रिस्पेक्ट दी जाए। क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हैं, जैसे सम्मान की हम हमेशा बात करते हैं ना, कि हमें अपने रिश्तों में रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पर मैं कहती हूँ रिश्तों में रिस्पेक्ट दी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती है। आप अपने काम से, अपने बिहेवियर से किसी की रिस्पेक्ट को कमाते हैं। वो इंसान दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता है, दिल से आपसे जुड़ता है, दिल से आपके साथ रहना चाहता है, दिल से आपको अपना मानता है। और दिल से दिल का रिश्ता जब किसी से होता है ना, तो वो कोई शर्त नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस होता है। लेकिन दिल से दिल के रिश्ते कमाए जाते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए कि हमारा आपसे रिश्ता है इसलिए हम निभाते हैं ऐसा। देखिए, ऐसे कई सारे रिश्ते होते हैं जो कि हमें मिलते हैं कि इनसे आपका रिश्ता है और आपको इनके साथ रिश्ता निभाना है, तो हम गैजुअली एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अपना रिश्ता निभाते हैं। लेकिन जिनसे दिल का होता है कि उन्हें एक खरोच भी आ जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो दिल से दिल का रिश्ता, वो दिल से दिल की रिस्पेक्ट, वो कमाई जाती है। वो अपनी कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर से उसको अर्न किया जाता है। और जब ऐसे रिश्तों को हम कमाते हैं, उन्हें अर्न करते हैं, तो वो पूरी लाइफ हमारे साथ रहते हैं, पूरी लाइफ हमारी स्ट्रेंथ होते हैं। और फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, कोई एक आपके सिर पर हाथ रख देता है, कोई एक आपका हाथ पकड़ लेता है और उसके सहारे आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर जाते हैं। आपको लगता है कि अरे नहीं, ये मेरे साथ है ना, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो मैं कोई भी मुश्किल पार कर जाऊँगा या पार कर जाऊंगी। इसी तरह यही स्ट्रेंथ, यही प्यार, यही सपोर्ट हमारे घर की महिलाएं कहीं ना कहीं घर के सभी लोगों को देती हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उनकी जगह को पहचाने और हर दिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनकी स्ट्रेंथ बनने और हर दिन एक छोटी सी ही सही पर कोशिश करें कि आपकी घर की महिलाएं भी आगे बढ़ें, कुछ करें और मेनली खुश रहें अपनी रिस्पेक्ट के साथ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे, जो कि होने वाला है और भी मज़ेदार और थोड़ा सा ज्ञान वाला, क्योंकि अब हम बात करेंगे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की। तो भाई क्या होने वाला है हमारा वेनसडे का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, आज का सच क्या है, आज हम आपको लाइफ से जोड़कर क्या बताने वाले हैं, क्या आपको नई एक हम अगर कह लें तो रियल जो फैक्ट्स ऑफ लाइफ हर दिन बताते हैं, यानी कि लाइफ की कोई ऐसी बात, दिन की कोई एक ऐसी बात जो आपको मोटिवेट भी करती है, तो आज के लिए वो क्या है। तो आज के लिए वो ये है कि खुद की तुलना हमेशा खुद से करें और खुद को बेहतर बनाएं। कहने का मतलब ये है कि हमेशा जब भी आप तुलना करते हैं ना, तो खुद की तुलना खुद से ही कीजिए। क्योंकि जब हम तुलना किसी और से करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ मिलती है, सिर्फ और सिर्फ मन में आपकी नेगेटिविटी आती है। मान लीजिए किसी के पास बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छा घर होता है, और हम उससे तुलना करते हैं कि हमारे पास उतनी एक्सपेंसिव कार नहीं है, उतना एक्सपेंसिव घर नहीं है, उतनी एक्सपेंसिव जॉब नहीं है। तो जब आप ये तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही को तकलीफ देता है, आप अपने आप को नीचा समझने लगते हैं। हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि हमारे पास तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, अब हम क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आता है कि खुद की तुलना खुद से करने पर इंसान बेहतर बनता है, पर अगर वही तुलना आप दूसरे से करते हैं तो आप बेहतर नहीं बनते बल्कि नीचे गिरते जाते हैं। इसलिए जब भी तुलना करना चाहते हैं तो खुद की हमेशा खुद से करिए और बेहतर बनिए। हमारे पास जो कुछ भी नहीं है हम उसे अर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव घर नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हम कैरी नहीं कर सकते, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें कितनी अच्छी जॉब मिले या हम एक उस लेवल पर पहुंच जाएं जहां हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा कर सकें। इसलिए हमेशा खुद को बेहतर बनाइए और खुद से तुलना कीजिए कि अगर 10 दिन पहले मैं यहाँ थी तो 10 दिन बाद मैं कहाँ हूँ, 10 दिन में मैंने क्या सीखा, अगर जॉब में है तो जॉब में आपने क्या कुछ अच्छा किया, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में क्या कुछ अच्छा किया, खुद को कहाँ तक बेहतर बनाया, खुद के बिहेवियर को, खुद के नेचर को कहाँ तक बेहतर बनाया, ये देखने की कोशिश करें। न कि ये देखने की कोशिश करें कि हमें दूसरे से तुलना करनी है और उसके जैसा बनना है। किसी के जैसा नहीं बनना है, बस अपने को बेहतर बनाना है और अपने में कहीं ना कहीं सुधार लाना है। इसलिए जब भी तुलना करें तो सिर्फ खुद की खुद से, और खुद की कभी दूसरों से नहीं, क्योंकि जो दूसरों के पास है वो आपके पास नहीं है, और हो सकता है जो आपके पास है वो उनके पास ना हो। इसलिए हमेशा जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, उसी को अपना सब कुछ समझना चाहिए।
क्योंकि जो अपनी थाली छोड़कर दूसरों की थाली में देखते हैं ना, वो अपनी थाली के अच्छे खाने को भी ना बेकार समझ लेते हैं, और दूसरे की थाली में कुछ भी रखा हो हमें लगता है अरे वो तो बहुत खुश है, उसने बहुत अच्छे से खाया। लेकिन इससे आपकी अपनी खुशी कम हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी अंदर की अपनी खुशी को ज़िंदा रखना चाहते हैं, उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं लाइफ में, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ देखिए, खुद को बेहतर बनाइए और लाइफ में इतना अचीव कर लीजिए कि आप अपनी लाइफ को बेहतर ढंग से जी सकें। तो आज इसी प्यारे से मैसेज के साथ अभी के लिए हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर्स हैं जिन्होंने कि अपनी हाजिरी दर्ज करवा ली है। तो मैं देख रही हूँ कि सलीम जी आ गए हैं और लिख रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद पुनः वापसी। ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सलीम जी आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली में। तो चलिए फिलहाल के लिए लिसनर्स चलते हैं एक बहुत ही प्यारे वाले गाने की तरफ, और बस यूं गए और यूं आए। आप सुनते रहिए अपना फेवरेट शो सुन सहेली स्टेडियम।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म।
0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
0: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
7: बिल्कुल साजन, तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा अब तो, आजा अब तो, आजा। बिल्कुल भाई, आजा, और आना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई आपको पुकारता है तो आना पड़ता है, जैसे कि आप सभी ने हमें पुकारा और हम आ गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज दिन है हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी जो फीमेल लिसनर्स हैं उनका, और इसी के साथ में मैं देख रही हूँ कि नाम मैंने अभी अभी मैं आई हूँ और मेरे आते ही नागेश्वर जी भी आ गए हैं, जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार। नमस्कार नागेश्वर जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका सुन सहेली में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि हमारी जो महिलाएँ होती हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। देखिए, घर में जब बचत की बात आती है तो सबसे पहला जो एक पॉइंट आता है वो महिलाओं पर ही आता है कि बचत करनी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और हमारे घर में जो एक नींव है वो हमेशा महिलाएं ही होती हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास बहुत सारी ऐसी तरीके होते हैं, टिप्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, जिनसे कि वो घर की बचत कर सकती हैं। लेकिन लेकिन लेकिन भाई, हमारी जो सहेलियां हैं, सखियां हैं, वो थोड़ा सा शॉपिंग करने में ना कहीं खरीदने में अपनी ये बचत को भूल जाती हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे कि जिनसे आप अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और साथ ही साथ में थोड़ी सी बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि बचत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ नागेश्वर जी, थैंक यू। तो चलिए अब बताते हैं सबसे पहले कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आज जो हमारी सखियों के लिए टिप्स हैं वो ये हैं कि अगर मान लीजिए आप जॉब में हैं, यानी आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी आ रही है, तो आपको कैसे पैसे इन्वेस्ट करके उसे बचाना है। और अगर आपके पास जैसे जो हाउसवाइफ होती है उनके पास हमेशा ये होता है ना कि घर खर्च के लिए जो उन्हें पैसे दिए जाते हैं वो उनसे सेव करती हैं, तो आज हम दोनों ही पॉइंट्स पर आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारे घर का बजट। बिल्कुल, यानी कि पूरे महीने का बजट तय करना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ में ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है नागेश्वर जी कि महिलाएं, हाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, ये सही है, लेकिन वो कभी शॉपिंग मॉल में पैसे नहीं उड़ाती है, बल्कि हमेशा ज़रूरत की चीज़ों को ही खरीदती हैं। और अगर कभी ज़्यादा खर्चा हो भी जाता है ना, तो उसी को तो कम करने के लिए और इन्वेस्ट कैसे करना है ये बताने के लिए हम यहाँ पे हैं। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहले मंथली मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एक महीने के खर्चे की जो भी आपके घर में खर्च होता है, महिलाएं सिर्फ अपनी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हस्बैंड के पैसे में से भी बचत कर सकती हैं आप। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अपनी सैलरी से या हस्बैंड की सैलरी से जिससे भी आप बचत करना चाहें, तो सबसे मेन बात ये निकल करके आती है कि कैसे करें। तो कहीं ना कहीं इसमें मंथली बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मंथली पूरे मंथ का बजट बनाते हैं ना कि आपके घर में क्या चीज़ें हैं, क्या आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कितनी आपको किस चीज़ पे खर्च करना है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कहते हैं ना कि बिना ज़रूरत की चीज़ों पर जो खर्च होता है वो बच जाता है। और जब हम मंथली बजट बनाते हैं तो हमें एक अंदाज़ा भी हो जाता है कि हमें इतना खर्च करना है या हमसे मंथली में इतना खर्च होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बजट हमेशा महीने में बना करके आप चले। महीने का मंथली बजट बहुत ज़रूरी है। जब महीने का मंथली बजट होगा तो बेकार की चीज़ों पे खर्च नहीं होगा, जिसके वजह से आपका पैसा बच जाएगा। अब आते हैं कि इमरजेंसी फंड बहुत ज़रूरी होता है। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि कुछ पैसे थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े करके आपको बचाते हुए कहीं जमा करते रहना चाहिए। इमरजेंसी में वो हमारे काम आ जाता है। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था कि घर की महिलाएं पैसे बचाती थी, आज भी बचाती हैं नो डाउट, लेकिन पहले महिलाएं अपने पास थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े पैसे रखती थी और फिर जब घर में किसी को ज़रूरत पड़ती थी तो वो उन्हें देती थी कि ये लीजिए, हमने रखे हुए थे और अब आप ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि हमें थोड़े थोड़े पैसे अपनी ज़रूरी चीज़ों से थोड़े से अलग करते रहने चाहिए। सलीम जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सलीम जी, आपको भी हम देख रहे हैं और आपके मैसेजेस को भी पढ़ रहे हैं, और मैंने शुरू में ही आते ही आपके मैसेजेस को सबसे पहले लिया था कि आप आ गए हैं, और आपको वेलकम भी कहा था, लगता है आपने सुना नहीं था। तो सलीम जी, फिर से एक बार कह देती हूँ कि बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके मैसेजेस को भी हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इमरजेंसी फंड पे बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको देखिए सैलरी जब हमें मिलती है तो एक बंधा हुआ अमाउंट हमें मिलता है हर मंथ, उसमें से अगर आप 50% या 60% 70% खर्च कर रहे हैं तो उसमें से आपको रोज़ हमेशा अपने मन में ये रखना है कि मुझे उसमें से ज़्यादा नहीं तो 10-15% ही बचाना है, कि 10-15% या महीने में 1,000 रुपये ही सही। बिल्कुल, ज़्यादातर महिलाएं पैसे जीरे के डिब्बे में छिपा कर रखती हैं। बिल्कुल नागेश्वर जी, और वही पैसे इमरजेंसी में हमारे काम भी आ जाते हैं, और उन्हीं चीज़ों को आज हमें दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है कि हम फिर से पैसे बचाने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि कहते हैं ना कि बचत यानी भविष्य की कमाई। आप जितना बचाते हैं उतना भविष्य में कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो इसीलिए अचानक इमरजेंसी फंड को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी सैलरी पाते हैं उसमें से भले ही मंथली आप 1,000 रुपये या 500 या जितने भी आप बचा सकते हैं उतने ही बचाएं, पर मंथली थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें और उन पैसों को अलग रखें ताकि इमरजेंसी में वो आपके काम आ जाए। मान लीजिए कोई भी उसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो ये ध्यान रखिए कि उसके लिए आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो ज़रूरी होते हैं। पैसों की आप थोड़े पैसों की एफडी करा सकते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी अच्छी हेल्थ के लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। और अब तो जैसे कि हम देखते हैं आजकल की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं कब किसको क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो इस सिचुएशन में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो ये आपके बहुत काम आते हैं क्योंकि बचत की बचत हो जाती है। और जब बात हमारी हेल्थ पे आती है तो वो अच्छे से इलाज भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और सही भी है। लेकिन जब भी आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान से पेपर्स को पढ़कर अच्छे से इन्वेस्ट करिए ताकि कोई भी आपको बाद में इशू ना हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है नागेश्वर जी कि हम उस बचत को काला धन भी नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बचत कभी भी काला धन नहीं होती है। बचत हमेशा आपकी जो भी बचत होती है ना, आप जितना भी अपनी बचत से बचा रहे हैं वो आपकी मेहनत की कमाई होती है और हमेशा बाद में वो आप ही के काम आती है। देखिए, स्कीम्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमेशा होता है ना कि घर में पैसे अगर रखे होते हैं तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने किसी स्कीम में, किसी इंश्योरेंस में, कहीं पर भी इन्वेस्ट किया या अपनी बैंक अकाउंट में ही रख दिया है तो वो रखा होता है, तो फिर ये होता है कि वो खर्च कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ज़रूरी हैं। आप चाहें तो एफडी कर सकते हैं थोड़े थोड़े पैसों से। अब तो थोड़े पैसे मंथली देकर एक अच्छी सी एफडी बन जाती है और बाद में वो पैसे जब मैच्योर होते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही के काम आते हैं। तो ये टिप्स इसलिए भी हैं कि कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है पैसों की। और कई बार जब सभी, मान लीजिए आपको मंथली एक पूरी सैलरी मिल रही है और आप उसे पूरा पूरा खर्च कर दे रहे हैं और अचानक आपको पैसों की ज़रूरत, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई तो हम कहाँ से लाएंगे? ये हो जाता है ना कि अब कहाँ से पैसे लाऊं, मेरी तो सैलरी पूरी खर्च हो गई। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की चीज़ों को बचाएं, पैसों को बचाएं। बचत बहुत ज़रूरी होती है। और दूसरी बात आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस, एफडी या बाकी स्कीम्स की अगर बात करें तो इन सब में पैसे सेफ भी रहते हैं और साथ ही साथ में वक्त ज़रूरत पर हमारे काम भी आते हैं। इसलिए सोचें और बचत करें। बचत करने का एक बहुत ही अच्छी एक और टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, जो कि ये है कि फिजूल खर्ची से हमें थोड़ा बचना चाहिए। फिजूल खर्ची का मतलब है कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है और जितनी लिमिट में ज़रूरत है उतने में ही आप खरीदें। जैसे कि मान लीजिए आजकल, मैं ये नहीं कहती हूँ या किसी को ये नहीं है कि हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार जितना उसके पास पैसा होता है उस हिसाब से वो अपनी लाइफ को जीता है, अपनी लाइफस्टाइल को रखता है, लेकिन उसमें बचाना ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ पे आपको ये लगता है कि ये कम पैसों में मैं खरीदूंगा और मेरा काम हो जाएगा तो आप उसे कम पैसों में खरीदिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना, दोस्तों में शो ऑफ करना कि अरे नहीं मेरे पास तो बहुत एक्सपेंसिव है चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को खुशी के साथ, आपके कंफर्टेबल के साथ बिता सकें और आगे आपको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए कभी भी दिखावा या शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जो आपके पास है, जितना है, जैसा है, उसमें आप अपनी लाइफ को अच्छे से चलाएं भी और साथ ही इन्वेस्ट करने की भी कोशिश करें ताकि बाद में वो आपके काम आ सके। और हमेशा अपनी लाइफ को स्मूथली गुजारें, कभी दिखावे के चक्कर में या मेरे दोस्त कहते हैं इस चक्कर में या मुझे भी करना चाहिए, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने नागेश्वर जी कि हेल्थ इंश्योरेंस पर भी आजकल बहुत ठगी हो रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पेपर्स वगैरह बहुत ध्यान से आप रीड करने के बाद ही साइन करें। बहुत ध्यान से इन सारी चीज़ों को, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएँ, और बहुत सोच समझ कर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। आपको लगे जब भरोसा है तभी आप इन्वेस्ट करिए और जहाँ तक हो सके पैसे बचाएं, क्योंकि बचत ही असली भविष्य की कमाई होती है। और इसी के साथ शिवकांत शुक्ला जी भी आ चुके हैं, लिखते हैं हाय। हेलो शिवकांत शुक्ला जी, कैसे हैं आप? तो चलिए लिस्टनर्स, अब चलते हैं। आई थिंक कि मैंने आप सभी को बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है और हमारी आज फीमेल लिस्टनर्स भाई, हमारी सखियाँ जो है वो कहाँ गायब हैं। तो प्रीति जी, आंशु जी, गीता जी, अगर आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो फटाफट से आइए, एक मैसेज करिए और साथ ही साथ में बताइए कि आप मेरी प्यारी सी आवाज़ को सुन रहे हैं। हमें हमारी सखियों का इंतज़ार रहेगा और जो हमारे प्यारे लिसनर्स हमारे चैट बॉक्स में मौजूद हैं उनके आप बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं। बस यूँ गए और यूँ आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
6: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
9: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली, और बस हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, दिल को तेरा इंतज़ार है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि अभी हमने सुना, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही एक प्यारा सा एहसास, मतलब ये सॉन्ग दे जाता है, बहुत ही क्यूट सा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नेहा जी आ चुकी हैं जो कि बहराइच से सुनती हैं हमें और लिख रही हैं, नमस्कार दोनों आरजेज मैम को, कैसे हैं आप? तुम बहुत अच्छे हैं नेहा जी, गुड आफ्टरनून। और इसी के साथ नागेश्वर जी ने लिखा है कि आपकी सासू माँ दिखाई नहीं दे रही हैं, मिस यू सासू माँ। तो बिल्कुल सासू माँ दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि सासू माँ को था कुछ ज़रूरी काम और इसलिए हमारी सासू माँ जी जो हैं वो गई हैं बाहर, और बाहर इन द सेंस की कुछ ज़रूरी काम था और इसलिए छुट्टी ली है उन्होंने, वो बाहर गई हैं और बस थोड़े ही टाइम के, थोड़ा सा टाइम और है और फिर आ जाएंगी सासू माँ वापस। और फिलहाल हमारी जो सासू माँ है वो बहू को सारी जिम्मेदारियाँ जो है वो देकर

गई हैं और बहू यहाँ अपना फ़र्ज निभा रही है। तो नागेश्वर जी, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया हो। और रही बात मिस करने की, तो मिस तो भाई मैं भी बहुत बहुत बहुत ज़्यादा कर रही हूँ उन्हें, क्योंकि मिस करने की जो एक बात होती है ना, वो क्या होती है ना कि जब आपके बड़े जो हैं घर के, वो और अभी आपने सासू माँ कही दिया, तो जब घर के बड़े नहीं होते हैं ना, तो उनकी कमी बिल्कुल सर पे छत की तरह कहीं ना कहीं खलती है। तो वो कमी खल रही है, उनकी याद आ रही है, लेकिन उनकी याद के साथ साथ में, उनकी कमी के साथ साथ में एक ये भी एहसास है कि वो नहीं है, और इसलिए मुझे दुगनी जिम्मेदारी के साथ निभाना है अपने काम को और करना है। पर उनकी याद बहुत आ रही है, और मन में ये एक ख्याल भी आ रहा है कि वो फटाफट से वापस आ जाए। तो बस तुरंत आएंगी और आपसे बहुत सारी बातें करेंगी और आपके साथ जुड़ेंगी, थोड़ा सा इंतज़ार। और इसी के साथ गीता जी आ गई हैं और लिख रही हैं शुभ दोपहरिया दोनों आरजेज मैम को, शुभ दोपहरिया आपको भी। गीता जी कैसी हैं आप, और फटाफट से अपना हालचाल बताएं, और क्या कर रही थी आप, कैसी हैं बताइए फटाफट से। और भाई हमारी सखियों को हमें आवाज़ देकर बुलाना पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, दोस्ती है तो दोस्ती का तो दस्तूर है कि आपने बुलाया और हम चले आए। और थैंक यू सो मच मेरी दोनों फीमेल लिसनर्स को, यानी नेहा जी और गीता जी, कि हमने बुलाया और आप चले आए। तो चलिए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारी फीमेल लिस्टर्स से ही जुड़ी हुई है, यानी महिलाओं से ही जुड़ी हुई है। बहू आज बहुत अच्छे से फ़र्ज निभा रही हैं अपना, क्या बता दें नागेश्वर जी, क्योंकि हमारी सासू माँ जो है ना, वो हम पर जिम्मेदारी देकर गई हैं, और वो तो हमें अच्छे से निभानी ही होगी, तो इसलिए निभा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी अच्छा लग रहा है, आप सभी मेरी आवाज़ सुन करके और मैं जो भी बता रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैम जो है वो बक बक बक बक बक बक कर रही है और आप बोर हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है नागेश्वर जी, आई होप नहीं है। और गीता जी लिख रही हैं अच्छी हूँ मैम, अच्छी बात है गीतू जी, आप बहुत ही अच्छी रहें। तो चलिए आप टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और नीना जी भी आ गई हैं, लिख रही हैं हाय, हेलो नीना जी कैसी हैं आप। तो चलिए भाई हमारी सखियों का आगमन जो है वो शुरू हो गया है, तो इस आगमन के साथ हम हमारे टॉपिक को भी शुरू करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है, कुछ उनकी हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ उनकी मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है, जो कि आज हम उन्हें बताएंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपने बहुत सारी महिलाओं को या लड़कियों को नोटिस किया होगा कि जब भी उनसे उनकी राय पूछी जाती है, या फिर ऑफिस मीटिंग में या कहीं पर भी उनसे किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, तो वो घबरा जाती हैं। उनके मन में तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी उथल पुथल, सब कुछ चल रही होती है, और कहीं ना कहीं उन्हें उस टॉपिक के बारे में जो उनसे पूछा जाता है उस पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन बस वो बता नहीं पाती। तो उनका ये ना बता पाना, बातों को अपने ही दिल में रखना और सोचते रहना, ये सिर्फ ऑफिस मीटिंग में या किसी टॉपिक को लेकर नहीं होता, कई बार हमारे घरों में भी होता है कि घर में कोई बात कर रहा होता है, हमसे हमारी राय उस बात पर पूछी जाती है और हम अपनी राय नहीं रख पाते। घर के ही किसी मसले में आपसे पूछा जाता है और आप नहीं बता पाते, आपको लगता है नहीं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी राय गलत हो या मुझे उस बारे में इतनी जानकारी नहीं है। तो ये एक तरह की जो हिचकिचाहट होती है ना, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और नीना जी लिख रही हैं मस्त मैम जी, अच्छी बात है आप मस्त रहें नीना जी। और तो हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये झिझक क्यों होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये झिझक क्यों होती है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप इस झिझक को कैसे पहचान सकते हैं। तो ये हिचकिचाहट इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम परफेक्ट दिखना चाहते हैं। परफेक्ट दिखने का मतलब होता है कि हमेशा हम बोलने से पहले या कोई भी बात करने से पहले ये सोचते हैं कि अरे सामने वाला क्या सोचेगा। थैंक यू सो मच नागेश्वर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हो। तो आज पैसे की बचत को लेकर बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आए, सभी लोगों को बचत करनी चाहिए ताकि हमारे बुरे वक्त पर काम आ सकें। थैंक यू सो मच नागेश्वर जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लिसनर्स बताते हैं आपको कि ये क्यों होता है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कई बार फीमेल में होता है, ये मेल में भी होता है, इसलिए सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले तब होता है जब हम परफेक्ट दिखना चाहते हैं, यानी कि हर चीज़ को परफेक्ट चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम जो बोलें वो परफेक्शन से भरा हुआ हो ताकि कोई हमारी बात को काट ना सके। हमें डर लगता है कि कहीं हम ऐसा कुछ तो नहीं बोल देंगे कि जो सामने वाले को सही ना लगे, या मुझे उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है, घर की भी कोई बात है तो आपको लगता है अरे नहीं नहीं मेरा बोलना ठीक नहीं है।
तो कहीं ना कहीं हमेशा परफेक्ट बोलना या परफेक्ट दिखना ही एक चीज़ नहीं होती है। देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और बातें तो कभी परफेक्ट नहीं होती। मान लीजिए कोई टॉपिक है और उस पर आप अपनी राय रख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ गलत हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परफेक्शन किसी में आता नहीं है, परफेक्शन हमेशा लाया जाता है। ओके, फेस टू फेस बात करने में मुझे भी हेजिटेशन होती है न्यू लोगों से, बाकी तो बहुत बकबक करती हूँ। हाँ, तो नेहा जी, ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं, मान लीजिए, तो हम नहीं जानते हैं कि वो हमारा, मतलब हम उसे पूरी तरह जानते नहीं हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमें हेजिटेशन फील होती है। लेकिन फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस से बात करें, वो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसके आंसर करिए और खुलकर उससे बात करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। और बोलते वक्त कभी मन में ये ना रखें कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत हो सकता है, उसे मेरी बात किस तरीके से लगेगी, ये सब मन में नहीं रखना है। आपके मन में जो है आप उसे अच्छे से पीसफुल तरीके से दूसरे के सामने रखें, वो आपकी बातों को समझेगा और धीरे धीरे आपकी झिझक भी दूर हो जाएगी। हमारे मन में मेनली क्या होता है कि हम ये सोचते हैं सामने वाला क्या सोचेगा, और हमेशा परफेक्ट बोलना चाहते हैं, परफेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट हमेशा कोई नहीं होता। इसलिए अपनी बातों को शालीनता के साथ रखना चाहिए और परफेक्शन की तरफ नहीं भागना चाहिए। अगर हम अपनी बातों को शालीनता से रखेंगे तो वो बातें समझेंगे भी और हम बात कर भी पाएंगे, लेकिन जहां आप परफेक्शन ले आएंगे ना, वहां कभी आप बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए परफेक्शन बातों में कभी ना लाएं। और इसी के साथ कमल नयन जी आ चुके हैं, लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून कमल नयन जी, कैसे हैं आप? आई होप नीना जी कि आपको आपके सवाल का जवाब, नेहा जी, आई होप नेहा जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, कि हमेशा हमें जवाब देते वक्त जब भी हम किसी से बात करते हैं तो ये लगता है कि अरे कहीं मेरा जवाब गलत हुआ तो क्या सोचेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं जवाब गलत होने का डर भी होता है। तो आपका जवाब गलत तब नहीं होगा जब आप उसकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जब भी कोई आपसे बात करे या कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले शांत होकर उसकी बातों को सुने। मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि हम अपनी बात को कहने की हड़बड़ाहट में सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं, और तब ये डर ज़्यादा बढ़ जाता है कि कहीं मेरा जवाब गलत ना हो। अगर आप सामने वाले की बात को सुनेंगे तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सुनना सीखें अच्छे से। दूसरी बात आती है कि कहीं ना कहीं हमारा जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि धीरे धीरे हम अपने को ही नीचे गिरा देते हैं कि अरे नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, मुझ में तो इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर सकूं या किसी के सामने बात भी कर सकूं, मुझे तो डर लगता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है आपको, और इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक मैं आज आपको बताती हूँ, जो कि होती है मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी का मतलब है कि मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, आपको कोई टॉपिक वहाँ पे ब्रीफ करना है अपने सीनियर्स के सामने, तो आप आईने के सामने खड़ी हो जाइए और ये सोचिए कि आपके सीनियर्स हैं वहाँ पे, और उस टॉपिक को उसी तरह एक्सप्लेन करिए जिस तरीके से आप वहाँ एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे आपका डर निकल जाता है। अगर आप किसी इंसान से मिलने वाले हैं, आपको पता है कि कल मैं उससे मिलने वाली हूँ और मुझे उससे बात करनी है, तो आप थोड़ी सी मिरर प्रैक्टिस पहले ही कर लीजिए, इससे आपका डर निकल जाएगा। घर की कोई बात है, आप अपनी राय नहीं रख पाते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स को निकालिए और उन पर अपनी बातों के साथ प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे मिरर प्रैक्टिस करने से जब आप मिरर के सामने बोलने लगेंगे और बेबाक तरीके से अपनी राय, अपने पॉइंट्स, अपनी चीज़ों को रखने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप औरों के सामने भी उन बातों को रख पाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमेशा मिरर प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, किसी को जवाब देते वक्त शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि शब्द के तीर सामने वाले के दिल पर लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने नागेश्वर जी। वैसे ससुराल आकर धीरे धीरे परफेक्शन आ रहा है, बोलने लगे हैं बहुत, ये तो बहुत ही अच्छी बात है नेहा जी कि आप में परफेक्शन आ रहा है धीरे धीरे और आप बोलने लगी हैं, इट्स वेरी गुड। हमेशा अपने शब्दों को तौल कर बोलें, जैसे कि अभी नागेश्वर जी ने कहा, तो इस बात को मैं भी पूरी तरीके से लेती हूँ कि शब्द हमेशा तौले हुए होने चाहिए। देखिए, आप किसी से कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा वहाँ बैठ जाओ और मैंने कहा अरे आइए ना यहाँ बैठ जाइए, दोनों में बात एक ही थी पर बोलने के अंदाज में फ़र्क था। तो हमेशा आपका अंदाज बता देता है कि आप क्या कहना चाहते हैं।
अगर आप किसी को कोई उसकी कमी भी समझाना चाहते हैं या कोई ऐसी बात है जो उसे हर्ट भी कर सकती है, तो वो आराम से ऐसे शब्दों के साथ समझाइए कि उसे बुरा भी ना लगे और वो अपनी गलती समझ भी जाए। लेकिन अगर ऊंची आवाज़ में बात की जाती है तो अच्छी बात भी खराब लगती है, इसलिए शब्द और बात का तरीका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट्स कुमार जी आ गए हैं। हेलो इट्स कुमार जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है सुन सहेली में। तो अब चलिए, आई थिंक मैंने आपको काफ़ी मुझे लगता है ज्ञान जो है मैंने अपने लिसनर्स को दे दिया है, और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लास्ट वाले पॉइंट की तरफ, और फिर चलेंगे एक प्यारे से गाने की तरफ। तो लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो कहते हैं ना, बचपन में जो बातें दिल में बैठ जाती हैं वो हमेशा के लिए बैठ जाती हैं, इसलिए बचपन में किसी भी बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा टोकना या रोकना ज़रूरी नहीं होता। उसे हमेशा दूसरों के सामने बोलने दीजिए, क्योंकि जब दूसरों के सामने आप बोलने देंगे तभी उसके अंदर बचपन से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, वो हमेशा रहेगा। हम बच्चों को बचपन में इतना टोक देते हैं कि इनके सामने वैसे आप बात करो, उनके सामने वैसे बात करो, कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही वो हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी बातों पर टोके नहीं, बल्कि उनकी हर सवाल का जवाब दें और कहीं ना कहीं बोलने का हौसला भी। अगर सामने वाले का अंदाज़ गलत हो तो क्या करें? अगर सामने वाले का अंदाज़ गलत है या आपको उसकी बातें गलत लग रही हैं, तो उस जगह पे आपको क्या करना है कि आपको उस पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हम जितनी लाइटली रिएक्ट करते हैं ना बातें, उतनी जल्दी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाती हैं। तो हमेशा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए लिसनर्स, अब चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ। बस यूं गए और यूं आए, बस आप इस प्यारे से सॉन्ग को सुनिए और इन्जॉय कीजिए। बस यूं गए यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही

कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ढोलना। तो बताइए क्या बोले भाई, हम तो बोलते ही रहते हैं, यानी कि फिर से कुछ लेकर के आपके पास में हाजिर हो गए हैं। और कब तक चुप बैठे हैं? बिल्कुल भाई, जब सहेलियां और सखियां मौजूद हों, यानी कि हमारी सखियां और सभी हमारे लिसनर्स मौजूद हों, तो चुप बैठना जो है ना वो कुछ जचता नहीं। तो कब तक चुप बैठे हैं, और चलिए बोल देते हैं। और बोलने में अब मैं जो लेकर के आई हूँ ना, वो एक स्टोरी है, एक कहानी है। कहानी है एक महिला की, वो क्या है ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पहले पहले लवली सिंह जी आ चुकी हैं, जो कि लिख रही हैं, अंशिका मैम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी, कैसे हैं आप। तो चलिए अब बताती हूँ कि आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो है सुधा जी की। सुधा जी यानी कि इंदौर में रहने वाली एक ऐसी महिला जिन्होंने घर से ही व्यवसाय कैसे किया जाए, यानी कि कितने अच्छे से किया जा सकता है, और उसे कैसे आप एक बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, इसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है सुधा जी, जिन्होंने शुरू अपने घर से ही अचार बनाने शुरू किए, सिलाई का काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती चली गई और आज एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि सुधा जी बताती हैं कि वो एक बहुत ही बड़े यानी कि संयुक्त परिवार से ज्वाइंट फैमिली की बहू हैं, और घर में सभी जो वो लोग थे वो अलग अलग स्वभाव के थे। ओके नागेश्वर जेल, ओ सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि लड़की है, सॉरी लवली जी, मुझसे गलती हो गई, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मेल हैं, सो वी आर आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई होप कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। तो लवली जी एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है सुन सहेली में, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लिसनर्स, और मैं बता रही थी सुधा जी की कहानी आप सभी को, कि किस तरीके से वो एक जॉइंट फैमिली में थी और वहाँ सभी का नेचर अलग अलग था। जो लोग थे वो अक्सर आपस में, जो भी फैमिली मेम्बर्स थे उनकी छोटी मोटी खटपट हो जाती थी, लेकिन सुधा जी हर बार अपने खाना बनाने के तरीकों से, अपने अनोखे जज्बे से और छोटी छोटी चीज़ें करके अपने घर वालों को मना लेती थी, और उनकी प्यारी सी जो मुस्कान थी ना उसे हमेशा संभाल कर रखती थी, क्योंकि उनका मानना था कि घर ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि एक दूसरे की कमियों को अपनाने से बनता है। उन्होंने परिवार के हर सदस्य को महसूस कराया कि वे अकेले ही अपने घर के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, और घर का हर एक मेंबर घर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एक मेंबर भी ना हो तो आपका घर जो है वो नहीं चल सकता है। और नतीजा यही हुआ कि धीरे धीरे परिवार जो बिखर रहा था या जो झगड़े हो रहे थे वो धीरे धीरे दूर हुए, और उनका परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। और फिर उन्होंने घर की जिम्मेदारियां भी संभाली और देखा कि गांव की जो उनकी महिलाएं हैं इंदौर शहर के गांव की, वो कहीं ना कहीं उनमें हुनर तो है, कोई अच्छी कढ़ाई बुनाई करता है, कोई अच्छा अचार बनाता है, कोई अच्छा खाने का सामान बनाता है, कोई घर की चीज़ों से बहुत अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स बनाता है, लेकिन इन सभी को कहीं ना कहीं ओके तो कंफर्म कर लेते हैं नागेश्वर जी, और इन सभी को कहीं ना कहीं उन्होंने एक नई शुरुआत की, और एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके गांव की सिर्फ 5 महिलाओं के साथ उन्होंने सिलाई कढ़ाई, अचार पापड़ बनाना, घर की छोटी छोटी चीज़ें बनाना, डेकोरेटिव आइटम्स बनाना, ये सब शुरू किया। लेकिन सुधा जी बताती हैं कि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब उन लोगों ने मिलकर ये काम शुरू किया तो सभी यही कहते थे कि अब घर की जो बहुएं हैं वो घर छोड़कर बाहर काम करेंगी तो घर का काम कौन करेगा। लेकिन सुधा जी में जो जज्बा था वो आगे गया, और सिर्फ 5 महिलाओं से जो समूह शुरू हुआ था वो आज इतना आगे बढ़ गया है कि उसमें 50,000 महिलाएँ काम करती हैं, और वो एक महिला गृह उद्योग बन गया है, जो आगे जाकर वो अपना घर भी संभालती हैं और घर की सारी जिम्मेदारियों को भी संभालती हैं, घर के अंदर के काम भी करती हैं। और कहीं ना कहीं उनके फैमिली को भी अब समझ में आ गया है कि एक महिला जितनी निपुणता के साथ घर चला सकती है उतनी ही निपुणता के साथ वो बाहर का काम भी कर सकती है। क्योंकि जब हम किसी महिला की बात करते हैं तो हम कहते हैं ना कि स्त्री जो होती है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, और वक्त पड़ने पर वो अपने किसी भी गुण को आगे रख सकती है। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि महिला किसी संयुक्त परिवार की बहू हो, किसी घर की बेटी हो, किसी की पत्नी हो या किसी की बहन हो,
लेकिन उसमें वो ताकत हमेशा है कि वो समाज को दिशा भी दे सकती है, उसकी दशा भी सुधार सकती है और खुद को इंडिपेंडेंट भी बना सकती है। इसलिए कभी एक महिला को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अरे वो तो घर की बहू है ना, वो बाहर के काम कैसे करेगी। क्योंकि जिस दिन एक महिला ने ठान लिया कि उसे क्या करना है, उस दिन वो मिसाल बनती है। और ऐसी ही मिसालों में से एक मिसाल हमारी हम सब के लिए है, जिनसे हम मोटिवेट हो सकते हैं, जो कि हैं सुधा जी। सुधा जी जिन्होंने सिर्फ 5 महिलाओं से काम शुरू किया, लेकिन आज उनके समूह में 50,000 महिलाएँ हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हौसला बुलंद हो तो आसमां भी आपके कदमों में झुक सकता है, लेकिन शर्त है कि आपका हौसला बुलंद हो। आपका हौसला कितना बुलंद है ये आप तय कर सकते हैं। देखिए, हम जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमेशा छोटी ही होती है। आपने जब पहली बार ABCD लिखना सीखा होगा तो हम हमेशा टेढ़े ही शब्द बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम उन्हें सीधा बनाना सीख जाते हैं। ठीक उसी तरीके से लाइफ में जब भी किसी काम की शुरुआत करेंगे तो वो हमेशा बहुत अच्छी नहीं होगी, पर शुरुआत तो होगी, और जब शुरुआत होगी तो मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। इसलिए शुरुआत करने का जज्बा रखें, हर महिला को रिस्पेक्ट दें और उसके सपनों को हमेशा एक नई उड़ान देने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही लिसनर्स, टाइम भी हो गया है, यानी घड़ी ने कर दिया है इशारा कि अब हमें आपसे विदा लेनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें अपना फेवरेट FM रेडियो ज्ञानसली 9.6 FM, यह है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मुझे यानी कि अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को दीजिए इजाज़त। आई होप कि आप सभी को आज का शो बहुत अच्छा लगा हो। तो कल मिलेंगे यानी हमारे थर्सडे में कुछ बड़े बूढ़ों वाली बातें लेकर, कुछ सीख लेकर, कुछ नया लेकर आप सभी को। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गर्मी बहुत है सो पानी पीते रहिए। बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
3: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
3: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
3: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: श्रोताओं, तो वाईजी वाले वेंसडे के साथ में हाजिर है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे कांक्षा, लेकर के आपका फोनिंग फरमाइशी कार्यक्रम कॉलेज इन गोंडा। और वक्त हो चला है, घड़ी की सुइयां बता रही है 3:04 बाई स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गाना 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। और इसके स्टूडियो का नंबर वही है 6393-316429, यानी कि 63-93-31-64-29, जिस पर लगातार आपकी कॉल्स आ रही हैं, आपकी डिमांड्स आ रही हैं, आपकी फरमाइशें आ रही हैं, आपके पसंदीदा नगमे आ रहे हैं, कुछ डेडिकेशन के सॉन्ग हो जाते आज तो मजा ही आ जाता। देखते हैं आज डेडिकेशन में कौन किस के सॉन्ग बजवाता है। लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले भाई शो का आगाज तो कर देते हैं। हाँ, तो चलिए फिर श्री गणेश कर देते हैं आज के शो का, और प्रारंभ करते हैं आपकी अपनी आरजे कांक्षा की पसंद के गाने से। फिर आएंगे कुमार साहब की डिमांड के साथ में, यानी कि एमपी डीवा वाले इट्स कुमार साहब, और उसके बाद डिमांड होगी हमारे सहनवाज जी की, देन होंगे हमारे पंडित जी, फिर होंगे हमारी समरीन जी। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए, एंजॉय करते रहिए 3-4 के सफर को, यानी कि हमारे साथ। और नागेश्वर जी, आज फिर से आपके लिए मेले में खोई हुई रूपा का भी एक गाना आया हुआ है हमारे पास में, तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, ताकि हो सकता है, उम्मीद है इस दफा आपको रूपा जरूर प्राप्त हो। एंजॉय द ट्रैक, आते हैं इस प्यारे से नगमे के उस पार।

यहाँ कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको आप पहली दफा देखते हैं, उसके बाद वो चेहरा भूलता ही नहीं, और कुछ निगाहें तो इतनी प्यारी होती हैं कि नजरों से ही शुरुआत होके दास्तान मोहब्बत तक आगे बढ़ जाती है, और बस वो नजर, वो पहली नजर कभी भूले भूलती ही नहीं। फिलहाल एंजॉय करते हैं आपके अपने आरजे आकांक्षा के पसंद का ये रोमांटिक वाला सॉन्ग।

खुश होता हूँ। और नीना जी का कहना है कि भैया मैम जब अपने घर आए हुए हैं और नेहा जी भी मेरे साथ में, क्या बात है भाई, सभी अपने अपने मायके गए हुए हैं, हम तो पैदा हुए तब से अपने मायके ही, अपने अभी तक अपने ससुराल नहीं गए। बहुत बड़े दुख की बात है, हमारे पिताजी को उनका दामाद आज तक नहीं मिला। हम क्या बोले, आगे नहीं कुछ बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। और ये डिमांड हमारे कुमार साहब की MP रीवा से आई है, सुनते हैं। बहुत ही प्यारी सी डिमांड है भाई, चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के अपने प्यारे शहनवाज जी की।

जी हाँ श्रोताओं, और अब हम चलेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई है सहनवाज जी की ओर से, जो हमें मे भी अगर मैं गलत नहीं हूँ सुनते हैं अहमदाबाद से। गाना बहुत ही प्यारा है, अक्षय कुमार जी पे फिल्माया गया और मूवी है सबसे बड़ा खिलाड़ी। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

और हमारे कुमार साहब का कहना है, जो कि एक शिक्षक महोदय हैं, कहते हैं हर घर में है एक बच्चा जिसके हाथ में है एक बस्ता। क्या बात है, सभी शिक्षित होंगे अगर आप जैसे गुरु होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे पास में हमारे प्रबल मिश्राजी पंडित जी की। आइए एंजॉय करते हैं 3 से 4 के सफर में इस प्यारी सी डिमांड को, देन आते नेक्स्ट डिमांड लेके हम अपनी समरीन जी की। क्या बात है, व्हाट अ बीट।

नागेश्वर जी का कहना लग रहा है मुझे किसी ने आवाज लगाई है, तो भाई आपने अपना लाल घघरा क्यों नहीं चढ़ाया। इस गाने में आपके लाल घघरे की काफी ज्यादा आवश्यकता थी। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन इससे पहले नागेश्वर जी बिल्कुल मैंने आपको आवाज लगाई थी। आज मेरे पास में मेले से सॉन्ग आए हुए, हो सकता है रूपा जी आपको प्राप्त हो जाए, लेकिन उससे पहले आपको इंतजार करना पड़ेगा उस गाने के आने का। अभी हम चलेंगे समरीन जी की डिमांड की ओर बड़े ही शानदार नगमे के बाद। आइए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से ट्रैक को और फिर आते हैं हम अपनी नेहा जी की डिमांड को लेकर के। और उसके बाद आज हमारे एक नए लिसनर हमसे जुड़ गए हैं बॉम्बे इंटरप्राइजेस से, नूरामल मंदिर सामने से, तो उनका भी गाना उसके बाद।

जी नागेश्वर जी, आपने गेस तो किया लेकिन गलत गेस किया। इस गाने की डिमांड की गई थी मंगू जी के द्वारा, वो अपने ससुराल जाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने कहा मैं पालकी में होके सवार जा रही हूँ। और हमारी जो चंगू जी की डिमांड है, वो डिमांड है मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ रो। भाई देखते हैं इनका गाना आज बच पाएगा या नहीं, क्योंकि लंबी लिस्ट है, लंबी कतार है। लेकिन उससे पहले अब बारी आ गई हमारे आज के नए लिसनर यानी कि जो हमें सुना है बॉम्बे इंटरप्राइजेस से, नूरामल मंदिर के सामने से, गुंडा से। आइए सुनते हैं ये यारी दोस्ती वाला बहुत ही बेहतरीन सा सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, और बस सुन लीजिए फिर बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा सॉन्ग। मेरा तो फेवरेट है भाई, देखते हैं आपका कितना फेवरेट होने वाला है ये सॉन्ग।

हाँ जी, तो भाई बड़े देर से भंगड़ा कर लिया हमने, गित्ता पा लिया हमने, और दो चार बोतल नहीं चढ़ाया नहीं भाई, गर्मी का सीजन है, पानी वानी पीजिएगा, इससे ज्यादा मत जाइएगा, यकीन मानिए। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे पास में अजीज साहब की, जो हमें सुनते हैं मुंबई से। आइए सुनते हैं आज इनकी ये वाली डिमांड, और हमारी चीची जी पे फिल्म आएगी, थोड़ा सा सैड वर्जन में लग रहा है, लव 86 का सॉन्ग, आइए एंजॉय करते हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, अजीत साहब की डिमांड पे अभी हमने एंजॉय किया ये वाला ट्रैक, और अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, जो कि है हमारे अमित कुमार जी की डिमांड, और गाना है भैया वही वाला पुराना वाला बेदर्दियों वाला दिल तोड़ू सॉन्ग। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे अमित कुमार जी ने इस सॉन्ग की डिमांड कैसे की है। चलिए हम भी सुनते हैं पहली दफा ये सॉन्ग और फिर जानते हैं कि भाई काहे की है इन्होंने इस सॉन्ग की डिमांड। गाना है क्या, आइए आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं।
1: तुम्हारे गले की खनक और आयत की पायल की छनक, पूरा मोहल्ला गूंज उठता था।

बात है भाई अमित कुमार जी, आपने भी हमें कुछ बेवफाओं की याद दिला दी है। क्या मस्त सॉन्ग बजवा दिया, मजा आ गया। और सबलू सावन जी लिखते हैं सादा क्रूंच मुंबई से, इनका कहना है आजकल आकांक्षा जी की स्कूल में बकबक कम हो गया है, SMS पे इंजेक्शन लगाने लगी हैं कम। तो साहब बस इतना बताएंगे आपसे कि 3-4 दिन से हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है और आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपको हमारी आवाज़ हमारी शक्ल देख के यकीन भी नहीं कर पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे कि हम इतने बीमार हैं। क्या 3-4 दिन से हमारा क्या हाल है हम ही जान रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इसीलिए थोड़ा सा बस आपको हमारी आवाज़ कम सुनाई देती है, गाने ज़्यादा सुनाई देते हैं। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। डिमांड हमारे पास में आई हुई हमारे प्यारे इंडिया वाले देव प्रसाद जी की ओर से। और देव प्रसाद जी, पानी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया हमने, बस पानी का वर्जन है लेकिन पानी का वर्जन अपग्रेडेड में है। आइए सुनते हैं यो यो हनी सिंह वाला ये गाना और फिर आते हैं मेले की ओर।

हाँ जी, और देव प्रसाद जी की डिमांड पे पानी वाला सॉन्ग हमने प्ले किया, बस अपग्रेड वर्जन बजा दिया। इन्होंने पुराने वाले पानी की डिमांड की थी, हमने नए वाले पानी तक इन्हें पहुंचा दिया। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले हम कुछ कहना चाहेंगे कि नागेश्वर जी का कहना है कि आपकी तबीयत खराब हुई, आपने हमें बताया नहीं, हमारी पड़ोस में एक डॉक्टर साहब थे, हम भेज देते, इसलिए हमने आपको बताया नहीं, क्योंकि आज तक आप रूपा भाभी का पता तो लगा नहीं पाए। पूरा बताइए, एमपी से लेकर गोंडा तक के सभी लोगों को तुमने मतलब आपने सर्च पे लगा रखा है, सर्च वारंट जारी कर रखा है, और मेले मेले हम ढूंढ रहे हैं रूपा जी को। आज भी मेले का एक सॉन्ग आया है, चलिए लगाते हैं अपना अपना ठेला और जाते हैं मेला ढूंढ के लाते हैं अपनी रूपा भौजाई को। फिलहाल एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को सुरेंद्र यादव जी की डिमांड पे और डेडिकेशन में आया हुआ हमारे रूपा भौजाई के, यानी कि हमारे नागेश्वर जी के, उनके लिए एंजॉय द ट्रैक।

हाँ जी, सुरेंद्र जी की उधर हमें रूपा जी मिल गई हैं, तो रूपा जी को प्लीज ट्रांसफर करवा दीजिए एमपी तक, हमारी नागेश्वर धाकर जी तक। फिलहाल मजाक था, मजाक मस्ती हुई चलती रहेगी, पर उससे पहले जानना चाहूंगी हमारे प्यारे एजेंट्स जितने भी चैट बॉक्स में है, किसने किस किस का ठेला लगाया था जिसकी बदौलत रूपा जी फाइनली इस गाने में मिली है। सचमुच नहीं प्राप्ति हुई अभी उनकी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और उस डिमांड के बाद हम आते हैं चैट बॉक्स की ओर। तो नेक्स्ट जो डिमांड है वो हमारे पास में आई हुई है किसकी, ये बताते हैं। नेक्स्ट डिमांड हमारे पास में आई हुई है सुरेंद्र जी के बाद में सबीहा जी की, और सबीहा जी के सॉन्ग के बाद हम आएंगे रमेश जी के सॉन्ग के ओर, लेकिन उससे पहले हम आएंगे चैट बॉक्स की ओर। चलिए चलते हैं, मांझी को तेज करते हैं और बढ़ते हैं इस नगमे की ओर। एंजॉय द ट्रैक, 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय करें आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा को। आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM पे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। एंजॉय द ट्रैक।

भाई दिल की पतंग को काटने के लिए एक ही मांझा लगता है, वो होता है नजरों का। और एक बार अगर चल गया ना भाई गॉड, दोबारा आप भूल नहीं पाएंगे, ऐसा जहन में उतरता है, सीधे नजरों से दिल तक पहुंचता है और दिल की पतंग को वही काटता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी के मैसेजेस की ओर। और नागेश्वर जी का कहना है प्रबल जी से, हाँ जल्दी जल्दी पहचान कराना, हम रूपा के बगैर जी नहीं सकते हैं, और अगर ज्यादा हुआ तो नींबू पानी का ठेला लगा के यही खड़े हैं, इसी को पी के अपनी जान दे देंगे। ओ माई गॉड, कोई पानी पूरी का ठेला लगा के खड़ा है, कोई नींबू पानी का, और कोई लगाया है गन्ने का जूस। भैया सभी ने एक बात तो बहुत सही वाला किया है कि गर्मियों के सीजन में खाने पीने वाली चीजों की स्टॉल आपने डाल रखे मेले में। सुरेंद्र जी आपके उधर काफी भीड़ लग रही है हमें, थोड़ा भीड़ को कम करिए ताकि हम भी आ सके। वैसे हमारे साथ में कौन कौन जुड़ा हुआ है चैटबॉक्स में, आइए आपसे बताते हैं। सबसे पहला मैसेज हमारे पास में आया हुआ है प्रबल मिश्रा जी पंडित जी का, फिर नागेश्वर ढाकर जी हैं रतलाम की गलियों से, इट्स कुमार साहब हैं एमपी रीवा से, और इसके बाद में सुरेंद्र कुमार जी गौरा चौकी से, और फिर है हमारी नीना जी और नीहा जी, ये दोनों ही हमारे दिल से हैं, यानी कि अभी तो फिलहाल ये अपने अपने मायके में हैं। एक हमें सुनती हैं बहराइच से, एक हमें सुनती हैं कहाँ से, गोंडा से। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की अगर बात करते हैं तो आप सभी के हार्ट इमोजीज और रेटिंग बता रही है कि आप लोगों ने गानों को काफ़ी एंजॉय किया है, और आगे बढ़ रहे हैं लगातार। कितनी सारी गॉसिप्स आप कर लेते हैं, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आगे बढ़ते ही बढ़ते हम देख रहे हैं कि बीच में एक मैसेज है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, जो पहले ही ससुराल पहुंच चुका है वो ससुराल ना जाने का प्रयत्न अब कैसे कर सकता है। मैं ये जानना चाहूंगी अपनी चंगू जी से कि भैया जब आप पहले से ही अपने ससुराल में हैं तो अब क्या कह रही हैं कि आप ससुराल नहीं जाएंगे। गुड आफ्टरनून, चुन्नू की मम्मी से बड़े ही दिनों बाद मुलाकात हुई, लगभग एक हफ्ते बाद, ओके थैंक यू बताने के लिए। लवली सिंह जी हैं जो हमें सुनते हैं आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से। मुस्तफा जी भी हैं भाई सऊदी अरेबिया से, बड़े लुके छुपे मैसेज आजकल ये करते हैं। बाय गॉड अगर नजर ना पड़ती तो मुस्तफा जी तो हमारे निकल लिए थे, मतलब हमारी नजरों के सामने से मैसेज ही ना मिल पाता हमें इनका। और इसके बाद में क्या मैसेज भेजा है, लिखा है लो मेरा दुख, मेरी दुख भरी कहानी पढ़ लो, उसके बाद में अगड़म तगड़म बगड़म दगड़म दगड़म धड़म धड़म धड़म धुम धुम, और इसके बाद में कहते हैं मुझे पता था मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता है। क्या बात है, ऐसे दुख हो ना तो वाकई कोई नहीं समझेगा, अगर समझना चाहेगा तो भी नहीं समझेगा। आरजे एके को गुड वेलकम, थैंक यू सो मच लवली जी। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज आप सभी के, मुकेश यादव जी हैं गोंडा से, गुड आफ्टरनून डियर मैम आरजे कांक्षा जी, हाँ जी थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला हाँ जी। और अब हम आगे बढ़ेंगे मनी शर्मा जी के मैसेज की ओर, और ये हमें सुनते हैं भटपुरवा से, खुरासा से, गोंडा से। और उसके बाद में एक नृत्य करती हुई प्यारी सी इमोजी हमारे पास में है, जो भी हैं आपका भी स्वागत है। उसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की ओर हम बढ़ रहे हैं, एक हमारे प्यारे नए नए लिसनर हमें नजर आ रहे हैं, और इनका नाम इन्होंने बड़ा ही अच्छा सा रखा है, ड्रेक करके। ओके ड्रेक जी आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजी आकांक्षा। और जस्सी जी भी आ गए हैं, हेलो एवरीवन, जस्सी जी आपका भी मोस्ट वेलकम है। वैसे जस्सी जी आप बताइएगा आप कहां से हमें सुन रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई है महाराष्ट्र से रमेश कुमार जी की। चलिए शुरुआत करते हैं, वैसे तो गर्मियों का मौसम है लेकिन आप महसूस करिएगा इस गाने के माध्यम से, क्या गाने से जानिए ना, हम क्यों बता दें, हर चीज़ बता दें। ओहो

घड़ी की सुइयां बता रही है 3:51 हो गए हैं, शेष 9 मिनट हमें पास में। डिमांड अभी भी बहुत सारी हैं और अगर कुछ डिमांड रह जाएंगी तो माफ कर दीजिएगा। फिलहाल एंजॉय करते हैं इस प्यारे से ट्रैक को, बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड है। रमेश कुमार जी की खासियत है ये गाने को दोबारा कभी नहीं दोहराते और ये मुझे काफी अच्छा

हाँ जी, और हमारे सामने बलम जी की भाई एक प्यारी सी अरदास आई हुई हमारी ओर, कहते हैं कि हमको भी कहीं पे चिपका दीजिए प्यारी बबनी जी। तो बबनी जी को आपका मैसेज प्राप्त हो गया है, और चलिए आपको चिपकाते हैं मुमताज अंसारी साहब की डिमांड में। ये डिमांड हमारे अंसारी साहब की, और डेडिकेशन में हम भेजते हैं अपने प्यारी सांवरे बलम जी को, यानी सबलू सावन जी को। एंजॉय द ट्रैक।

और ये गाना चूंकि हमारे मुकेश साहब को बहुत ज्यादा पसंद आया, जो दिल से सुनते हैं और दिल को कहीं ना कहीं छू लेने वाला, ये डिमांड था हमारे मुमताज अंसारी साहब का, जिसमें हमने सबलू सावंत जी को ऐड किया और अब मुकेश जी को भी ऐड करें क्योंकि इनको ये गाना काफी पसंद है। आते हैं उसके बाद, इस गाने के पूरे होने के बाद एक जगत व्यापी सुखद एहसास आप लोगों को कराते हैं, जितने भी हमारे मेल वर्जन हमें सुन रहे हैं, मतलब जितने भी हमारे पुरुष प्रजाति लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज इट्स कुमार साहब की ओर से।

हाँ जी श्रोताओं, तो मैसेज ये था कि एक पति की खुशी का अंदाजा तुम क्या ही लगा पाओगी राजा बाबू। एक पति की खुशी का अंदाजा तुम क्या ही लगा पाओगी राजा बाबू, जब वो अपनी पत्नी को बस में चढ़ा आया हो और उसकी बहन का कॉल आया हो कि भैया भाभी कहाँ हैं, और भाई प्यार से बोले, दिल के कोने कोने में खुशियां भर के बोले, वो बस में है बहना। मतलब समझ रहे हैं, वो बस में है लेकिन इनको लग रहा है कि वो मेरे बस में है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कुमार साहब, आज तक नहीं हुआ है ये धरती पे, कोई ज्यादा हो जाएगा लेकिन बोल दे रहे हैं। माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ जो अपनी पत्नी से जीत जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है किसकी बता देते हैं, राजेश वर्मा जी की। और इस गाने को हम डेडिकेट करेंगे अपनी प्यारी सी नीना जी को। नीना जी अगर हमें सुननी है तो भी ठीक है, नहीं सुननी है तो भी ठीक है, हमने डेडिकेट कर दिया है। एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को। उसके बाद में आज की लास्ट डिमांड होगी हमारे भगवान ट्रेडर्स की ओर से, जो हमें सुनते हैं स्टेशन रोड गोंडा से।

और हाँ जी मुमताज साहब, आपके लिए दो स्पेशल फीडबैक आए, एक हमारे मुकेश जी की ओर से और दूसरे हमारे लवली सिंह जी की ओर से। इतना प्यारे सा गाना सुनवाने के लिए आपको थैंक यू बोला गया। फिलहाल ये गाना है हमारे राजेश वर्मा जी की डिमांड पे, और उसके बाद आज की लास्ट डिमांड होगी भगवान ट्रेडर्स की ओर से, जो कि हमारे नए लिसनर है स्टेशन रोड से। जिन जिन की डिमांड रह जाएगी वो है हमारे सुरेश कुमार जी चौक गोंडा से, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे एहसान साहब और राजू सलमानी जी, और साथ ही साथ में शशि जी। चार डिमांड आज भी छूट गई, ओ माई गॉड।

क्या बात है भाई, मजा आ गया है गाना सुन के। और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का बहुत कुछ कहना है। और नागेश्वर जी कह रहे हैं, पत्नी को अगर बस में करने का ताबीज होता तो सबसे पहले हमारे कुमार बाबू ही जाते तांत्रिक के पास। आज तक आप रूपा जी को तो कर नहीं पाए, दूसरे की बता रहे हैं। मुस्तफा जी को गाना काफी पसंद आया। सरलू सावंत जी का कहना, कुछ बातें पर्दे में ही रहने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। जिन जिन की डिमांड रह गई उनसे माफी, और बस यही कहेंगे कल आइएगा फिर से अपने शो में, डिमांड करिएगा और हो सकेगा तो शाम के शो में कॉल या मैसेज के थ्रू, जी हाँ, सिंपल जी के शो में यानी के गीत आपके नाम से में भी आप डिमांड कर सकते हैं। आज की लास्ट डिमांड हम लेते हैं भगवान ट्रेडर्स जी की ओर से, स्टेशन रोड से। अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल आपके अपने शो कॉलर ट्यून गोंडा के साथ ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा ज्यादा वाला रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तबीयत बड़ी नासाज हो रही है सभी के। बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब
8: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now listening, Gana Stelly 99.6 FM, ये है गोना शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधूली और आप सुन रहे हैं रेडियो ग्यारह स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज इस प्रोग्राम में गोंडा की कुछ ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज को हम आपसे रूबरू कराते हैं, जिनकी जिंदगी के पहलू के बारे में आप शायद अब तक तो नहीं जानते हैं, लेकिन इस शो के आने के बाद उनसे बातचीत के जरिए हम उनकी जिंदगी के बारे में जान लेते हैं, और फिर आपको उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई पहलुओं से बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको सीखने को मिलती है। तो उसी कड़ी में आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मिस्टर उपवन कमल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका वेलकम करता हूं मैं।
2: थैंक यू अदनान जी, थैंक यू। और ये बताइए कि आज आप किससे हम लोग की मुलाकात करवा रहे हैं?
1: जी, आज हमारे बीच में मौजूद हैं अनुज प्रकाश जी, जो कि पूर्व महामंत्री हैं सिविल बार एसोसिएशन गोंडा के। वेलकम करते हैं हम आपका अपने इस स्टूडियो में।
3: धन्यवाद अदनान जी,
1: थैंक यू। सो जैसा कि हमारा ये कम्युनिटी रेडियो है और हमने बताया अपने श्रोताओं से कि आज आपके बारे में उनको जानने को मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपना संक्षिप्त विवरण दें, बताएं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके माता पिता, अपने सिबलिंग्स के बारे में।
3: जी, मैं अनुज प्रकाश अदनान जी, जैसा कि आपने बताया, मेरी पैदाइश गोंडा की ही है। पिताजी विधि व्यवसाय में ही थे, डीजीसी रेवेन्यू रहे 1979 से 2001 तक, करीब 56 साल 57 साल उन्होंने वकालत किया गोंडा मुख्यालय पर। मदर हमारी सरजू प्रसाद कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में हिस्ट्री की लेक्चरर थी। 15 साल पहले करीब वो रिटायर हो गई, लेकिन अभी भी अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रही हैं। तो ऐसे में शुरू से ही मुझे घर में शिक्षा का माहौल मिला। हमारे ग्रैंडफादर साहब भी शिक्षा के प्रति काफ़ी सीरियस थे, तो इसलिए घर में शुरू से ही एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग किया, तो इसीलिए शुरू से ही अध्ययन अध्यापन का कार्य वरासत में कह लीजिए आप कि मिला।
1: क्या बात है, तो आपने ये बताया कि आपको जो काम मिला वो कहीं ना कहीं आपकी विरासत से मिला, और ये ऐसा होता भी कॉमनली देखा जाता है कि आपको विरासत में मिलता है। अपने सिबलिंग्स के बारे में बताएं, कितने भाई बहन हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं?
3: हम 3 भाई बहन हैं अदनान जी, सबसे छोटा मैं हूं, हमसे बड़ी सिस्टर है अपर्णा श्रीवास्तव, वो मैरिड है डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं रुड़की में। इस समय सबसे बड़े हमारे भाई साहब पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स में, इस समय स्टेशन कमांडर प्रयागराज में पोस्टेड हैं।
1: जी, तो ये तो रही आपके सिबलिंग्स की बात, अब जरा आपकी शिक्षा दीक्षा की बात कर लेते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा से लेके आपके ग्रेजुएशन तक या जहां भी आपकी हायर एजुकेशन रही है उसको सीरियल वाइज आप बताते रहे कि कौन सी कहां से आपने प्राप्त की। प्राइमरी लेवल आपने कहां से प्राप्त किया, 10th आपने कहां से किया, 12th कहां से किया, ग्रेजुएशन, और उसके बाद आपकी जो भी हायर एजुकेशन रही हो।
3: नर्सरी से क्लास 8 मैं फातिमा स्कूल गोंडा में मैंने शिक्षा प्राप्त किया, उसके बाद क्लास 9 से 12 तक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज गोंडा में मैंने 12th पास किया, फिर बीएससी लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, लॉ चूंकि गोंडा में उस समय उपलब्ध नहीं था तो मैं लखनऊ चला गया, फिर एलएलबी की शिक्षा और डिग्री मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया वर्ष 99 में, उसके बाद 2000 से मैं विधि व्यवसाय में।
2: जी अनुज जी, आपने बताया कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो फातिमा स्कूल से हुई। आप अक्सर ये देखा गया है कि जो इंग्लिश मीडियम की में बच्चे पढ़ते हैं, तो चूंकि सोसाइटी एक ऐसी चीज हो जाती है, सोसाइटी तो होता क्या है कि जब आप अपने कोलीग से मिलते हैं, उनके साथ हंसते बैठते उलते बैठते पढ़ते हैं, तो स्लैम बुक में आदमी लिख लेता है कि हम ये बनेंगे बड़े होकर। क्या आपने उसी समय सोच लिया था कि आपको विधि व्यवसाय में ही आना है?
3: जी उपवन जी, चूंकि वकालत मुझे वरासत में मिली, शुरू से मैं पिताजी के साथ था, हमारे छोटे बाबा भी इसी व्यवसाय में थे, तो आप कह सकते हैं कि जब से मैंने आँख खोली तब से घर में कोई ना कोई रहा, ग्रैंडफादर, छोटे ग्रैंडफादर साहब, और पिताजी भी इसी व्यवसाय में थे, तो इस कारण शुरू से ही घर में कुछ माहौल ऐसा था कि मैं भी उसी धारा में, कह लीजिए, बहता चला गया।
2: धारा में बहना अलग बात है और इंटरेस्ट होना एक अलग की बात है। अभी मैं आपके बड़े भाई को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए आप ही से पूछ रहा हूं कि अभी आपने बताया कि आपके फादर जो, आपके बड़े भाई जो हैं, वो एयरफोर्स में हैं इस समय, तो उनका चूंकि परिवार एक था लेकिन उनका इंटरेस्ट था उधर जाने का, तो आपका इंटरेस्ट वरासत अलग बात हो गई, और आपका इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट होता तभी आप वरासत तो पकड़ते, तो आपका कुल मिलाकर यह भी कहा जा सकता कि आपका इंटरेस्ट भी विधि व्यवसाय में था।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने उपवन जी, चूंकि बड़े भाई साहब का आपने जिक्र किया पायलट इंडियन एयरफोर्स में, लेकिन उनकी सारी शिक्षा दीक्षा सब लखनऊ से ही हुई, तो शुरू से ही बाहर रहे, मैं इस परिवेश में रहा, तो शुरू से ही पिताजी को देखा, ग्रैंडफादर को देखा, तो उसी में फिर मजा आने लगा, और जब मजा आने लगता है तो फिर वही, उसी जिसमें मजा आए काम में, उसी को ही अपना फ्यूचर बना लीजिए, उसी को प्रोफेशन बना लीजिए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है।
2: ये बात तो बहुत अच्छी की कि जिसमें मजा आना चाहिए वही काम करना चाहिए, लब्बो लुआब आपकी बात का ही निकला। अब मजे की ही बात करते हैं, जैसा कि बच्चे होते हैं वो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, आप कैसे थे शुरुआती दौर में, नटखट थे या चंचल या शांत स्वभाव के?
3: ये था तो मैं बहुत बदमाश। अच्छा। जैसा कि पेरेंट्स बताते हैं।
1: आपको याद नहीं है क्या?
3: नहीं याद है, लेकिन सारी शैतानियां तो अदनान जी याद नहीं होती है,
1: जी जी
3: कुछ
1: जी।
3: बाद में पेरेंट्स बताते हैं कि ये किया था वो किया था।
1: बिल्कुल,
2: कोई एक ऐसी कहानी जिसमें हम लोग को भी मजा आ जाए, हाँ, हमारे श्रोताओं को भी मजा आ जाए, कोई ऐसी चीज हो तो उसको बताइए, हम लोग के साथ शेयर करिए।
3: हमारे पहले टीचर थे नंद किशोर त्रिपाठी जी, तो उनकी मैं मूछ बनाया करता था स्केच पेन से नर्सरी में, तो ये आप कह सकते हैं कि हमारे शराफत की पहली पन्ना आप कह सकते हैं इसको,
1: सबूत है उसका। हाँ। आप सबूत बहुत मांगते हैं ना।
2: खैर अनुज जी, ये तो खैर आपके चंचलता की बात हो गई, और जैसा कि अभी आपने कहा उसी पर फिर हम आते हैं कि चंचलता के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, आदमी जब बच्चा होता तो खेलता कूदता भी है, तो आपका स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट रहा, और क्या आप स्ट्रीट स्पोर्ट्स तक ही रहे या फील्ड में भी जाकर कुछ आपने खेला या कुछ मुकाम हासिल किया?
3: देखिए उपवन जी, हम लोग का समय ऐसा था कि उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो उस कारण हम लोग को फील्ड गेम खेलने का सौभाग्य मिला। आज की जनरेशन सारा गेम मोबाइल पे खेलती है, लेकिन हम लोग के समय में मोबाइल नहीं था, इस कारण हम लोग ने मैंने हॉकी भी खेली है स्कूल में, स्कूल लेवल, क्रिकेट भी खेला है थोड़ा बहुत, फुटबॉल में भी हाथ पैर चलाए हैं, लेकिन फील्ड गेम, स्ट्रीट गेम और कॉलेज में खूब खेला है।
2: अच्छा, ये तो हो गई फील्ड की बात, कॉलेज की बात हो गई, घर के सामने जो उस जमाने में, जैसा कि आपने कहा कि इस जमाने में बच्चे मोबाइल है, आप उस जमाने में लोग गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे, लट्टू नचाना, ये सब भी कुछ किया या नहीं?
3: नहीं, ये सब गेम नहीं खेला।
2: अच्छा अच्छा, चलिए, इसके अलावा कभी म्यूजिकल प्रोग्राम में, एनुअल फंक्शन वगैरह में कोई इंटरेस्ट कभी पार्टिसिपेट किया हो, उसके बारे में कुछ शेयर करें?
3: स्कूल टाइम में जब तक फातिमा में था तो कल्चरल प्रोग्राम्स में, करीब करीब हर कल्चरल प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होता था स्किट्स वगैरह में। आई वॉज नॉट अ गुड सिंगर,
2: लेकिन आप ड्रामा वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे?
3: जी, ड्रामा वगैरह में पार्टिसिपेट किया।
2: कभी गाने से कोई लगाव रहा आप क्या?
3: नहीं, गाना मैं रेगुलर सुनता हूँ, गाना वही कहा ना, आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट आई एम अ
2: गुड लिसनर।
3: लेकिन मुझे थोड़ा, हमारा टेस्ट थोड़ा मुख्तलिफ है, मुझे गजल या सेमी क्लासिकल गाने ज्यादा।
2: तो चलिए अदनान जी, एक अनुज जी की पसंद का कोई गजल सुन लेते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आप एक अच्छे सिंगर तो नहीं रहे, लेकिन एक अच्छे आप लिसनर जरूर हैं, और आज आपको उसका सबूत भी देना होगा, क्योंकि अभी हम आपके इस बात पे हम चूंकि म्यूजिकल ब्रेक भी लेने वाले हैं, और साथ ही साथ इसी म्यूजिकल ब्रेक में हम आपको सुनाने वाले हैं एक प्यारी सी गजल। अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा अनुज प्रकाश जी से। आप लोग सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मिलते हैं इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
6: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
6: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ, आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत जो जारी है वो अनुज प्रकाश जी से है, जो कि पूर्व महामंत्री सिविल बार एसोसिएशन गोंडा है। अभी आपने अपने टेस्ट के बारे में बताया कि आपका टेस्ट मुख्तलिफ है, और साथ ही साथ आपने गजल का नाम लिया, हमने गजल भी अभी आपको सुनाया। अनुज जी, अब आपके पेशे पे आते हैं। आप चूंकि पेशे से एक वकील हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वकील के कई प्रकार होते हैं, वकील कोई एक प्रकार के नहीं होते। आपका मेन काम क्या होता है, वकीलों में आप किस प्रकार के वकील हैं?
5: बिल्कुल सही कहा आपने अदनान जी, वकील मतलब कंप्लीट पैकेज नहीं हो सकता। टैक्सेशन के हैं, सेल्स टैक्स का अलग है,
6: इनकम टैक्स
5: के अलग हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एक अलग इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है, फैमिली कोर्ट है वो अलग बॉडी है, कंज्यूमर केसेस के लिए अलग है, तहसील के लिए अलग है, रेवेन्यू के लिए अलग है, तो सबकी विधाएं अलग अलग हैं। तो नॉट नेसेसरी कि वकील मतलब सब में वो होगा, हर चीज में स्पेशलाइजेशन होता है, जस्ट लाइक मेडिकल फ्रेटर्निटी में है कि बीइंग एमबीबीएस या किसी उसमें स्पेशलाइजेशन करना।
4: राइट, तो आपका किस में है?
5: मेरा मेन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन केसेस में ज्यादा दखल रहा है।
6: जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि मोटर एक्सीडेंटल केसेस में आप वकालत ज्यादातर आपका दखल रहा है उसमें करते हैं। ये बताइए कि हमारे बहुत सी चीजें ऐसी हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स ऐसी हैं, गवर्नमेंट की योजनाएं ऐसी हैं जो हमारे लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ऐसी कोई एक ऐसी बात बताइए जो हमारे श्रोताओं को जानकारी हो जाए। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं देखता हूं कि एक्सीडेंट हो गया, लोग थर्ड जिससे एक्सीडेंट हुआ उसको पकड़ के मारते पीटते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं, या दिमागी एक उनके ये रहता है कि बीमा कंपनी दे देगी। इसके में आपका क्या रोल होता है और किस तरह से आप एक्सीडेंटल क्लेम दिलाते हैं या कैसे क्या होता, पूरा डिटेल्स बताइए।
5: जी उपन जी, देखिए ऐसा है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई घटना दुर्घटना हुई, किसी वाहन ने उसको टक्कर मारी, तो मारने पीटने से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। आप उसके लिए गवर्नमेंट ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई है, आप पुलिस में FIR करेंगे। यदि आपको वाहन का नंबर मालूम है तो पुलिस उस वाहन के सापेक्ष और घटना के पूरे विवरण को करके उसकी एक रिपोर्ट कोर्ट पे प्रेषित करेगी। उसके आधार पे आप जो भी ऑफेंडिंग व्हीकल है या जिसने आपको क्षति पहुंचाई है उससे आप कंपनसेशन ले सकते हैं। कंपनसेशन भी कई प्रकार के होते हैं, वो चोट के प्रकार के हिसाब से या आपको उससे क्या नुकसान हुआ है, आपकी जीवन पे या जीवन शैली पे या कार्य क्षमता पे क्या फर्क पड़ा है उसके आधार पे वो निर्धारित करता है। जैसे मृत्यु है तो हर व्यक्ति की मृत्यु का अलग अलग आकलन होगा, व्यक्ति की आय आयु के हिसाब से उसका आकलन होगा। उसी प्रकार अगर इंजरी है तो इंजरी का भी फर्क आएगा कि माइनर इंजरी है, ग्रीवियस इंजरी है, एम्प्यूटेशन है, हाथ कट गया तो उसका उस व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस हिसाब से कोर्ट उसका आकलन करती है और उसकी कोई कैपिंग नहीं है। सबसे विशेष चीज है, चूंकि पब्लिक में इसको जानकारी नहीं है, उसकी कैपिंग नहीं है। करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक आपको कंपनसेशन मिल सकता है। आपको अपनी आयु और आय को प्रमाणित करना पड़ेगा और प्लस अपनी क्षति को न्यायालय के सामने का बहुत सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई भी जटिलता नहीं है। इसमें कोर्ट फीस भी शून्य के बराबर लगती है, पूरे क्लेम में मात्र आपको 10 रुपए कोर्ट फीस प्रेषित करनी होती है। तो आम जनमानस तक ये न्याय पहुंचे और आम जनमानस उससे हैरस ना हो कि जनरली आदमी क्या करता है, कचेरी के चक्कर में कौन पड़े, चलो 1000-2000 लेके इसको मामला यहीं रफा दफा कर दो। उसमें व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, मात्र 10 रुपए की कोर्ट फीस पे आपका पूरा मुकदमा चलेगा और जितने दिन का आपका डिले होता है उतने दिन का आपको ब्याज भी उस पे प्राप्त होता है।
6: जी ये तो अभी आपने बताई मोटर एक्सीडेंटल क्लेम की बात, और उसमें ये आप बता रहे थे कि कितना क्षतिग्रस्त हो गया उसका शरीर, कितनी इंजरी हुई, घायल हो गया, हाथ कट गया, आंख, कभी कभी ऐसा होता है आंख की रोशनी चली जाती है, इस तरह के केसेस आ जाते हैं जो कि अभी आप बता रहे थे एक्सीडेंटल केस में, वो भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत। अब एक इसी चीज को हम दूसरे एक्ट में ले जाते हैं, वो है कि देखा गया है अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया और डॉक्टर से की गलती मान लीजिए, हालांकि कोई डॉक्टर हमारे समझ से गलती नहीं करता है, वो बाई चांस हो जाता है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में जैसा कि पेशेंट कह रहा है कि उनकी गलती के वजह से हमारा हाथ कट गया या हाथ में मवाद आ गया और उसको लेकर वो कंज्यूमर फोरम चला जाता है, इसमें वकील का क्या रोल है?
5: देखिए उपवन जी, आप यदि आपको डॉक्टर से कोई ग्रीवांस है तो आप उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, उपभोक्ता फोरम में आप परिवाद अपना दाखिल कर सकते हैं। पब्लिक की सहूलियत के लिए 5 लाख रुपए तक का अगर परिवाद है तो उस पे न्याय शुल्क 0 निर्धारित कर दी गई है, तो बहुत ही नॉमिनल। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन आधिकारिकता 50 लाख तक की है, तो 50 लाख तक का आपका मुकदमा आपके जिले में ही हो सकता है, 5 लाख तक की कोर्ट फीस शून्य कर दी गई है। और जहां तक बात है कि यदि आपको कोई शिकायत है कि डॉक्टर की लापरवाही से मेरा नुकसान हुआ है, चाहे आपके पेशेंट को शारीरिक नुकसान हुआ हो या आर्थिक नुकसान हो, उसके लिए आप उपभोक्ता फोरम की परिधि में आ सकते हैं, आप वहां कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। यदि आप कोर्ट को लगता है कि आपको कोई नुकसान हुआ है तो आपको उचित उसकी क्षतिपूर्ति मिलती है। मेडिकल की जहां तक प्रश्न है आपका, उसके लिए मेडिकल बोर्ड भी तलब किए जाते हैं, आपकी जो दवा पानी इलाज जो आपने कराया है या जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से आपको नुकसान हुआ है, उसके लिए कोर्ट मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन तलब कर सकता है और करता भी है कई मुकदमों में जटिलता के कारण। लखनऊ के GMC, लोहिया हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सब जगह से, बलरामपुर हॉस्पिटल से मेडिकल बोर्ड गठित करके मेडिकल बोर्ड में आपकी सारी फाइल भेजते हैं, वो अपनी ओपिनियन देते हैं, उस आधार पे कोर्ट उसका आपको कंपनसेशन निर्धारित करता है।
4: तो आपने बताया कि 5 लाख तक का तो शुल्क कोई नहीं है और 50 लाख तक का आपके जिला में ही हो जाएगा। अगर कोई शुल्क नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ शायद मेरे ख्याल से जो रोल

0: डीजीसी भी होते हैं, हर उसमें डीजीसी सिविल भी होते हैं, डीसी क्रिमिनल भी होंगे, डीसी रेवेन्यू भी होंगे, डीजीसी कमिश्नर्स कोर्ट भी होंगे, और उनको असिस्ट करने के लिए एडीजीसी रखा जाता है, और तहसील स्तर पे पैनल लॉयर भी सरकार अपॉइंट करती है। तो सरकारी वकील जो होता है वो बेसिकली सरकार का नुमाइंदा है न्यायालय पर।
1: ओके, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा शख्स है जो बेयर नहीं कर सकता है शुल्क बिल्कुल भी, और उसको निःशुल्क न्यायालय जाना है और बिना किसी शुल्क के ही जो भी है उसको केस जीतना है, तो उस केस में क्या वो अप्रोच कर सकता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है सरकारी वकील मुहैया होने की?
0: कोई इंडिविजुअल व्यक्ति सरकारी वकील को नहीं इंगेज कर सकता है अदनान जी, चूंकि सरकारी वकील सरकार का नुमाइंदा है। यदि कोई शोषित गरीब व्यक्ति है जो किसी अधिवक्ता की फीस दे पाने में असक्षम है, उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट पे एमिकस क्यूरी एक बोर्ड होता है जिला जज के अधीन, वो एप्लीकेशन देगा जिला जज को कि साहब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मुझे एमिकस क्यूरी से काउंसिल अपॉइंट किया जाएगा। तो न्यायालय के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उसको विधिक सलाह के लिए एमिकस क्यूरी से काउंसिल अपॉइंट किया जाएगा, और उस अधिवक्ता की सरकार पेमेंट करेगी। तो एमिकस क्यूरी और सरकारी वकील दोनों अलग अलग चीज है।
2: जी, ये बात हमारे श्रोताओं को अच्छी जानकारी मिली कि सरकारी वकील अलग होता है, और सरकार से अगर आप शोषित वंचित आर्थिक रूप से विपन्न अगर हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, और वो डिस्ट्रिक्ट जज की ओर से एक वकील आपको विधिक सलाह देगा, उसकी फीस जो है वो सरकार दे देगी। तो यहाँ पर दो बातें अलग अलग हो गई। अभी हम लोग कंज्यूमर फोरम की बात कर रहे थे, और आपने बताया कि 5 लाख रुपए तक जीरो पेमेंट पे, जीरो फीस पर आप मुकदमा लड़ सकते हैं। कंज्यूमर फोरम की बात आई, इधर देखा गया है विभिन्न समाचार पत्रों में कि ये जो मॉल खुल गए हैं, मॉल में अगर मॉल से सामान खरीदिए और उसके बाद वो कहते हैं कि झोले का भी दाम चार्ज कर लेते हैं। हमने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि किसी मॉल से किसी ने सामान खरीदा था, उसने झोले का दाम चार्ज कर लिया था, और वो कंज्यूमर फोरम में चला गया, और कंज्यूमर फोरम ने उसके अगेंस्ट उस मॉल पे 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका। तो क्या ये राइट है कि कंज्यूमर झोला ले सकता है वहां पर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
0: जी उपवन जी, प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति घर से निकलता है, कुछ ना कुछ खरीदारी करता है, तो जिस भी व्यक्ति से हम खरीदारी कर रहे हैं उसको लाभांश प्रदान कर रहे हैं, उसके हम उपभोक्ता हुए, तो यदि उसके सेवाओं में कमी है, मूल्य में कोई कमी है, या सामान की क्वालिटी में कोई कमी है, तो हम उसके अगेंस्ट में कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। रही बात आपके प्रश्न की मॉल की, तो प्रोहिबिटेड है कि मॉल वाला व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के आपको कैरी बैग का पैसा चार्ज नहीं करेगा। इसके उसमें कई सुप्रीम कोर्ट से लेकर के नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन लेवल पे कई बार कई दुकानदार और मॉल वाले दंडित हो चुके हैं।
2: अनुज जी, आपने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट तक बात जा चुकी है। मुझे किसी मॉल वाले ने, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ही बात बता रहा हूँ, किसी मॉल वाले ने कहा कि यदि हम जो कैरी बैग दे रहे हैं उस पर अगर प्रिंट नहीं है, मतलब उस मॉल का, उस दुकान का नाम प्रिंट नहीं है, नाम नहीं प्रिंट है, तब वो कैरी बैग का दाम चार्ज कर सकता है। और अगर उस दुकान का या उस मॉल का अगर नाम प्रिंट है तो वो फ्री देगा। इस बारे में आपका क्या कथन है? आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत?
0: पार्शियली सहमत हूँ, पार्शियली असहमत हूँ, चूंकि यदि मैं सामान आपके प्रतिष्ठान से खरीद रहा हूँ तो आपका दायित्व तो है कि आप हमको उसको प्रॉपरली पैक करके कम से कम मेरे वाहन तक या रिक्शा तक आप उसको पहुंचाएंगे। उसके आगे की जिम्मेदारी मेरी, मैं आपके यहाँ से सामान लेता हूँ और उसको सब खुला पैकेट, चाहे राशन सामान हो, चाहे किसी भी प्रकार का सामान हो, कपड़ा हो, तो उसको पैक करने की सामान है, इसी मद में आप लाभांश कमाते हैं, और वो लाभांश में ही आप उसको हमको कम से कम पैक करके तो देंगे, ये व्यवस्था है।
2: जी, अब बात आती है, आपने भी एक चीज और बताई थी कि जो वकील होता

0: हैं जो अधिवक्ता होते हैं वो फैमिली कोर्ट में भी जाते हैं। ये फैमिली कोर्ट क्या होती है यहाँ और वहां पर किस तरह के वाद का निराकरण किया जाता है?
1: फैमिली कोर्ट में प्रायः मैट्रिमोनियल डिस्पोज होते हैं, डिसाइड होते हैं। यदि किसी पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद है तो उसके सेटलमेंट के लिए भी, यदि पत्नी पीड़ित है तो वो मेंटेनेंस के लिए भी जा सकती है, यदि नहीं बात बनी तो वो डाइवोर्स के लिए भी जा सकती है। तो उसको जटिलता को दूर करने के लिए सरकार ने एक अलग परिवार न्यायालय ही गठित कर दिया है प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट के नाम से। हर जिले में वहां एक कॉम्पिटेंट डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का अधिकारी बैठता है, उसके साथ दो और एडिशनल कोर्ट्स हैं, कुछ जगह दो तीन है जैसा जिस डिस्ट्रिक्ट में पेंडेंसी के अनुसार, तो दो तीन उसके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस भी बैठते हैं, वो फैमिली कोर्ट ही है।
0: जी अनुज जी, अभी बात चलन के दौरान आपने बताया था कि कोर्ट और रेवेन्यू की बात की थी, ये राजस्व में किस तरह के विवादों का निराकरण किया जाता है और उसमें एक अधिवक्ता की क्या जरूरत पड़ती है?
1: राजस्व के मुकदमे ज्यादातर लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट में अगर आपका कोई भी विवाद है तो सरकारी वकील तो सरकार का प्रतिनिधि हो गया। यदि आपकी गांव सभा की जमीन है, जमीन से संबंधित कोई विवाद है तो उसके लिए आपको रेवेन्यू कोर्ट पे परिवाद दाखिल करना पड़ेगा।
0: जी अब बात आती है कमिश्नर कोर्ट की। जैसा कि हम लोग को एक आम भाषा में विधि व्यवसाय से अलग हटके हम बात कर रहे हैं, आम भाषा में हम लोग ये जानते हैं कि जैसे मैं गोंडा जनपद का निवासी हूं तो गोंडा जनपद से संबंधित कार्यों के लिए सबसे बड़ा अधिकारी गोंडा का जिलाधिकारी होगा, उसके बाद जिलाधिकारी के बाद चार जनपदों को मिलाकर यहाँ पर एक कमिश्नरी बना दी गई और वहां पर कमिश्नर बैठा दिए गए, आयुक्त हो गए। तो आयुक्त के यहाँ जो कोर्ट है कमिश्नर कोर्ट, वहां पे कौन से वाद जाते हैं?
1: जो कमिश्नर कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ही अपीलेट अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिले का मालिक है, लेकिन दो जिले, तीन जिले, चार जिले मिलाकर एक कमिश्नरेट का गठन होता है और उसका मालिक होता है कमिश्नर। तो यदि जिला जज के किसी, जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश से आप नाइत्तेफाकी रखते हैं तो आप उसके लिए अपील के लिए कमिश्नर कोर्ट पे परिवाद अपना या अपील दाखिल कर सकते हैं।
0: जी इसी क्रम में हम एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि विभिन्न बैंकों में देखा गया है कि कुछ लायर्स बताते हैं कि हम उस बैंक के वकील हैं, तो उस बैंक के वकील का क्या तात्पर्य है, उनका बैंकों से क्या काम होता है?
1: देखिए प्रायः कोई भी बैंक को हजारों संख्या में उनके कस्टमर होते हैं, कुछ की जायज होती है और कुछ का मामला नेगोशिएशन से नहीं हल होता, उसके लिए कोर्ट जाते हैं। तो जो बैंक के काउंसिल है वो बैंक के प्रतिनिधि हैं कोर्ट पे, उनका फीस बैंक पे करती है, वो सरकारी वकील की श्रेणी में नहीं है, वो बैंक के अपने प्रतिनिधि हैं।
2: अनुज जी बैंक की बात हुई है और अक्सर मैंने देखा है कि सालाना कुछ पैसे कटते हैं, बहुत नॉमिनल रहता है, 12 रुपए 15 रुपए 20 रुपए, इस तरह से लोगों के खातों से कटते हैं, वो किस मद में कटते हैं और ये फिर कहाँ इसका फायदा मिलता है?
1: देखिए अदनान जी, खाते से पैसा रेगुलर कटता है, कुछ वाजिब होता है, कुछ गलत होता है। यदि गलत होता है तो आप उसके लिए कंज्यूमर फोरम में आ सकते हैं, बैंक को ये बताना होगा आपकी पासबुक एंट्री में कि जो भी डिडक्शन हुआ है आपके खाते से, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपए हो, किस मद में उन्होंने काटा है। 12 रुपए 330 रुपए एक सरकारी योजनाएं हैं इंश्योरेंस की, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुख्यमंत्री सड़क दुर्घटना बीमा योजना, उसके तहत भी है।
2: तो अनुज जी मान लीजिए जैसे कि मैंने तो कोई इस तरह की योजना का लाभ, मतलब मैंने ऐसा तो कोई योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो क्या ये योजना जो होती है ये आम पब्लिक के लिए होती है या जो लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं स्पेशली उनके लिए सभी के खाते से काटी जाती है? यानी मुझे इसका लाभ क्या जरूरी है मिलेगा या कुछ ही बेनिफिशरीज होते हैं उनके लिए मेरे भी खाते से काट लिए जाते हैं, क्या सिस्टम होता है?
1: जहां तक योजना की बात है, ये 12 रुपए और 330 रुपए सालाना कटता है, इसके लिए आपको कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। एक नॉमिनेशन फॉर्म बैंक से मिलता है, एप्लीकेशन है, प्रिंटेड है, उस पे आपको एक लाइन लिख के देना होता है कि मेरे खाते से इस चीज को लिंक कर दीजिए, आपके खाते से रेगुलर कटता रहेगा। उसके बाद यदि किसी परिवार में कोई घटना दुर्घटना होती है तो जिसको वो नॉमिनी करता है वो बेनिफिशियरी उस पैसे का अधिकारी होता है।
0: लेकिन अनुज जी, ये तो बात आज मैंने जानी, आप आए हैं और खैर इसीलिए यहाँ पर आमंत्रित भी किया जाता है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भी ये है कि हमारे श्रोता अधिक से अधिक गेस्ट से लाभान्वित हों। लेकिन मैं स्वयं ही इस बात को नहीं जानता था कि जो ये 12 रुपए और 330 रुपए कट जाते हैं ये किस मद में कटते हैं और इसका बेनिफिट हमें इन फ्यूचर कैसे मिलेगा। क्यों अदनान जी, आप मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं?
2: बिल्कुल, क्योंकि इस बात की जानकारी मुझे भी नहीं थी
0: जी।
2: और गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी योजना है जिसके तहत ये पैसों का जो डिडक्शन होता है वो किया जाता है। अच्छा, ये तो हो गई, आपने बताया कि कुछ बैंक्स जो होते हैं वो अपने लॉयर्स को हायर करते हैं। बैंक के खिलाफ अगर करना है तो कोई भी आम आदमी जो है वो प्राइवेट वकील ही हायर करेगा
1: जी?
2: ओके। लीगल एडवाइजरी में अगर बात रही, आप लीगल एडवाइजर हैं तो कुछ जाहिर सी बात है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज के आप लीगल एडवाइजर होंगे। बस थोड़ा सा ऐसे ही कुछ चुनिंदा शब्दों में आप बता दिए कि कंपनीज को किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो अभी आपने हमारी निगाह से बताया कि अगर हमें उपभोक्ता है, कंपनी के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं उपभोक्ताओं की तरफ से?
1: देखिए, जनरली चैलेंजिंग लोनिंग का आता है अदनान जी।
2: जी,
1: एक टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर इंडिविजुअल को व्हीकल के लिए किसान क्रेडिट कार्ड या और भी जिस सापेक्ष वो चाह रहा है लोन, उसको लोन दिया जाता है। जनरली 90% आप कहिए वो अपना लोन समय से अपना डिस्पोज ऑफ कर दें, लेकिन समाज हमसे ही आपसे मिलके बना है।
2: बिल्कुल।
1: तो उसका कुछ लोग अपना तोड़ निकालने लगते हैं, उसके लिए वो कंज्यूमर फोरम कानून का उपयोग भी है और कानून का दुरुपयोग भी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उस मद में आप बता रहे हैं कि फिर आप कंपनीज के लिए उस तरफ से खड़े होते हैं।
1: जी
2: बिल्कुल। सो इसी बीच हम बताएंगे अपने श्रोताओं को कि हमारे म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो चला है और आपसे मिलते हैं इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM। ये है कोंडा शहर की धड़कन।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
6: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
5: सच में, क्या खास है वहाँ?
6: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
5: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
6: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
5: और फोटोग्राफी वगैरह?
6: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
5: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
6: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
5: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
7: अरे सुना?
8: क्या?
7: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
7: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। और मौजूद है हमारे पीच आज स्पेशल गेस्ट के रूप में अनुज प्रकाश जी, जो कि पूर्व महामंत्री हैं सिविल बार एसोसिएशन गोंडा के। अनुज जी, अभी आपने बताया था कि किस तरह से आप कंपनीज के लिए लड़ते हैं या किस तरह से लॉयर्स का काम होता है कंपनीज को लेके। मैंने अक्सर बैंक की बात अभी हुई थी, देखा है कि बैंक में डेबिट कार्ड्स के भी कुछ चार्जेस करते हैं, तो क्या ये किसी मद में हमको बेनिफिट आने वाले टाइम में मिलता है?
1: जी अदनान जी, बहुत बढ़िया आपने पूछा प्रश्न। बहुत से योजनाएं ऐसी हैं जिसको आम व्यक्ति जानता ही नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि दुर्घटना बीमा योजना है, उसी प्रकार ये प्रत्येक एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड जिसको आप कहते हैं, ये 5,00,000 तक का इंश्योर्ड होता है अगेंस्ट एनी एक्सीडेंटल डेथ। उसके बाद उसके खाते में जो भी उसका नॉमिनी होगा वो बतौर बेनिफिशियरी उसको क्लेम कर सकता है।
0: मैं अगर सिंपली आपसे पूछूं, मान लीजिए कि कोई शख्स जा रहा है रास्ते में और एक्सीडेंट में उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो हो सकता है बहुत पैसे वाला ही हो या कोई भी हो सकता किसी भी फैमिली से, तो क्या कोई शर्त होती है कि उसके पास उस वक्त वो डेबिट कार्ड रहा हो या कोई और शर्त, या किसी को भी मिल सकता है? मैं अपने श्रोताओं के लिए पूछना चाहता हूं, इसको सिंपलीफाई करके।
1: हर व्यक्ति बेनिफिशियरी है, इसमें कोई एज का कोई बैरियर नहीं है अदनान जी, ना ही इनकम का कोई बैरियर है कि लखपति को नहीं मिलेगा और गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड के लिए ही वालों को ही मिलेगा। इसके लिए इसका पात्र हर व्यक्ति है, चाहे मैं आप हूं।
0: तो अनुज जी, इसको अपील कहां करना होगा, इसको इसका अप्रोच कैसे करना होगा?
1: यदि कोई व्यक्ति इस तरह का पीड़ित होता है तो उसके लिए बैंक में उसको आवेदन देना होता है कि मेरे परिवार का सचिन सच व्यक्ति आपके बैंक में खाता धारक था, उसका एटीएम नंबर ये था, उसकी इस तारीख को एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, और उसमें अप्लाई करना होगा। फिर बैंक उस पे प्रोसेस करके आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे FIR है, पोस्टमार्टम है, पंचनामा है, पहचान पत्र है, नौ डिटेल्स वगैरह लेगी, और उसके बाद फिर आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो उसके लिए फिर कंज्यूमर कोर्ट्स बनी हुई हैं, आदमी वहां पे जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है।
0: अनुज जी, अभी आपने जस्ट बताया कि इसके लिए आप सिंपली जाके बैंक में अप्रोच कर सकते हैं, लिखित आवेदन दे सकते हैं जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, एक्सीडेंट जो हुआ उसका पोस्टमार्टम, पंचनामा, जो भी FIR, सारी जो भी प्रोसेस होते हैं लीगल प्रोसेस। मुझे ये बताइए कि अभी कई सारे श्रोता सुन रहे हैं और शायद किसी के पहचान में या किसी की फैमिली में ऐसी घटना हुई हो, तो क्या इसकी कुछ तय समय सीमा है कि उतने ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको आपको अप्लाई करना होता है, या कुछ साल या कुछ महीने के बाद भी किया जा सकता है, कुछ अगर इसके बारे में आप बताएं?
1: जनरली 3 महीने के अंदर अदनान जी इसकी एप्लीकेशन फाइल की जाती है, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी एक विधि व्यवस्था आई है कि सिर्फ डिले के बिना पे किसी का भी क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता।
0: तो मैक्सिमम कितना मान के चले, कितना टाइम?
1: कंज्यूमर फोरम का लिमिटेशन 2 वर्ष का है।
0: 2 वर्ष का है, ओके
2: जी। अनुज जी, ये तो आपने विधि व्यवसाय की बात कर रहे थे, आपका जो परिचय हुआ था वो ये हुआ था कि आप पूर्व महामंत्री सिविल बार एसोसिएशन रहे हैं। ये सिविल बार एसोसिएशन होता क्या है, इसके बारे में पहले हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: देखिए, सिविल बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, गोंडा में 2 बार एसोसिएशन है रजिस्टर्ड। सिविल बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट में स्थापित है, बार एसोसिएशन क्या काम करता है? ब्रिज का काम करता है, न्यायालय या जुडिशियल अफसर्स और एक कॉमन अधिवक्ता को अगर अपना कोई ग्रीवांस है किसी भी कोर्ट से या बेंच से, तो वो अपना ग्रीवांस बार के माध्यम से न्यायालय तक पहुंचा सकता है। इसके लिए बार बनाई गई है।
2: जी, तो बार बनाई गई, एसोसिएशन बनाया गया, मतलब बार एसोसिएशन का निर्माण हुआ, गठन हुआ। अब इसमें आपने बताया कि आप पूर्व महामंत्री रहे हैं, तो इसमें महामंत्री या अध्यक्ष या इस तरह से कार्यकारिणी का क्या रोल है?
1: जी बहुत, देखिए कोई भी संस्था या संगठन चलाने के लिए उसमें कार्यकारिणी का होना बहुत आवश्यक है।
2: कार्यकारिणी या अगुआ, दो अलग अलग शब्द हैं।
1: जी, कार्यकारिणी और अगुआ दोनों अलग भी हैं और एक ही है। पहले कार्यकारिणी होगी तब अगुआ होगा। देखिए संगठन को चलाने के लिए कार्यकारिणी होती है और कार्यकारिणी में ही एक परिवार की तरीके से है कि फादर हैं, मदर हैं, बड़े भाई हैं, तो उसी तरीके से इसमें जनरल एक इलेक्शन होता है हर वर्ष, तो जिसको जनरल सदस्य अध्यक्ष रूप में, फिर उपाध्यक्ष हो गया, कनिष्ठ उपाध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, ट्रेजरर हो गया, संस्था में नियुक्त करते हैं। उनका कार्यकाल एक वर्ष का रहता है, एक वर्ष वो बार और बेंच और साधारण अधिवक्ताओं के बीच में ब्रिज का काम करते हैं।
0: आपने इलेक्शन की बात की, तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट लॉयर्स ही करते होंगे?
1: जी,
0: तो रजिस्टर्ड लॉयर्स होते हैं ये?
1: जी।
0: ओके, तो आपने बताया जो महामंत्री का टेन्योर है, क्या यही एक वर्ष का है या जितने भी कार्यकारिणी में सारे सदस्य होते हैं सभी का एक वर्ष का होता है?
1: देखिए अदना जी, पूरी कार्यकारिणी का टेन्योर एक वर्ष का होता है। रिपीटिशन अब हमारे मॉडल बायलॉज है, हमारी पेरेंटल जो बॉडी है
0: जी,
1: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उसके नियमों तले हम बंधे हैं, तो किसी भी कार्यकारिणी का कार्यकाल 365 दिन का होगा।
0: ओके
2: जी, अभी आपने एक शब्द यूज किया बार काउंसिल, बार काउंसिल का टेन्योर कितने दिन का होता है?
1: देखिए बार काउंसिल का चुनाव हर 5 वर्ष पे होता है, 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं, उनका 5 वर्ष का होता है। बार काउंसिल हमारी पेरेंटल बॉडी है। जब हम लॉ की डिग्री लेते हैं तो अधिवक्ता हम तब तक नहीं होंगे जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए हमको बार काउंसिल में आवेदन करना होगा, हमारे सारे प्रपत्र देख के बार काउंसिल हमको रजिस्ट्रेशन प्रदान करेगी, एक रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर हमको देगी, वो हमारा पहचान पत्र हो जाता है ताउम्र, जब तक हम विधि व्यवसाय करते हैं वो एनरोलमेंट नंबर, जस्ट लाइक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हमारा एनरोलमेंट नंबर होता है, वो जीवन भर हमारे साथ चलता है।
2: अनुज जी, जब हमारे अदनान जी ने शुरुआती दौर में आपका परिचय पूछा था, तो आपने उसी बात चलन के दौरान बताया था कि आपको विधि व्यवसाय जो है वरासत में मिला, आपके छोटे दादा, आपके पिताजी सभी विधि व्यवसाय में संलग्न थे। मैं अपने को यहाँ पाता हूँ कि अगर आपको वरासत में मिला तो आपको वरासत में उनके क्लाइंट्स भी मिल गए होंगे। अगर क्लाइंट्स मिल गए तो यानी कि आपका विधि व्यवसाय आपका व्यक्तिगत रूप से फल फूल बढ़ रहा होगा। ईश्वर से कामना भी है कि आपका ये व्यवसाय बहुत अच्छा चले, लेकिन इसके बीच में ये बात आती है कि जब आपका व्यवसाय इतना अच्छा चल रहा है विधि व्यवसाय, तो आपके मन में ये कैसे भावना आ गई कि चुनाव लड़ा जाए और चुनाव बार एसोसिएशन में जाया जाए?
1: देखिए उपवन जी, मैंने आपको बताया कि विधि व्यवसाय मुझे वरासत में मिला, ये नहीं कहा कि मुझे क्लाइंट्स वरासत में मिले, क्योंकि पिताजी सी रेवेन्यू थे तो उनका मोड ऑफ वर्किंग अलग था और मेरा लाइन ऑफ प्रैक्टिस अलग है बिल्कुल, तो वो फादर थे, उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने किया, लेकिन अपना विधि व्यवसाय मैंने खुद मेहनत करके उनके आशीर्वाद से ही मैंने संपादित किया।
2: जी, ये तो मैंने अंदाज से कहा था कि क्लाइंट्स मिल गए होंगे, ये मेरे शुभकामनाएं आपके साथ भी है कि आपका भी व्यवसाय फले फूले और बढ़े। मेरे क्वेश्चन पे आइए कि आपके मन में ये कैसे आ गया कि विधि व्यवसाय में संलग्न रहते हुए भी इसी के अंतर्गत आप चुनाव लड़े, महामंत्री बने, ऐसा मन में क्यों आया?
1: देखिए मन में आया, थोड़ा कुछ मित्रों ने प्रोत्साहित किया, कुछ वरिष्ठ हमारे साथी लोग थे सीनियर्स, उन्होंने भी कहा कुछ हो सकता हमने आपको बताया कि मैं कुछ अत्यधिक शरीफ भी रहा हूँ शुरू में, हो सकता उन्होंने हमारे
2: उस शराफत को देखते हुए जी कि मतलब इसे कह सकते हैं अपनी भाषा में, हम अपनी भाषा में कि नेतागिरी का चस्का लग गया था आपको
1: जी।
2: अच्छा ठीक है,
0: लेकिन ये इसके पीछे वजह अनुज जी कई बार समाज सेवा की भी होती है, समाज सेवा की तरफ आपका कितना रुझान है?
1: देखिए अदनान जी, मैं वृद्धाश्रम गोंडा से भी जुड़ा हुआ हूँ, पूर्व में मैं यूथ हॉस्टल एसोसिएशन से भी जुड़ा था, मैं अनाथालय गोंडा में भी जुड़ा हुआ हूँ और कई संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ जितना संभव होता है वहाँ अपना योगदान यथासंभव प्रदान करता हूँ।
2: अनुज जी, अभी आपने YHA की बात की, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की। YHA जिस समय गोंडा में आया था उस समय बहुत अच्छा कार्य संपादित कर रहा था, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस समय YHA का की बॉडी ही यहाँ गोंडा में नहीं रह गई है। अगर रह गई हो तो हमें अवगत कराएं। और क्या ये यूपी से भी बाइंड अप हो गया है क्या?
1: नहीं, ऐसा नहीं है उपवन जी। हाँ, ये सही है कि गोंडा में समय इसकी इकाई नहीं है कोई, विगत 8-10 सालों से तो नहीं है, लेकिन यूपी में कार्यरत है, अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी काम कर रहे हैं यूथ हॉस्टल सक्सेसफुली।
2: क्योंकि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के कुछ मेंबर पद यात्रा के रूप में यहाँ से वैष्णो देवी तक गए थे, मुझे याद है भास्कर दादा थे उसमें, शायद रवि प्रकाश पांडे जी थे, धनंजय सिंह थे, 4-5 लोग थे जो YHA के बैनर तले संभवतः वैष्णो देवी की पदयात्रा भी उन्होंने की थी। लेकिन अब बात आती है आपके समाज सेवा से जुड़े होने के कारण, गोंडा का सबसे पुराना क्लब है अंजुमन क्लब, मुझे विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आप वहां के भी पदाधिकारी रहे हैं, तो अंजुमन क्लब के बारे में बताएं और आप उस समय वहां पर कौन सी पोस्ट होल्ड किए हुए हैं?
1: देखिए अंजुमन क्लब करीब 125 साल पुराना क्लब है, गांधी पार्क के बगल में। सौभाग्य रहा उसमें पिताजी भी हमारे मेंबर थे, बाद में मैं भी उनके साथ जाने लगा, मैं भी मेंबर हो गया, 2 टर्म सेक्रेटरी भी रहा, फिर कुछ व्यस्तताओं के चलते 1-2 साल छोड़ दिया, फिर अब की कुछ वरिष्ठों ने उस पे ट्रेजरर पद हमको दे दिया, तो अपनी सीमित क्षमताओं के तहत जो भी सेवा मैं कर पा रहा हूँ उसके लिए मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ।
0: अनुज जी, ये किस टाइप का क्लब है, इसमें किस तरह के काम होते हैं?
1: देखिए सोशल एक्टिविटीज होती है अदनान जी, क्लब है जैसे क्लब है नाम से ही है जी। तो वहाँ गेट टुगेदर होता है, मिलना मिलाना होता है, चूंकि आज समाज में सबसे बड़ी जो चीज है वो मोबाइल की वजह से दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, कनेक्टिविटी बढ़ गई है लेकिन व्यक्तिगत दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, तो क्लब में थोड़ा उठना बैठना होता है, सामाजिक है क्लब, इसी बहाने कुछ अदबो लिहाज का भी हो जाता है, वरना मोबाइल पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बाय बाय हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कह दी।
2: अनुज जी, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे पास इसी कार्यक्रम में एक गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने बताया कि अंजुमन क्लब में वो बैडमिंटन खेलने जाया करते थे, तो क्या अंजुमन क्लब में बैडमिंटन कोर्ट भी बना हुआ है? क्योंकि गोंडा में बैडमिंटन कोर्ट बहुत सीमित है, तो यहाँ के यंगस्टर्स को प्रैक्टिस करने के लिए कोर्ट की आवश्यकता होती है, तो हमारे यंगस्टर्स आपसे ये जानना चाहते हैं हमारे थ्रू कि क्या वो ओपन फॉर ऑल है या उसकी कोई शुल्क देना पड़ेगा?
1: देखिए अदनान जी, अंजुमन क्लब में बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, यदि आपको

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91 25 70 75 93 और 96 96 76 40 06। कपड़ा

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वही श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

इतना प्यारा सा गाना और इतना पुराना सा गाना सुनने के बाद आपको ये तो डाउट हुआ होगा कि आरजे मीना ने आज ये गाना सुनाया जो यूजुअली मतलब अक्सर नहीं प्ले करती हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आपके शो गोंडा मैसेज मसाला में, आरजे मीना वाला में। आज की शाम रंगीन है और मौसम तो बदलता ही रहेगा ऐसे ही, और आप लाइव सुन रहे हैं मुझे आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 एफएम पर, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन। तो धड़कनों का काम है चलते ही जाना चलते ही जाना, पर आज की शाम कुछ खास है क्योंकि आज की शाम में जादू है और ये जादू सपनों से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे जादू होते हैं जो सिर्फ सपनों में दिखते हैं रियल लाइफ में नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं आज है अंतर्राष्ट्रीय परी दिवस यानी कि इंटरनेशनल फेरी डे, और हर इंसान ने कभी ना कभी परी शब्द का प्रयोग तो अपनी लाइफ में किया ही होगा, परियों की कहानियों में चाहे किसी का भी। तो आज वो दिन है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, मैंने सोचा कि परी जैसी चीज़ क्या होगा, बट हाँ इस दिन के बारे में आप सोच रहे होंगे ना कि क्या यार असल ज़िंदगी में भी परियाँ होती हैं। तो मैं आपको बताऊं सच में हमारी ज़िंदगी में परियां होती हैं। वैसे परियों का असली मायना क्या है, परियां मतलब परियों की एग्जिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे दिमाग में एक वंडरिंग इमेज होती है, वंडरिंग इमेज जो हमें एक अलग सी दुनिया में ले जाती है, भले वो मिथ्या हो या उसकी कोई वास्तविकता ना हो, पर वो हमें ये ज़रूर बताती है कि ये खास है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि ये दिन खास इसलिए है क्योंकि ये हमें रियलिटी से थोड़ा दूर ले जाता है। एक अनूठा दिवस है जो कल्पना और रचनात्मकता को मतलब सपोर्ट करता है। मेरे हिसाब से ये दिवस जो है हम सभी के लिए खास होना चाहिए, क्योंकि वी ऑल नो दैट इस दिन के पीछे का जो उद्देश्य होगा वो यही होगा कि लोगों को कैसे खुश किया जाए या कैसे इस दिन से लोगों की जो सपने हैं अधूरे सपने उनको रिलेट किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग के लिए परी क्या है, एक वो काल्पनिक मतलब एक आइडेंटिटी जिसके बारे में जान के मन करता है कि यार क्या है यार वाओ। तो सबसे पहले तो आपको परी दिवस की यानी कि इंटरनेशनल फेरी डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आपकी ज़िंदगी में भी कोई परी आई हो, और हमारे इंडिया में तो परियों की कहानियां बहुत सुनाई जाती हैं और परी को बहुत ख़ास माना जाता है, क्योंकि और अक्सर देखिए हर किसी के घर में किसी ना किसी बच्चे का नाम परी रख दिया जाता है। और हर साल ये दिन 24 जून को मनाया जाता है, और ये बेसिकली हमारे जो पौराणिक जीवों की मनमोहक दुनिया है उसको जश्न मनाने के लिए हमें परियों की कहानियाँ सुनाना जो शुरू किया गया बचपन में उसको सपोर्ट करने के लिए, उनके जादू का उपयोग बच्चों के मूल्यवान शिक्षा देने के लिए है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी परियों की जो हमें बहुत सारे मॉरल सपोर्ट देती थी। हम कितने भी स्ट्रेस में हो परी की कहानी सुनने के बाद हमारे दिल को सुकून मिल जाता था। एंड आप बताइए क्या आपकी ज़िंदगी में भी किसी ने आपको परियों की कहानी सुनाई है, या फिर आप सिर्फ क्या कहते हैं ना स्पाइडर मैन की दुनिया से निकल के आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो ये जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तो मैंने बहुत सारी परियों की कहानियाँ सुनी हैं और सुनाई भी हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और परी वाला गाना सुना देती हूँ मैं आपको जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और आई होप ये थोड़ा अलग टाइप का गाना है लेकिन आप सुन के बताइए कैसा है।

वैसे मैं आपको बता दूं कि आज अंताक्षरी डे भी है, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक परी की कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि आज का दिन बनाने या मनाने के पीछे का जो स्पेशल उद्देश्य वो यही है कि आज आपको परियों की कहानियाँ सुननी चाहिए, उपन्यास पढ़ने चाहिए, एक इमेजिनरी फेरी गार्डन बनाना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए, कुकीज़ बांटनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये तो परी ने भेजी है, जिससे खुशियाँ ही खुशियाँ और एक काल्पनिक दुनिया फिर से बन जाए। इमेजिनेशन जो होती है ना, मैं भी ये गाना आपको सुनाऊंगी, लेकिन आपको पहले मैं इमेजिनेशन का महत्व बताऊं। इमेजिनेशन जो है वो साइंटिफिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ब्रेन को एक्टिव रखती है, हमारे दिमाग में जो कहते हैं ना सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है। हम नई नई चीज़ें सोच पाते हैं, कहानियाँ लिख पाते हैं, हम साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कर पाते हैं, हमारे अंदर जो खुद की सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, बजाय चैट जीपीटी के, जेमिनी के और भी जितने AI टूल्स हैं उनकी दुनिया से हट के हम परियों की दुनिया को सपोर्ट करें तो आई थिंक हमारी लाइफ थोड़ी और बेहतरीन हो सकती है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना विशाल की आवाज़ में, और इसके बाद मैं आपको एक प्यारी सी परियों वाली कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग की प्रेजेंस मुझे चैट रूम में दिखनी चाहिए, हैंड्स अप आपके हो जाने चाहिए, हैंड्स अप मेरे मतलब कि ये कि आप दिख जाएं, आप अपनी प्रेजेंस लगा दें, अटेंडेंस लगा दें, फिर ही कहानी शुरू होगी, नहीं तो कहानी शुरू करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो कहानी सुननी है तो फटाफट से लाइव हो जाइए, फिर आपके साथ हम शुरू करते हैं आज परियों की कहानियाँ, वो फेमस कहानियाँ जिनको सुन के हमारा बचपन बीता है।

फेरी डे है, यानी कि जिसके लिए आप सभी हमेशा से परेशान रहे हैं। आपके मन में हमेशा ये रहता है मेरी ज़िंदगी में कोई परी आ जाए, परियों की कहानियाँ सुनना, या कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे आया जैसे किसी परी ने जादू किया और वो चला गया। तो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए वो ख़ास हो जाता है। तो फ़िलहाल के लिए आप सभी के लिए मैं यही कहूँगी कि आप कहानी सुनने के लिए तैयार है तो फटाफट से मुझे चैटरूम में मैसेज कर दीजिए, तो इसी के बाद कहानी भी शुरू कर देती हूँ। वैसे कहानी तो मैं खुद ही शुरू करने जा रही हूँ, आप लोग मैसेज करें या ना करें, फ़िलहाल परियों की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत समय पहले की बात है कि एक शांत और सुंदर गांव में माया नाम की एक छोटी बच्ची अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। फ़िलहाल ये कहानी सबलू सावंत जी ने, जो कि मुंबई में रहते हैं और अभी सांता क्रूज मुंबई में रह रहे हैं, ये पहले बोरीवली में रह रहे थे मुझे ऐसा लग रहा है। तो फ़िलहाल इनकी कहानी पढ़ने का समय है, तो मैं आप लोग के लिए पढ़ती हूँ। बहुत प्यारी सी कहानी है, चलिए सुनते हैं, मज़ा आएगा। क्योंकि आज परी दिवस है तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा जादू का खेल पीछे छूट जाए जिसमें हम सभी पार्टिसिपेट करना चाहते हों। तो बहुत समय पहले की बात है, एक शांत सुंदर गांव में माया नाम की एक छोटी बीमार बच्ची रहा करती थी। क्या बात है। और जब ऐसे आप लोग स्टोरीज लिखते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए कहानी फोकस करते हैं। उसके पास न ज़्यादा धन था। एक रात माया की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई और कहानी की जब बात करती हूँ मैं, तो सबसे पहले तो एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। तो आपको फिर मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, आज परी दिवस है, तो परी दिवस में हम सभी आज एक कहानी सुनने जा रहे हैं, जो सबसे पहली कहानी सबलू जी की है। तो ध्यान से फिर से सुनिए कि बहुत समय पहले की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में माया नाम की एक छोटी बच्ची अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और एक रात माया की माँ की जो है तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है। दवा लाने के लिए उसके पास पैसों की सख्त ज़रूरत होती है और परेशान होकर माया गांव के पास स्थित एक जादुई झील के किनारे बैठकर रोने लगती है। वैसे उसे आइडिया नहीं होगा कि वो झील जादुई है। रोते रोते कि उसकी आंख लग गई, तभी झील का पानी चमकने लगा और उसमें रोशनी की तरह एक किरण निकली। रोशनी के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर जादुई परी प्रकट हुई। उसके सुंदर पंख थे और हाथों में एक टिमटिमाती हुई, मतलब एक छड़ी थी, जो मतलब एक परी होने का एक कह सकते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक है, परी के हाथ में छड़ी हो ये बहुत ज़रूरी है। तो परी ने माया से पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? माया ने रोते हुए अपनी माँ की बीमारी और पैसों की तंगी के बारे में उसे बताया। परी मुस्कुराई और उसने अपनी जादुई छड़ी खूब ज़ोर से घुमाई। छड़ी को घूमते ही हवा में चमकते हुए सोने के सिक्के और एक सुंदर मोती का हार प्रकट हुआ। परी ने माया को वो चीज़ें देते हुए कहा, ये लो बेटी, इसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाओ, लेकिन याद रखना सच्ची दौलत सिर्फ धन नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना है। माया ने खुशी खुशी उन चीज़ों को लिया और अपनी माँ का इलाज करवाया। उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। इसके बाद माया और उसकी माँ ने भी ज़रूरतमंदों की, मतलब जैसे जो भी ज़रूरतमंद होता है उसकी मदद करना शुरू कर दिया। जादुई परी ने माया को ये बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था, सबसे बड़ा जादू दया और परोपकार होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप परोपकार करना जान गए हैं, अगर आपको पता है कि दूसरों की मदद करनी है, तो ये समझ लीजिए आपके लिए मदद करने के लिए कोई पीछे खड़ा ज़रूर मिलेगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो। थैंक यू सो मच सबलू जी, आपकी कहानी बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है और आज परी दिवस को साकार किया आपने इस प्यारी सी परी कथा सुना के, बहुत मज़ा आया। परी कथा वही होती है जिसमें जादू हो और लास्ट में एक बड़ा सा सबक हो जो हमें ये रियलाइज़ दिलाए, ये रियलाइज़ करा दे कि मतलब परियाँ होती हैं और वो परियाँ हम सभी के अंदर होती हैं। हम किसी की भी ज़रूरत पूरी कर दें, एम उसको जब बहुत ज़्यादा नीड हो तो हम उसके लिए परी बन जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, सड़क पे खड़ा कोई इंसान जिसकी ट्रेन छूटने वाली है और उसको स्टेशन पहुंचने के लिए किसी एक इंसान की ज़रूरत है और आप उस समय मसीहा बन के उसको ट्रेन के पास पहुंचा दें इमीडिएटली, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए परी बन जाएंगे। तो एक ऐसा जादूगर हम सभी के अंदर है जो किसी के लिए भी परी बन के उसकी मदद कर सकता है। तो एक और गाना सुन लेते हैं जिसको सुन के मज़ा आएगा और मुझे लगता है कि ये गाना मेरा फेवरेट है।

मैं परियों का गाना सुनना पसंद करती हूँ, तो मुझे ये गाना हमेशा से मतलब मेरी हिट लिस्ट में रहा है। तो ये गाना सबलू जी के लिए पहले प्ले करूँगी, क्योंकि इन्होंने एक प्यारी सी परी कथा सुनाई है। तो सबलू जी, ये गाना स्पेशली आपके लिए।

यही होता है परियों का जादू, चांद के बिना भी रोशनी पूरी। फिलहाल मैं आपको बता दूं अंताक्षरी कुछ ही देर में शुरू होगी, लेकिन उसके पहले लड़के और लड़कियों का यस और प्रेजेंस मुझे चैट रूम में दिखना चाहिए। फिलहाल तो सबलू जी हमारे साथ है, बाकियों का इंतजार है, और चलिए गाना सुनते हैं।

तो चलिए मेरी वाली परी कथा को थोड़ा सा आयाम देते हैं। एक प्यारी सी कहानी है जिसको सुन के आपको मज़ा आएगा। बहुत पुरानी कहानी है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, तो आज मैंने सोचा आप लोग को भी सुना देती हूँ। परी दिवस है तो काल्पनिक जो हमारी शक्ति है उसको, इमेजिनेशन को थोड़ा सा पावर बूस्ट करते हैं और सोचते हैं कि एक परियों का शहर हो। जब भी हम लोग के बचपन में दादा दादी या कोई भी परियों की कहानियाँ या कोई भी ऐसी जादू वाली कहानी सुनाते थे तो हमारे आसपास एक दुनिया बन जाती थी और उस रात सपने में हम उसी दुनिया में बैठे दिखाई देते थे। अब तो वो सपने ही नहीं बुने जाते, ना कोई कहानी सुनाता है और ना किसी को उस बचपन की याद ही है। फिलहाल ये कहानी शुरू करती हूँ मैं, ठीक है। कहानी में आपको एक बर्फ की लड़की मिलेगी जो कहानी का मतलब मेन करेक्टर होगी। चलिए सुनते हैं। उस समय आधी रात हो रही थी, पूरे चांद की चांदी जैसी किरणें सारी धरती पर पड़ रही थी, ठीक है। आधी रात का समय था, चांद की चांदनी बिखर रही थी और काफ़ी मासूम सा, बहुत प्यारा सा, और मतलब ऐसा समय था जिसको देख के मतलब चांद की चांदनी हो, फुल चांदनी हो। और उसके बाद मैं अगर कहूँ कि एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे पेड़ पौधे हों, पूरा नेचर वाला टच हो, तो क्या बात होगी उसकी, ना एकदम सुपर वाली फीलिंग आएगी। तो सुपर वाली फीलिंग को मैं आपको और बढ़िया फीलिंग दिलाती हूँ, ध्यान से सुनिए। तो अचानक सारा आसमान उन चिड़ियों से भर गया जो गर्म जगहों से वापस लौट कर आई थी। मतलब ये अभी ठंडी का समय था जहाँ ये लोग आई हैं, और ये वहाँ से आई थी जहाँ पे गर्मी होती थी। मैं बेसिकली उन चिड़ियों के बारे में बात कर रही हूँ जो ठंड आते या गर्मी आते कहीं चली जाती हैं। वहाँ बसंत सारी धरती पर अपनी पूरी शान से आ गई थी और वहाँ हंस और सारस भी दिखाई देने लगे थे। उनमें से एक चिड़िया फर से पेड़ों से घिरे हुए एक खुले मैदान में उतरते हुए बोली, उफ़ यहाँ कितनी ठंड है, ठंड ने तो यहाँ सब शाखाओं को कितनी सख्त बना दिया है। घास के मैदान में घास नहीं है, पेड़ सब चुपचाप नंगे और जमे पड़े हैं, और पेड़ों पर ठंडे तनों पर उनके गोंद जमे हुए लटके हुए हैं। क्या मौसम चल रहा है यार। वे कुछ देर के लिए वहां रुकी और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोली, अपने ऊपर तो साफ आसमान है, चांद तारों को देखा तो वे कितने प्यार से चमक रहे हैं, इस धरती को देखो तो कितनी सख्ती से चमक रही है, जैसे हीरे का कोई हार हो। हीरे का हार चमकता है लेकिन सख्त बहुत होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कहानी की, कि जब वे सब कह रही थी तो उसके पास ये जो सब चिड़िया थी वो ठंड और शर्म से कांप रही थी। मतलब ठंड भी लग रही थी और शर्म भी उन लोग को आ रही थी कि भाई क्या करें, हम लोग यहाँ आके फंस गए हैं। वह चिड़िया फिर बोली, मैं ही तुम्हारे इन सब दुखों को की जड़ हूँ। 16 साल पहले मैं ही लाल नाक वाले पाले से प्यार कर बैठी थी, तभी से वह मेरे ऊपर राज कर रहा है। क्योंकि हमारी एक बेटी है इसीलिए मैंने उसके खिलाफ भी नहीं जा सकती। मतलब जो बर्फ़ है, बर्फ़ की बात करके वो चिड़िया कह रही है कि मुझे ये जो पाला है इससे बहुत प्यार हो गया था और हम दोनों की एक बेटी है इसलिए मैं मतलब उसके खिलाफ नहीं जा सकती। वह उसको बहुत ही गहरे जंगल में अपने बर्फ़ के महल में रखता है, मतलब उस बेटी को। उसी की वजह से मैं उससे झगड़ने में भी डरती हूँ कि ऐसा ना हो कि उसकी बेटी को कोई नुकसान पहुँचाए। इसी वजह से हम लोग बहुत दुख में हैं। उफ़ ये बेरहम ठंड और ये जाता हुआ वसंत का ये मौसम। सुंदर वसंत अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। अपनी बेटी के बारे में सोचते ही वह लंबी सांसें भरती है। तभी वह बड़ा सा लाल नाक वाला पाला जंगल से बाहर आता है। वह सुंदर वसंत की खुशी से बोला, हेलो सुंदर वसंत। सुंदर वसंत बोली, हेलो मिस्टर पाले, हमारी बर्फ बेटी कैसी है? पाला बोला कि वह बिल्कुल ठीक है, मैं उसको अपने बर्फ के महल में साथ ही रखता हूँ। अब तो वह बड़ी भी हो गई है और अब उसको किसी आया की ज़रूरत नहीं है। सुंदर वसंत ने उसे कुछ नाराज़ होते हुए कहा, ओ बूढ़े, तुम किसी लड़की के दिल के बारे में कुछ नहीं जानते। वह अब 16 साल की है, तुमको अब उसे जहाँ उसे जाना है उसे जाने देना चाहिए। बूढ़ा पाला बोला, और सूरज उसको देख ले तो उसका क्या दिल आदमियों से प्यार करने के लिए पिघल नहीं जाएगा? फिर यूरिलो सूरज देव उसको अपने कब्जे में कर लेंगे।
इतना सुनते ही मतलब वसंत भी थोड़ा परेशान हो गई कि हाँ उसकी बेटी तो बर्फ़ की है, जैसे सूरज के सामने आएगी तो उसको भी प्यार होगा, उसका दिल पिघल जाएगा। इस तरह दोनों माता पिता रात भर जंगल में बैठे बैठे बेटी की किस्मत का फैसला करते रहे और उसके बारे में क्या करना चाहिए, और फिर आखिरी नतीजे पे पहुँचे। लाल लाख वाला पाला बोला, मुझे मालूम है कि एक जवान लड़की को ठीक से देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि तुम्हारे पास तो उसको देखने भालने का समय ही नहीं है, इसलिए हम उसको एक अच्छे दिल वाले किसान की देखभाल में छोड़ देते हैं, बहुत ही नम्र हो और वो अपना उसका कोई अपना बच्चा ना हो। वहाँ बर्फ की लड़की को पास रोज के करने के लिए काफ़ी काम होगा, वो सपने देखना छोड़ देगी, इसके अलावा वह किसी आदमी से मतलब निगाह ही नहीं मिला पाएगी, मतलब किसान के घर छोड़ देते हैं, वहाँ बैठ के वो काम करेगी, उसका दिमाग किसी के बारे में चलेगा ही नहीं, इसलिए उसका दिल भी नहीं पिघलेगा। तो कहानी बढ़िया अलग सी है। अच्छा आगे सुनिए। अगली सुबह एक बूढ़ा और उसकी पत्नी जंगल में अपनी अंगीठी में जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। उस वक्त क्योंकि वसंत की छुट्टी थी तो वह बूढ़ा बहुत खुश था और बड़े उत्साह में था। वह गाना गाता चल रहा था और पैर भी जमीन से सीधे नहीं पड़ रहे थे, पर उसकी पत्नी बहुत खुश थी। गांव में आते ही बच्चों की आवाज़ सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने अपने घर को शांत रूप में रखा हुआ था, मतलब बच्चों को कभी देखा ही नहीं तो उसको क्या आदत थी। वह बूढ़े पत्नी को बोला कि यार खुश रहा करो, मतलब बच्चे जो हैं वो अच्छे होते हैं और इतना दुखी मत हो। बुढ़िया उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा होकर बोली और चिल्लाई, तुमको शर्म नहीं आती? अगर हमको ऐसे बच्चे वाले खेल खेलने होते तो हम कैसे रहेंगे? बूढ़े ने उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए नीचे पड़ी बर्फ की लकड़ी जो थी बर्फ इकट्ठा करना शुरू किया, और इससे पहले कि बर्फ़ का गोला बनाया उसकी बाहें टांगें ये सब लगाई और फिर उसको कंधे पर रख के लेके चल पड़ा। जैसे ही वह बन चुका था एक अजीब सी बात हुई। बूढ़े पति पत्नी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। वह बर्फ़ की बनी लकड़ी की होठ तो लाल हो गए थे, उसकी आंखें खुल गई थीं। उसने प्यार से उस बूढ़े जोड़े को देखा और मुस्कुराई। उसने अपने शरीर से बर्फ़ की झाड़ी और उस बर्फ़ के ढेर को बाहर निकाला और एक जीती जागती लड़की बन गई। अब ये वही लड़की थी जो बर्फ़ वाली थी, क्योंकि इसे जंगल में उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। दोनों पति पत्नी उस जिंदा लड़की को देखकर बहुत चक्के रह गए। बूढ़े को लगा कि वह जो पी कर आया था उसी का नशा चढ़ा हुआ है। उसकी पत्नी भी उस लड़की को घूरे जा रही थी। आखिर बूढ़ा बोला, प्यारी बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मेरा नाम बर्फ़ की लड़की है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसको अपने घर ले गए। जब वह लड़की उनके साथ जा रही थी तो उसने मुड़कर देखा उसके पिताजी और उसकी माताजी उसे जंगल से विदा कर रहे थे। पर क्या वह केवल जंगल के पेड़ों की पत्तियों के हिलाने की आवाज़ थी या फिर सचमुच उसके माता पिता उसे विदा कर रहे थे? अब जो भी था वो तो था जो उसे महसूस हो रहा था। उनको ऐसा लगा जैसे पेड़ों को उसको झुककर मतलब उसने जो कहते हैं ना विदाई दी हो। समय गुजरता गया, बर्फ़ की लड़की उनके घर रहने लगी, दिन प्रतिदिन उनके घर का काम करती और मतलब सारी चीज़ें उसके हिसाब से हो रही थी। उनके जो माता पिता थे, आर्टिफिशियल माता पिता थे, वो लोग भी काफ़ी इसको प्यार करने लगे थे। लेकिन एक बार की बात है कि वो गांव में एक बार बाहर खेल रही थी तभी बहुत सारी चिड़ियाँ उसके पास आईं और उससे बातें करने लगी कि तुम बर्फ़ की लड़की हो ना, बर्फ़ की लड़की हो ना, हाँ तुम बजारा बच के रहना, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। इतना बोल के वो लोग चली गई। फिर फाइनली वो जो बर्फ़ की लड़की थी वो घर का काम करी थी, तभी उसने देखा कि एक इंसान उसके घर भिक्षा मांगने आया है। वो उसको सामान देती है तो उसकी आंखें उससे मिल जाती हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे वो उसके बारे में सोचने लगती है और जैसे जैसे वो सोचना शुरू करती है उसके अंदर मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसका दिल पिघलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो कमज़ोर होती जाती है। और एक रात जब वो सोई अगले दिन सुबह उठी ही नहीं। फिर दोनों बूढ़ा बूढ़ी उसको बहुत ढूंढने लगे और वहीं जंगल में जाके फिर रोने लगे। फिर फाइनली जो क्या कहते हैं वसंत थी और वो क्या कहते हैं पाला था, दोनों प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वो हमारी ही बेटी थी और हमने ये सोच के तुम्हें दिया था कि तुम हमारी बेटी की रक्षा करोगे। हमारी बेटी जो थी वो एक तरह से परी थी, बर्फ़ की बेटी थी वो, और हमें हमारे पास रहती तो वो उसका मतलब दिल कभी भी पिघल सकता था सूरज के कॉन्टैक्ट में आने से, इसलिए हमने तुम्हें दे दिया था। पर तुम्हारे साथ भी वो देखो एक लड़के से मिल गई और उसका दिल पिघल गया एंड फाइनली उसकी मतलब वो जान चली गई। अब हम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगे, और ऐसा कह के वो लोग चले गए। और फाइनली चारों के चारों उसी बर्फ़ की बेटी के लिए
बहुत ज़्यादा दुखी रहे। तो ये थी एक परी कथा जो मैंने आप लोग को सुनाई। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं? शुभ संध्या, क्या हाल है? और अंताक्षरी शुरू करने का समय हो गया, लेकिन लड़कियों की टीम से मुझे कोई दिख नहीं रहा है। तो जैसा कि लड़कियों की टीम से मुझे कोई दिखेगा तभी अंताक्षरी शुरू होगी। और चलिए मैं आपको एक और प्यारा सा गाना सुनाती हूँ, जिसको सुन के आज आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि परी तो परी ही है, लेकिन हमारे आजकल के ज़माने में परी किसी और को भी हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इस गाने को सुनने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और आपने भी बचपन में अगर परी कथा सुनी है तो यस टाइप करें।

0: फिलहाल यहाँ पे कवि का अभिप्राय कुछ और है, यानी कि कवि परी से नहीं, ये किसी मधु की, कहते हैं ना, मधुशाला की किसी पेय से तुलना कर रहा है परी की। फिलहाल कवि के अभिप्राय से हमें कोई मतलब नहीं, कवि क्या अभिप्राय कर रहा है, हमने तो गाना सुना, एंजॉय किया। और अभी मैं हमारे अगले कॉलर से बात करना चाहती हूँ, देखते हैं लड़कियों की टीम से कोई है या नहीं, अदरवाइज लड़कियों की टीम को हम पहले ही हारा हुआ मान लेंगे, लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है लड़कियों की आवाज़ है। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अनु से बात हो रही है?
1: यस।
0: तो अनु, जैसा कि अंताक्षरी शुरू करने का समय भी हो चुका है, काफी टाइम बीत चुका है, और नहीं तो हमारे लिसनर्स को टाइम नहीं मिलेगा, तो टीम ए से यानी कि लड़कियों की टीम से आप आ चुकी हैं। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबसे पहले आ गई हैं। तो बिना समय बर्बाद किए मैं आपको वर्ड देना चाहूंगी, शुरुआत हम शब्द से ही करेंगे, तो जो भी लड़कों की टीम से कॉल करेगा उसे शब्द मिलेगा। अभी पहले लड़कियों ने कॉल किया तो सबसे पहले लड़कियों को शब्द मैं देती हूँ। शब्द है परी, जैसा कि आज परी दिवस है तो मैं आपको सबसे पहला शब्द भी परी दूंगी। तो
1: परी,
0: हाँ, मतलब कहते हैं ना कि केबीसी में पहले क्वेश्चन 5000 वाले आसान आसान होते हैं इसीलिए सबसे पहला शब्द आसान, परी।
1: अरे कौन सी लाइन है ना, वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई तुझे पसंद ना आए, कि छोरी कोई पसंद ना आए।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही आपने गाना गाया, और इसी के साथ आपकी टीम को मिल जाते हैं 20 points। थैंक यू अनु। तो अब लड़कियों की टीम से लड़कियों का खाता तो खुल चुका है, बारी है लड़कों की टीम की, तो फटाफट से आप लोग कॉल करिए, वर्ड मैं ऑन एयर दूंगी, आपको सोचने समझने का समय ऑन एयर ही मिलेगा। फिलहाल एक कॉल आ रहा है, चलिए देखते हैं किसी लड़की का या लड़के का। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आपका शुभ नाम?
2: मेरा नाम राकेश है और मैं बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओ राकेश जी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? क्या बात है,
2: बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और जैसा कि अंताक्षरी शुरू हो गई है तो मैं आपको एक शब्द देना चाहती हूँ, आपको उससे गाना गाना होगा।
2: ओके ओके ओके, कोई नहीं।
0: शब्द है दिल।
2: दिल,
0: बहुत ही आसान।
2: ओके, बिल्कुल ओके। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, इस चेहरे ने बहुत, ओ इस चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। जी,
0: क्या बात है राकेश जी, और इसी के साथ आपकी टीम को पॉइंट्स मिल जाते हैं, आगे बने रहिएगा, आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। तो लड़कों की टीम से राकेश जी ने गाना सुना दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है, दोनों ही टीमों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है। अब बारी है लड़कियों की, चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है अंताक्षरी में हम लोग 3 राउंड लेते हैं, फर्स्ट राउंड इस बार वर्ड कैच हुआ है, वर्ड कैच नहीं, वर्ड गिविंग, क्योंकि मैं ही शब्द दे रही हूँ तो कैच करने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि आप वर्ड कैच में यूजुअली क्या करते हैं, आपकी एक टीम गाना गाती है और दूसरी टीम उसी गाए हुए गाने से कोई शब्द लेके गाना गाती है। फिलहाल के लिए मैं वर्ड दे रही हूँ तो इसीलिए वर्ड कैच तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ मज़ेदार है जो भी है। चलिए सुनते हैं अगली आवाज़ किसकी। हेलो,
3: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
3: अविनाश।
0: अविनाश जी, फिलहाल तो लड़कियों की बारी थी, लेकिन चलिए आपने कॉल किया है तो मैं आपको शब्द दे देती हूँ, जो भी पहले कॉल करेगा उसी को मैं शब्द दे दूंगी। तो अगला जो शब्द है, थैंक यू कॉल करने के लिए, अंताक्षरी शुरू हो चुकी है तो आपके लिए शब्द है चांद।
3: चांद, ठीक है। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जानम, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जानम। बस ये गाना तो इतना ही खैर आता है
0: क्या बात है, लेकिन जितना भी आता है बहुत ही खूबसूरत गाया आपने, और आगे बने रहिएगा हमारे साथ और इंतजार रहेगा, ठीक है अविनाश?
3: ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे कितने बार कॉल कर सकते हैं?
0: हाँ, मल्टीपल टाइम्स आपकी टीम को, मतलब ये है कि आपका कॉल रिसीव हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं एट अ टाइम, तो थैंक यू सो मच, आप कॉल करते रहिए। तो अविनाश जी ने अपने मतलब कॉल से आपकी टीम को फिर पॉइंट दिला दिया। देखिए लड़कियां अगर पीछे रहेंगी तो भाई नंबर भी आपके कट जाएंगे, तो पहले कॉल करेंगे तभी आपको पहले पॉइंट्स मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि चाहे लड़कियों की टीम हो चाहे लड़कियों की टीम हो, 5-5 बार मौका मिलेगा, तो 2 बार लड़कों को ऑलरेडी मौका मिल चुका है वर्ड से गाने का। तो अभी देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: गुड इवनिंग सविता जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। कौन सा शब्द?
0: शब्द आपके लिए है मुस्कान। आप मुस्कुराती बहुत है ना, मुझे आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है। मुस्कान।
1: मुस्कान
0: जी।
1: मुस्कान और कुछ दूसरा शब्द नहीं हो सकता है?
0: नहीं, मुस्कान से ही गाना गाना पड़ेगा जो ऑन द स्पॉट मिलेगा। आप सोच सकती हैं, आपको टाइम दे रही हूँ मैं सोचने का, आराम से सोचिए। मुस्कान से तो बहुत सारे गाने हैं, एक जो अक्सर प्ले होता है हमारी प्लेलिस्ट में, याद करिए, पुराना सा गाना है, मुझे तो याद
1: है। तेरी हर मुस्कान पे ना जाने कैसा जादू है।
0: मैं जी नहीं सकता होके जुदा तुझसे तेरी कसम। और मुस्कान फिल्म का ये गाना है, की राहों में तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया न जाने
1: क्यों प्यार हो गया।
0: फिलहाल मैं आपको पॉइंट पूरे दे दे रही हूँ क्योंकि आपने लाइन गा दी है मुस्कान वाली, अदरवाइज मैं आपको पॉइंट ना देती क्योंकि गाना आधा मैंने गाया है। थैंक यू सो मच सविता, कंटिन्यू। तो फिलहाल लड़कियों की टीम से सविता जी का भी कॉल आ गया और बैक टू बैक देखिए कॉल आ रहे हैं। अभी देखते हैं किसका कॉल है, ऑन एयर करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: फिर लड़कियों का कॉल। तो चलिए जैसा कि पहले लड़कों ने कॉल किया और पॉइंट ले लिया और लड़कों का
1: अभी ना अविनाश भैया बाजी मार लेंगे, तो मैंने सोचा अविनाश भैया क्या मुझसे आगे निकल जाए, मैं आऊंगी। और एक शिकायत भी अविनाश भैया से, भी वो सुन रहे हैं मुझे, दो संडे को क्यों नहीं आते हैं? सुबह संडे को इंतजार रहता है 10 से 11।
0: संडे इज फंडे, इसीलिए। तो चलिए अनु आपको देती हूँ शब्द। शब्द है आपके लिए, थोड़ा खतरनाक देना पड़ेगा लग रहा है।
1: अरे नहीं मैम, खतरनाक मत देना, थोड़ी सी दया कर देना।
0: कांटा।
1: क्या?
0: कांटा।
1: कांटा लगे न कंक, मैं तो गाना उसको याद ही नहीं।
0: गाना पड़ेगा नहीं तो नंबर कटेगा।
1: जैसे तू शंकर, कांटा लगे न कंक, ये प्याला तेरे नाम का पी लिया।
0: वाह क्या बात है, ऐसे आधे आधे गाने आप लोग गाइए। थैंक यू सो मच। तो अनु से हम लोगों ने बात कर दी है और इसी के साथ अगले कॉलर को भी मौका मिलने वाला है। 3 बार लड़कियां गा चुकी हैं, 3 बार लड़के गा चुके हैं और फाइनली फिर से लड़कों की बारी है मुझे लग रहा है। आवाज सुनते फिर बताते हैं। हेलो
4: हेलो नमस्कार,
0: अगेन हमारे साथ अविनाश जी हैं। कैसे हैं अविनाश जी?
4: जी बहुत बढ़िया है। पहले तो मैं अनु पांडे जी को बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस चैनल से जोड़ा है, तो उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म से मिलवाया मुझे। और संडे को मैं बिल्कुल आऊंगा क्योंकि पिछले संडे को नहीं आया था, इससे पहले वाला संडे को मैं बिल्कुल जुड़ा था वहाँ पर,
0: लेकिन पिछले दो संडे था। जी जी। तो चलिए अविनाश जी मैं अगला शब्द आपको देती हूँ बिना किसी देरी के। अगला शब्द है कागज।
4: अच्छा कागज, ठीक है। कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करो। ए दिल क्या, ए दिल क्या, तू जान भी मांगे तो दे दो, दे दो, पहला काम करो। कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करो।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, अंदाज बहुत अच्छा है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। तो अविनाश जी ने फिर अपनी टीम को सपोर्ट कर दिया। बाकी लड़के लड़कियां कहाँ चले गए हैं, मतलब बहुत कम दिख रहे हैं, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? तो चलिए अगली आवाज़ सुनते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
5: हेलो, अमित बोल रहा हूँ मैं।
0: ओ अमित कैसे हैं, फाइनली बैक टू शो, बैक टू शो, मतलब आपकी आवाज़ सुने मुझे कुछ दिन हो गए। पिछले वेंसडे तो अंताक्षरी ही नहीं हुई तो इसलिए आवाज़ भी नहीं सुनने को मिली आपकी। तो अमित आपको मैं शब्द दूँ?
5: जी जी जी
0: पक्का?
2: हाँ मैम अब आए हैं तो
0: दिलबर
2: क्या
0: दिलबर
2: होश ना खबर है ये कैसा असर है तुझसे मिलने के बाद दिलबर दिलबर दिलबर
0: क्या बात है क्या बात है थैंक यू सो मच बने रहिए तो चलिए अगले कॉल को भी मौका देखते हैं किसकी आवाज है हेलो
6: हेलो हेलो मैम गुड इवनिंग मैम
0: गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग आपका शुभ नाम
6: मैम पूनम बात कर रही हूँ कानपुर से
0: पूनम कानपुर से ओके वेरी गुड इवनिंग कैसी हैं पूनम आप
6: मैम बहुत अच्छी हूँ और अंताक्षरी कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी और अभी कार्यक्रम सुन रही थी बहुत अच्छा लग रहा है
0: फिलहाल जुड़ना ही नहीं है गाना भी है अपनी टीम को सपोर्ट करना है तो मैं आपको वर्ड दूँ
6: बिल्कुल दीजिए
0: पहला जो मतलब शब्द है वो है सैया
6: ओके सैया
0: शब्द आना चाहिए आपके गाने में शुरू में मुखड़े में अंतरे में कहीं भी आप लाइन आप जो गाए उसमें आना चाहिए दैट्स इट
6: अच्छा जी ओके चलिए गा देते हैं ऐसा शब्द पहले ही मिल गया जी चलिए गाती हूँ सैया

0: ओके सो स्वीट पूनम, आप बहुत अच्छा गा रही हैं और बहुत एनर्जी के साथ गा रही हैं. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.
0: अपकमिंग कॉल्स के लिए इंतजार रहेगा. थैंक यू. तो चलिए, पूनम की आवाज़ हमने सुनी कानपुर से. यार आज बहुत दूर दूर से आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं. एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि हर जगह से एनर्जीज आ रही हैं, एनर्जीज आ रही हैं, एनर्जीज आ रही हैं. तो चलिए अगला कॉल देखते हैं किसका है. और हेलो हेलो
2: स्वागत है. हेलो,
0: वापस से अविनाश जी का स्वागत है भाई. अविनाश जी अपनी टीम को फुल सपोर्ट कर रहे हैं आज. क्या बात.
2: और मैं स्वागत करना चाहता हूँ पूनम जी का, क्योंकि उन्होंने भी पहली बार इस कार्यक्रम में कानपुर से जुड़ गई हैं, तो उनको भी मैं स्वागत करता हूँ.
0: क्या बात है. तो चलिए मैं आपको अगला जो शब्द देने वाली हूँ, आप तैयार हैं?
2: जी कोशिश करते हैं, देखते हैं.
0: सपना.
2: सपना
0: जी.
2: मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, माने ना माने ये हुई मेरी अपनों में. दिल मुश्किल है, मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में. जी
0: क्या बात है. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा गाना आपने सिलेक्ट किया. मैंने तो बहुत ऐसे रेगुलर वाले गाने सोचे थे, लेकिन आपने बहुत चूज करके मतलब एक ऐसा गाना सुनाया जो सबकी प्लेलिस्ट से मुझे लगता है ऑलमोस्ट गायब ही हो गया होगा. थैंक यू सो मच अविनाश. थैंक यू. तो भाई अविनाश जी ने गाना सुना दिया है और मतलब मज़ा आ रहा है मुझे यार. मतलब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. एंड ये लास्ट लड़कियों का कॉल होगा, अगर लड़कियों का ही कॉल आता है तो बहुत अच्छी बात है. तो आवाज़ सुनते हैं किसकी. हेलो
3: हेलो.
0: ओके वापस से हमारे साथ अनु है. और अनु
3: जी मैम, मैं एक बात बता दूं, आज ना आज मेरा ही ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे और हम ही लोग खेल रहे हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ.
0: तो चलिए एक दूसरे के खिलाफत ऐसे बना के रखिए और मैं आपको अगला शब्द दे देती हूँ. और अगला शब्द जो है वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है. आप रेडी हैं? चलिए खतरनाक नहीं देती हूँ, थोड़ा आसान ही देती हूँ. माही.
3: माही माही मैनु छल्ला पवा दा, माही माही मैनु छल्ला पवा दा.
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने सिलेक्ट किया अनु. थैंक यू सो मच. और
3: नहीं, एक गाना मैं और भी सुना दूं.
0: माही से.
3: दिल दिल रोए आई राही तू आजा मेरे माही, मेरे माही मेरे माही तू आजा मेरे माही. तुझने कुछ ऐसी दिखाता सा जिसके खातिर हूँ मैं प्यासा, आ मेरी प्यास बुझा जा. दिल रोए आई राही तू आजा मेरे माही, मेरे माही मेरे माही.
0: क्या बात है. और थैंक यू सो मच. आपने दो गाने सुने लेकिन पॉइंट एक ही का मिलेगा आपको. थैंक यू. ओके ओके, मतलब पॉइंट्स मिल जाने चाहिए, पूरे मिलने चाहिए, चाहे चार पांच गाने हम मिला के सुना दें. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो अनु ने अपना मतलब जो टीम है उसको पूरा सपोर्ट कर दिया. और मैं आप लोग को बता दूं कि 100-100 पॉइंट्स दोनों ही टीमों के हो चुके हैं. टीमें यानी कि लड़कियों की टीम के 100 पॉइंट्स हैं, टीम बी के भी 100 पॉइंट्स हैं. और ये राउंड यहीं पर ख़त्म होता है. और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेके मैं नेक्स्ट राउंड शुरू करना चाहूँगी. हमारे साथ मुस्तफ़ा जी हैं. कैसे मुस्तफा? वेरी गुड इवनिंग. एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग सविता शास्त्री जी, आपका भी स्वागत है. और आप भी बहुत बेहतरीन गाती हैं, तो आपकी आवाज़ सुनने का इंतजार रहेगा और आगे भी बात करते रहेंगे आप लोगों से. तो चलिए एक प्यारा सा गाना, मतलब प्यारा गाना कि कई सारे गानों का एक मिक्सअप सुनते हैं, जिसको सुनने के बाद हम सभी की पुरानी यादें एकदम तरोताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके गानों की जो वोकैबुलरी है वो बढ़ जाए. तो इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं थोड़ी ही देर में, और इन गानों को एंजॉय करके आप लोग फिर से आ जाइए दूसरे राउंड के लिए, जिस राउंड में आपको म्यूजिक गेस करना होगा. यानी कि मैं आपको एक म्यूजिक सुनाऊंगी और जिसकी टीम सबसे पहले गेस करेगी उसकी टीम को सबसे पहले पॉइंट्स मिल जाएंगे. और उस राउंड में आपको एक बार गाना गाने का पूरे 50 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 50 पॉइंट्स मिलेंगे. तो आप लोग डिसाइड करिए कि आपको अपनी टीम को जिताना है या हराना है. फिलहाल मैं आप लोग का इंतज़ार करती रहूँगी आगे भी, और तब तक के लिए आप लोग अपना हाल चाल सब कुछ एकदम जमा रखिए, क्योंकि अगर आपने अपना जो कहते हैं ना हाल चाल जमा नहीं रखा तो आगे दिक्कत हो जाएगी. तो चलिए सुनते हैं बहुत सारे गाने एक ही बीच के साथ, और मुझे आपको लगता है कि मज़ा आ जाएगा इन गानों को सुनने के बाद. लेट्स एंजॉय 70s और 80s के गाने एक साथ सुनते हैं और हमारे जो गानों की जो कहते हैं ना कि कैपेसिटी उसको बढ़ाते हैं. तो अगले राउंड के लिए तैयार रहिएगा. म्यूज़िक एंड गेस्ट राउंड।

सबलू जी आपको कैश प्राइज नहीं, लेकिन हाँ आपका फेलिसिटेशन मैं यहाँ पे जरूर कर सकती हूँ। आपका सम्मान और आपको यहाँ पे जो उपहार दिए जा सकते हैं वो जरूर दूंगी। फिलहाल मेरे लिए आपके इतनी दूर तक उपहार देने का काम यही है कि आपकी पसंद का गाना सुना सकूँ। तो फिलहाल आपकी टीम जीतेगी, तो आपकी टीम की एक प्लेलिस्ट मैं चाहूंगी कि आप लोगों में से कोई मुझे भेज दें और एक दिन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग की बजेगी विद योर नेम। तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट इस बार के लिए रहेगा। अच्छा, इन गानों को सुन के लग रहा है ना कि कैसे लगता है कोई जैकपॉट मिल गया हो, इतने सारे अच्छे अच्छे गाने एक साथ ना।

सो लिसनर्स, अभी आप लोग कॉल मत करें क्योंकि इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद ही मैं शुरू करूंगी। तब तक के लिए आप लोग भी पानी वानी पी के थोड़ा रेस्ट कर लें क्योंकि आगे आपको कंटिन्यूअसली दो राउंड एक साथ खेलने हैं। तो ये ब्रेक आपको इसलिए दिया जा रहा है जिससे आप अपना गला एकदम साफ कर लें। लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिकल ब्रेक। कुछ सुरीला सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ज्ञान सिटी 9.6 FM सुन रहे हैं। आज बीना वाला शो आपके साथ लाइव है। गोंडा मैसेज मसाला

हमारा बिल्कुल। ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने सारे ही लिसनर्स को। एंड लिसनर्स, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी म्यूज़िकल ब्रेक चल रहा है, उस ब्रेक के दौरान आपका कॉल नहीं लिया जा सकता। और अब आप लोग धैर्य से सुनेंगे नहीं तो ये बताइए कि आप अगला म्यूज़िक कैसे सुनेंगे। तो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ अंताक्षरी, जहाँ पर अभी तक लड़के और लड़कियों के पॉइंट्स जो हैं सामान्य हैं, 100-100 पे दोनों ही आराम से बैठे हुए हैं। अब बारी है म्यूज़िक गेस करने की, बारी मतलब आपको म्यूज़िक गेस करना है और अपनी टीम को बाकायदा बड़े सारे पॉइंट्स दिलाने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं म्यूज़िक गेस कराने के लिए म्यूज़िक प्ले कर रही हूँ। आप लोग सब लोग अपने रेडियो का जो वॉल्यूम है बढ़ा दीजिए, कान खोल लीजिए, कान खड़े कर लीजिए, एकदम अलर्ट मोड में आ जाइए, आसपास जितना भी साउंड है वो बंद कर दीजिए और सबसे पहला म्यूज़िक सुनने के लिए आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि पहला म्यूज़िक जो होने वाला है वो आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है। तो चलिए एंजॉय करिए और गेस करिए ये म्यूज़िक।

0: आई होप आप लोगों ने म्यूजिक सुन लिया होगा। देखिए पहला कॉल आ गया, चलिए सुनते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, राकेश जी बोल रहे हैं।
1: जी जी जी,
0: आपने म्यूजिक सुन लिया?
1: म्यूजिक
0: जी हाँ, म्यूजिक सुन के गाना गेस करना था, तो अगर आपने नहीं सुना है तो फिर आप गाना नहीं गेस कर पाएंगे। चलिए मैं अगले कॉलर को मौका देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आगे म्यूजिक प्ले होगा उसी को आपको गेस करना होगा, ठीक है? तो चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं, चलिए आवाज़ सुनते हैं किसकी। हेलो हेलो हेलो हेलो, चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम? हेलो
1: अरमान। अरमान
0: अरमान, वेरी गुड इवनिंग अरमान, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: पटेल नगर मलियाना।
0: ओके, पटेल नगर से। तो आपने म्यूजिक सुन लिया, कौन सा गाना है, गेस कर सकते हैं आप?
1: म्यूजिक तो हमने नहीं सुना है, तो ये अंताक्षरी वाला का होगा जो।
0: तो फिलहाल अंताक्षरी तो चल रही है और आपने कॉल किया इसलिए आपको मौका दिया गया, एक म्यूजिक प्ले हुआ था जिसमें आप
1: जो एक बार में बहुत सारे गाने गाने
0: रहे। हाँ, बस इसके बाद वाला राउंड है जिसमें एक बार में बहुत सारे गाने गाने होते हैं, तो ये राउंड खत्म हो जाएगा इसके बाद 7:30 से वो राउंड शुरू। हाँ, इसके बाद शुरू हो जाएगा वो राउंड, आप बिल्कुल लाइव रहिए।
1: ये कह रहे थे म्यूजिक समझ में नहीं आया, दोबारा प्ले कर दीजिए।
0: हाँ, मैं देखती हूँ कोई गेस करता है तो, नहीं तो मैं म्यूजिक एक बार फिर प्ले करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे लिसनर्स एक साथ कॉल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है किसी ने गेस भी कर लिया है। अगले कॉल को मौका देते हैं। हेलो
2: हेलो मैम।
0: हेलो, गुड इवनिंग,
2: गीता श्रीवास्तव बोल रहे हैं।
0: मतलब ईद का चांद वापस चमकना शुरू कर रहा है लग रहा है। तो फिलहाल गीता जी स्वागत है, और आप बताइए आपने गाना गेस कर लिया है कि नहीं?
2: जी मैम, वो है शायद मंजिलें अपनी जगह, रास्ते अपनी जगह।
0: वेरी वेरी गुड, और आपने बिल्कुल सही गेस किया है, कांग्रेचुलेशंस।
2: थैंक यू मैम।
0: मुझे लगा था, मुझे लगा कि कोई गेस ही नहीं कर पाएगा, लेकिन फाइनली
2: मुझे लगा कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने कहा कॉल करके कहते मैम कह देंगी गलत है तभी गलत मानेंगे।
0: ये बिल्कुल सही है, मंजिलें अपनी जगह, बिल्कुल सही गेस, बिल्कुल सही गेस किया आपने। वाव, मतलब आते ही तुरंत, मतलब बैट लिया हाथ में और तुरंत छक्का जड़ दिया, क्या बात है,
2: छक्का मार दिया बैमो सूरपंछी को देख के।
0: हाँ, लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल लड़कियों की टीम से गेस कर लिया गया, और मैं अब आप लोग को बोलूं, ध्यान से कॉल मत करिए, पहले ध्यान से सुनिए फिर कॉल करिए, ठीक है? तो इसी से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगला म्यूजिक सुनिए, और ऐसा नहीं, जब ध्यान से रेडियो भी सुनते रहिए, जब किसी ने कॉल कर दिया, गेस कर दिया, तो फिर भी कॉल करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दूसरे टीम को पॉइंट मिल चुके हैं। तो अगला गाना गेस करने के लिए मेरी दोनों ही टीम मतलब बिल्कुल रेडी है मुझे लग रहा है, और इस बार जो गाना है वो पुराना नहीं होगा, आपको पहले बता दे रही हूँ, इस बार का गाना जो है वो नया होगा। तो इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो गाना है ये नया है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिए।

0: आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा गाना, और कॉल इसीलिए आ रहा है। आवाज सुनते हैं किसकी। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग।
0: वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
1: मैम मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवर दीवानों के शहर राय बरेली से।
0: हाँ, राय बरेली से। क्या नाम है आपका? शिल्पी।
1: पिंकी। पिंकी,
0: पिंकी। ओके पिंकी, आपने म्यूजिक सुना?
1: नहीं मैम, म्यूजिक तो नहीं सुना, क्योंकि कॉल लगाने में व्यस्त थे।
0: नहीं तो म्यूजिक नहीं सुनेंगी तो अपनी टीम को जिता नहीं पाएंगी, क्योंकि इस बार वर्ड राउंड खत्म हो चुका है। म्यूजिक सुन के गेस करना है और फिर गाना गाना है, और इसके बाद वाला राउंड जो है वो 1 मिनट राउंड होगा, जिसमें मैक्सिमम गाने गाने होंगे। तो आप ध्यान से पिंकी सुनती रहिए, नहीं तो आप अपनी टीम को जिता नहीं पाएंगी, क्योंकि म्यूजिक प्ले हो रहा है, आपको सुनना है और बताना है कि गाना कौन सा है। ठीक है, तो पिंकी ध्यान से सुनने जा रही हैं। फिलहाल आप लोग बताइए, आप में से किसी ने ध्यान से सुना कि नहीं सुना? मुझे तो लगा कि बड़ा आसान सा था, लेकिन आप लोग लग नहीं रहा है। आप लोग मतलब मेरी बेइज्जती करा देंगे आज, लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे थोड़ा सा ना दिल मेरा भारी हो रहा है। इतना प्यारा सा गाना मैंने आप लोग के लिए सिलेक्ट किया गेस्ट करने के लिए, तो आई होप एक बार मैं फिर प्ले कर देती हूँ। सुनिए आप लोग ध्यान से सुनिए।

0: चलिए देखते हैं, किसी का कॉल आ गया, लग रहा है कोई गेस कर चुका है। हेलो
1: हेलो मैम, एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ अंताक्षरी कार्यक्रम में।
0: जी आपका नाम?
1: जी मैम मैं पूनम बोल रही हूँ।
0: ओके पूनम जी, वापस आप हमारे साथ हैं। कौन सा गाना आपने गेस किया?
1: मैम मैंने गेस किया है सोचो के झीलों का शहर हो, यही गीत है ना?
0: डेफिनेटली, मतलब लड़कियां आज लग रहा है कि आज कोई जन्म गुट्टी वगैरह पी के आई और आज लग रहा है जीत के ही जाएंगी। एंड फाइनली अगेन ये गाना गेस किया है लड़कियों की टीम से पूनम जी ने, जो हमें कानपुर से सुन रही है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन पूनम, आपने बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट गाना, मुझे ये लग रहा था क्योंकि इसके जो मुखड़े की लाइन है वो बहुत थोड़ी सी प्ले हुई थी, बस उसके अंतरे की लाइन का जो म्यूजिक है वही चल रहा था। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी के साथ आपकी टीम के 200 पॉइंट्स हो जाते हैं और लड़के अभी 100 पे अटके हुए हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: फिलहाल अपने जीतने से ज्यादा लड़कों के कम पॉइंट्स होने की खुशी मालूम पड़ रही है। फिलहाल चलिए लड़कों

0: तो चलिए देखिए कॉल आ चुका है, देखते हैं किस टीम का कॉल है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: अविनाश जी थोड़ा सा रेडियो के वॉल्यूम को कम कर दें, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है।
1: जी अभी अभी सही है।
0: हाँ कौन सा गाना है, गेस कर लिया आपने?
1: जी जी ये है पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गेस किया आपने। और मुझे मतलब उम्मीद थी कि लड़कों की टीम इस गाने को जरूर गेस करेगी।
1: नहीं पहले दोनों का ना मैं गेस करता, लेकिन मैं इतनी लाइन बिजी था कि मैं फोन पे आ ही नहीं पाया।
0: क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया गेस किया, थैंक यू सो मच। तो भाई अविनाश जी ने अपने लड़कों को मतलब अपनी टीम को बहुत बढ़िया सपोर्ट किया है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे मौका आता है ना तो लड़के एकदम से अपने दिलों की धड़कनों को जैसे बढ़ा लेते हैं कि भाई अब तो जीतना है। तो चलिए अगले म्यूज़िक को गेस करिए, बहुत ही प्यारा सा अगला म्यूज़िक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। और चलिए थोड़ा ख़तरनाक वाला लेते हैं, नहीं खतरनाक नहीं, चलिए आसान लेते हैं, देखते हैं कौन गेस करता है। ध्यान से सुनिए म्यूज़िक, प्लीज़ कॉल करने पे फोकस मत करिए, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए कॉल के साथ साथ किसका कॉल आ रहा है और म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो कौन सा म्यूज़िक प्ले हो रहा है। बहुत अलर्ट रहने की भी आपको ज़रूरत है।

0: काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक आप लोगों ने वैसे सुन लिया है, अब देखते कौन गेस कर पाया या नहीं कर पाया। अगले कॉल का इंतज़ार आप लोग के साथ फिर से शुरू हो गया। हेलो हेलो, कभी कभी तो नेटवर्क भी आप लोग का मुझे लगता है साथ ही नहीं देना चाहता है। तो चलिए अगले कॉल को मौका देते हैं, कौन सा कॉल है। हेलो
1: हेलो जी मैं पूनम बोल रही हूँ।
0: ओ पूनम बहुत अलर्ट है हमारे साथ। पूनम ये कौन सा गाना है?
1: जी मैम गाना है तीर जरा फिल्म का तेरे लिए हम जिए।
0: मुझे गाने की लिरिक्स थोड़ा सा बताइए आप।
1: तेरे लिए हम ये गाना है ना, लता मंगेशकर जी ने गाया है।
0: यस क्या बात है, थैंक यू सो मच पूनम, बहुत अलर्ट है आप और मजा आ गया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो चलिए लड़कियों की टीम ने फिर से, अब लड़कियां तीन गाने गेस कर चुकी हैं और लड़के अभी सिर्फ एक गाना गेस कर पाए हैं। बहुत स्लो चल रहे हैं लड़के, लेकिन चलिए स्लो एंड स्टडी विन द रेस ऐसा नहीं है आजकल, वो जमाने हवा हुए जब धीरे धीरे चल के हम जो कहते हैं ना कि वो जीत लेते थे, रेस जीत लेते थे कछुआ, मतलब अब जमाने गए कछुआ कितना भी चले लेकिन आजकल खरगोश जो है ना नींद ना आने वाली दवा खा के तब दौड़ता है। तो चलिए सुनते हैं हम प्यारा सा ये म्यूज़िक, आई होप आप लोग इसको गैस कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि इसको गैस करने वाला इंसान काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होगा, और इंटेलिजेंट होना भी चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स जब बात गेस करने की होती है तो आप लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, बहुत बढ़िया गेस करते हैं। तो लेट्स एंजॉय, अगला म्यूज़िक सुनते हैं।

0: तो चलिए अगली आवाज़ हम लोग सुनते हैं, देखते हैं किसकी है। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: हेलो
0: अगली हमारे साथ अविनाश जी हैं। अविनाश जी कौन सा गाना है?
1: जी जी मैं आपको मेरे यहाँ पर अभी बज रहा है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि तो मोबाइल पे सुन रहा हूँ, थोड़ा लेट पहुँच रहा है मेरे यहाँ पर।
0: हाँ ये बात सही, एप्लीकेशन अच्छा, पे थोड़ा सा।
1: जी जी जी
0: आई होप आपने गेस कर लिया होगा।
1: जी जी ये म्यूजिक तो रुकिए, थोड़ा मुझे पीछे करना पड़ेगा क्योंकि
2: हेलो
1: ये बहुत आसान सा म्यूजिक है मेरे लिए, क्योंकि

0: जी कौन सा गाना
1: है? रेडियो की आवाज़ थोड़ी कम कर दें क्योंकि आपकी आवाज़ है।
2: जी एक बार फिर से प्ले कर पाएंगी क्योंकि ये म्यूजिक जब तक मैं फोन लगाता था तब तक चली गई मैं यहाँ से।
1: चलिए मैं आपके लिए फिर से प्ले करती हूँ।
2: जी जी कर दीजिए।

0: आई होप अविनाश जी आपने सुन लिया होगा।
1: जी अभी तो मेरा मोबाइल पे आया ही नहीं ना, मैं ये देखिए अभी चल रहा है मेरी
0: बात। ओके आप सुनिए आराम से। देखिए ये भी एक अलर्टनेस है, लोग मतलब ये मतलब हम लोग क्या करिए, टेक्नोलॉजी ही ऐसी है कि जो भी चीज़ है वो थोड़ा लेट जाती है एप्लीकेशन पे। अगर आप फ्रीक्वेंसी पे सुनेंगे डायरेक्ट तो आपको तुरंत, जैसे मैं बोल रही हूँ, तुरंत आपको मिल जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा जो एप्लीकेशन वाले वो पीछे रह जाते हैं। तो चलिए हम मौका फिर से देते हैं अविनाश जी। अविनाश जी आपने गेस कर लिया?
1: जी जी बिल्कुल। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी।
0: क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा गेस किया है। इसी के साथ आपकी टीम
1: के मेरे लिए मोबाइल पे सुनते ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि
0: कोई बात नहीं, मैं आप लोग को टाइम दूंगी, अब मैं थोड़ा टाइम दूंगी। आपने कॉल कर लिया था इसलिए ऑन एयर कर दिया मैंने। थैंक यू। तो चलिए हमने अविनाश जी की आवाज़ सुन ली है और ये आखिरी इंस्ट्रूमेंटल प्ले होने जा रहा है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट राउंड है वो शुरू हो जाएगा। तो भाई थोड़ा सा एक्टिव रहिए, आप लोग अपनी टीम को बिल्कुल सपोर्ट करिए और अगला राउंड है 1 मिनट राउंड। कॉल करने के पहले सोच समझ लीजिएगा, आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं अपने टीम मेम्बर्स से, तो चैट रूम में कर लीजिए कौन कॉल करेगा, कौन मैक्सिमम गाने गाएगा, क्योंकि आपका ये फाइनल राउंड ही आपको जिताएगा। किसने अभी तक क्या खेला कैसे खेला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल वाला राउंड जो है वही आपको जिताएगा। तो ये लास्ट म्यूजिक दोनों टीमें जरा ध्यान से सुने, एक 50 पॉइंट दोनों को बराबर पे ला सकता है और एक 50 पॉइंट लड़कियों को 50 पॉइंट आगे दिला सकता है। तो प्लीज लड़कों और लड़कियों ध्यान से ये म्यूजिक सुनो, आप लोगों के लिए ये म्यूजिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा मैं अलग वाला म्यूजिक सुनाती हूँ, ना नया ना पुराना, और आई होप ये म्यूजिक आप लोगों के लिए थोड़ा सा शायद नया भी हो सकता है या थोड़ा सा पुराना भी हो सकता है, बहुत नया भी नहीं है बहुत पुराना भी नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि हाँ ये सबने शायद सुना होगा क्योंकि कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो सबने देखी हैं, मुझे इतना भरोसा है आप लोगों पे। तो चलिए ध्यान से पहले सुनिए आप लोग ये म्यूज़िक और फिर इसके बाद बताइए ये गाना कौन सा है।

0: अब मैंने आप लोग को इसीलिए पूरा म्यूजिक सुना दिया जिससे सबके पास म्यूजिक पहुंच गया और देखिए मेरे पास कॉल पहुंच गया, देखते आवाज किसकी है। हेलो
1: हेलो
0: अविनाश जी, आपने म्यूजिक सुन लिया होगा?
1: जी चल रहा है।
0: तो प्लीज म्यूजिक सुन के कॉल किया करें क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, उन्हें लगता है किसी ने गेस कर दिया। तो चलिए अविनाश जी का कॉल मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ और बाकियों को मौका भी देती हूँ, देखते हैं कौन कॉल करता है। प्लीज़ आप लोग सुनने के बाद ही कॉल किया करें जिससे कि सबको मौका मिले और मैं किसी का भी कॉल तुरंत नहीं लूँगी। हेलो
1: हेलो
0: जी अविनाश जी, बताइए कौन सा गाना है?
1: जी ये पीके मूवी का है, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे।
0: क्या बात है, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, बहुत अच्छा आपने गेस किया और इसी के साथ आपकी टीम के पॉइंट्स लड़कियों की टीम के पॉइंट्स के बराबर हो जाती है। थैंक यू सो मच। तो अविनाश जी के कॉल से दोनों ही टीमें इक्वल पे आ गई। क्या बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, मज़ा आ रहा है, मतलब दोनों टीमें एकदम कहते हैं ना कि बराबरी का टक्कर है। गुड इवनिंग कमल, कैसे हैं? गुड इवनिंग इम्तियाज़, कैसे हैं? सभी का स्वागत है भाई, मज़ा आ रहा है। और वन मिनट राउंड के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, पहले रूल्स सुन लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे जो नए हैं, एकदम बिल्कुल नए, एकदम फ्रेशर्स हैं अंताक्षरी में और मुझे ऐसा लगता है अंताक्षरी के लिए इंतज़ार भी करते हैं वेंसडे का। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कुछ दिनों के लिए आपकी मतलब 2 या 3 वेंसडे अंताक्षरी नहीं हुई और इस वजह से आप लोग बहुत डिस्टर्ब थे। आई फील एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। फिलहाल दुख को मैं थोड़ा सा हटाते हुए आप लोगों से मैं कहूँगी कि ये फाइनल राउंड है। इस राउंड में आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए। 1 मिनट मैं दूंगी, टाइमर शुरू कर दूंगी और उस मिनट में आप जितने गाने गाएंगे मैं गिनूंगी। अगर आप लोग भी गिनना चाहते हैं तो आप लोग दूसरी टीम के गाने गिन सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एप्लीकेशन और फ्रिक्वेंसी वाला इशू। तो मैं गिनूंगी आप लोग के गाने, ऑफकोर्स मैं दोनों ही टीमों में से किसी भी टीम से नहीं हूँ तो मैं ही आपके गानों को गिन के जजमेंट दूंगी। तो किसने कितने गाने गाए, वैसे आप लोग लिख के रखेंगे तो आप भी बता सकेंगे कि मैंने कितने गाने गाए हैं, या जो भी आपका टेक्निक है। तो 1 मिनट में जो भी ज़्यादा गाने गाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने गाना शुरू किया 1 मिनट में, आपको गाने का मतलब मुखड़ा बेसिकली गाना है और गाना सुर में गाना है। ये नहीं कि आप कविता की तरह पढ़ें, दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे इसके बाद, ऐसे नहीं गाना है, आपको सुर में गाना है। दिल दे दिया है दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। फिलहाल इतना आराम से गाएंगे तो जीतेंगे नहीं, थोड़ा फास्ट गाना होगा आपको, ठीक है? तो 1 मिनट में आपको मैक्सिमम गाने गाने होंगे। फॉर एग्जांपल मैं गाना गा रही हूँ और मैंने 1 मिनट में पूरे 15 गाने गाए, तो 15 गाने का मतलब एक गाने का मुझे 10 पॉइंट मिलेगा, तो 15 मतलब 150 पॉइंट मेरे हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला जो कॉल है उस कॉल को मैं ऑन एयर करना चाह रही हूँ। तो मुझे लगता है रूल्स सबको समझ में आ गए, अगर समझ में आ गया तो चैट रूम में जो लोग लाइव है वो फटाफट से हाथ ऊपर उठा दे जिससे मेरे को लग जाए कि आश्वासन मिल जाए कि आप लोग थोड़ा मेरी बातों को समझ रहे हैं, दिल से समझ रहे हैं बाकायदा। तो 1 मिनट वाला राउंड कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक राउंड भी होता है क्योंकि ये वो राउंड है, अगर किसी गलत इंसान ने कॉल करके अपनी टीम का मतलब जो टाइम है वो ले लिया तो उस वजह से मतलब मुझे लगता है दोनों ही टीमें सफ़र कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप लोग इक्वली कॉल करें, दोनों ही टीमें बराबर से कॉल करें जिससे किसी भी टीम का कोई नुकसान ना हो सके। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला कॉल आ चुका है, आवाज़ सुनते हैं किसकी है।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ मैं।
0: शुभ संध्या मुमताज जी, कैसे हैं, क्या हाल है?
1: आपकी दुआ है, ऊपर वाले का करम है।
0: क्या बात है, वो हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। तो सबसे पहले तो आप सुन रहे होंगे अंताक्षरी चल रही है और ये आखिरी राउंड है अंताक्षरी का, तो आप इस राउंड में खेलना चाहेंगे?
1: जी।
0: तो 1 मिनट में आपको ज्यादा से ज्यादा गाने गाने हैं।
1: तेरे
0: एक मिनट मुझे टाइमर शुरू करने दीजिए जिससे कि मैं गाने आपके गिन भी सकूं और मुझे पता चले कि 60 सेकंड में आप कितने गाने गा पाए। तो बस मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं आपका टाइमर शुरू करती हूं और आप तैयार हैं?
1: जी।
0: आपका समय शुरू होता है अब।
1: तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, साथ छोड़ू ना तेरा, चाहे दुनिया हो खफा ये है तेरा फैसला, क्या है मेरा फैसला, हो रब्बा रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, लाल डुबट्टा उड़ गया तेरी हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया है धोखे से, साथिया तेरी कसम है जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना नजर के साथ।
0: बस बस बस मुमताज जी आपने पूरे 9 गाने गाए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इतना सुंदर आपने गाया है और ख़ास तौर पे ये वाला गाना तो आपने बहुत अच्छा गाया, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना, मज़ा आ गया। मतलब मैं गानों को गिनने से ज़्यादा ध्यान से सुन रही थी, इतना सुरीला इतना ठहराव कैसे गा रहे थे आप, बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस आज की शाम की बोलूँगी मैं, मज़ा आ गया, बहुत खूबसूरत, बहुत, मतलब जितनी शुभकामनाएं दूँ कम होंगी आपको, क्या बात है, थैंक यू सो मच मुमताज़ जी। तो मुमताज़ जी ने पूरे 9 गाने गाए हैं और इसी के साथ इनकी टीम को पूरे 90 पॉइंट मैं देना चाहूँगी। यार मज़ा आ गया यार, बहुत अच्छा। देखिए ये 1 मिनट वाला राउंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग बताइए कि अंताक्षरी का कौन सा राउंड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे लिए ये 1 मिनट राउंड, क्योंकि सबका टैलेंट देखने को मिलता है यार, क्या गज़ब आप लोग गाते हैं। और इसी के साथ लड़कों की टीम के मतलब सीधे हो जाते हैं 340 पॉइंट्स, क्या मस्त खेल रहे हैं लड़के, मतलब बहुत बढ़िया एनर्जी दिख रही है। और मैं सच्ची बताऊं एनर्जी से ज़्यादा आप लोग का साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग एकदम एक साथ आ गए एक मैदान में, बहुत दूर दूर से आप लोग एक मैदान में दिख रहे हैं मुझे, बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया। तो चलिए अगले कॉलर को मौका देती हूँ और देखते हैं कौन कॉल करता है। हेलो
2: हेलो हेलो मैम, मैं पूनम बोल रही हूँ।
0: अगेन पूनम जी का कॉल आ गया है। पूनम जी 1 मिनट राउंड के लिए आप रेडी हैं?
2: बिल्कुल मैं रेडी हूँ मैम।
0: तो आप रूल तो समझ गई होंगी, फर्स्ट टाइम कॉल किया है तो आप रूल समझ गई होंगी।
2: जी मैम मैं रूल समझ गई हूँ, 1 मिनट में जितना ज्यादा से ज्यादा गाना गा सकते हैं उतना गाना है।
0: हाँ चलिए, तो आपका मैं टाइम शुरू करती हूँ अब, स्टार्ट।
2: सारी दुनिया

0: पूनम जी, पूनम जी स्टॉप, आपने पूरे 8 गाने गाए हैं क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश थी, पहली बार गाया इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगी, बहुत मजा आया, थैंक यू। और बहुत सुरीला भी आपने गाया, बहुत अच्छा गाती हैं आप, क्या बात है,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच। तो भाई पूनम जी ने अपनी टीम को सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से गाने गाए और मज़ा आ गया भाई, मैं सच्ची बताऊँ ना मज़ा आ रहा है मुझे, लेकिन मैं बताऊँ मैं उन अपने दिग्गजों को याद कर रही हूँ जो एक मिनट में 32 गाने गाते थे, उनको सुनने के बाद आप लोग समझेंगे कि गाना इतना ज़्यादा नहीं गाना था, थोड़ा ही गाना था। फिलहाल पहली बार गाने वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ लड़कियों के हो जाते हैं 330 पॉइंट्स, बहुत बढ़िया खेल रही हैं लड़कियाँ भी लड़के भी। तो अगले कॉलर को मौका मैं देना चाहूँगी, बिल्कुल लाइव रहिए, मैं आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दूंगी, आज मैं आप लोग के जो फरमाइशी वाले हैं ना, तो आप फरमाइशी तो रोज़ ही सुनते हैं, अब आज थोड़ा अपने लिए खेल लेते हैं, तो मैं आज आप लोग को थोड़ा सा खिलाऊंगी 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि टाइम नहीं है, मैं सबको मौका दूंगी, सब लोग मैं चाहूंगी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। तो कॉल आ चुका है, आवाज़ सुनते हैं किसकी है। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, अविनाश जी हमारे साथ हैं, तो एक मिनट वाले राउंड के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल
2: जी, जी तैयार है।
0: आपका समय शुरू होता है अब।
2: दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो, आजा आएगी बाराती बारात लेके, जाएंगे हम तुम साथ लेके, था तो जन्म में तुझे मैं साथ रहूंगा यार। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल के क्या कसूर, तो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे हम कितना प्यार करते हैं सनम, तुम दिल की धड़कन में रहते हो ना ना करते प्यार, वही मैं कर गया आई एम इन लव, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, तुम्हें कितना चाहे तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, बाजीगर हो बाजीगर तुम्हें पड़ा जादूगर।
0: बस बस बस बस बस बस बस, आपने पूरे 12 गाने गाए हैं, क्या बात है अविनाश जी, नॉट बैड, मतलब शुरुआत अच्छी है और मुझे लगता है कि आगे भी बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच अविनाश जी, मजा आ गया, 12 गाने आपने टोटल गाए, थैंक यू। तो अविनाश जी ने 12 गाने गा दिए हैं और इसी के साथ इनकी टीम के हो जाते हैं पॉइंट्स, बढ़ जाते हैं, और भाई मज़ा आ रहा है। मैं बहुत सारे अपने आशु जी, हमारी प्रीति जी, अनूप जी, ये सारे वो लिसनर्स थे ना जो एक बार में इतने इतने गाने गाते थे, और मुझे लगता है कि आप लोग पहली बार गा रहे हैं ना, तो इसलिए आप लोग को बहुत एक्सपीरियंस दी है, तो इसीलिए आप लोग पूरा बढ़िया बढ़िया से गा रहे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे यार, सारे गाने सुन के मज़ा भी आ रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत मज़ा आता था, एक साथ इतने सारे गाने आप लोग फटाक से गाते थे, ओ माई गॉड क्या एनर्जी रहती थी, आई ऑलवेज एन्जॉयड योर एनर्जी। तो इसी के साथ लड़कों की टीम के हो जाते हैं पॉइंट्स, कितने 120 पॉइंट्स भाई बढ़ाने हैं, तो सीधे 120 पॉइंट्स देने का समय आ चुका है लड़कों को, तो मुझे बड़ी खुशी है कि लड़के इतना बढ़िया कर खेल रहे हैं, तो 460 पॉइंट हो जाते हैं लड़कों के इसी के साथ। देखिए कैलकुलेशन आप लोग भी करते रहिएगा, मैं अगले कॉलर को मौका देना चाहूँगी, देखते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओ राकेश, सो राकेश जी आप एक मिनट में गाना गाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं?
3: जी कोशिश करेंगे, कितने गाने गा पाएंगे एक मिनट में कोई बात नहीं, गा देंगे।
0: ओके चलिए, आपका समय शुरू होता है अब, स्टार्ट।
3: जी जी, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन, ये प्यार में क्यों होता है, ये प्यार में क्यों होता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम मर के भी तुझसे, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार,
0: स्टॉप, आपका समय पूरा हो चुका और इसी के साथ आपने पूरे 7 गाने गाए हैं। थैंक यू सो मच राकेश जी, थैंक यू। तो राकेश जी की टीम ने 7 गाने गाए और इसके साथ इनकी टीम को फिर से 70 पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्या बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, मतलब खेल नहीं रहे, उड़ा रहे हैं। अब लड़कियों की बारी है, लड़कियों आपको ये आखिरी मौका मिलेगा। मैं लड़कों से निवेदन करूंगी कि आप लोग अब कॉल ना करें, क्योंकि ये लास्ट मौका मैं लड़कियों को देना चाहती हूं और इसी के साथ इस गेम को ओवर एंड आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग का टाइम ऑलरेडी ले चुकी हूं। तो लड़कियों की टीम से कौन कॉल कर रहा है वो तो आप लोग ही बताएंगे। फिलहाल मैं चाहती हूं कोई ऐसा दिग्गज आ जाए जो एक साथ 30 गाने गा के अपनी टीम को जिता दे। फिलहाल देखते हैं कौन गाता है। दोनों ही टीमों ने बहुत बढ़िया खेला, मज़ा आ गया यार मुझे, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना बढ़िया आप लोग खेलेंगे। एंड यस यू ऑल गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग है आप लोग। सो 530 पॉइंट्स हो जाते हैं लड़कों की टीम के, और नहीं 530 नहीं, कितने होंगे भाई, प्लस कर दें इसमें, और देखते हैं किसका कॉल आ रहा है। फिलहाल तो लड़कियों की टीम को मैं अभी भी बोलना चाहूँगी, आप लोग फटाक फटाक कॉल करिए और अपनी टीम को जिताने का पूरा प्रयास करिए। और हेलो, किसका कॉल है? हेलो, किसी लिसनर की आवाज़ आई थी लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, क्या हो गया भाई? हेलो, चलिए अगले कॉलर को मौका देते हैं। और देखिए लड़कियों की टीम से मैं कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ, प्लीज़ लड़कियों आप लोग कॉल कर दीजिए, नहीं फिर मुझे इस गेम को यहीं ओवर करना पड़ेगा और आपकी टीम हार जाएगी। फिर मुझे मत कहिएगा कि आज बिना हमने आपने हमें कॉल करने बात करने का मौका नहीं दिया। हेलो, वापस से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया भाई, कॉल करिए आप लोग जल्दी से, नहीं तो आपकी टीम आराम से हार जाएगी। आई होप आप लोग का इंतज़ार बना हुआ है। हेलो, वेरी गुड इवनिंग, एंड यस आशु जी आपका स्वागत है। एंड काफ़ी दिन हो गए आप लोग को देखा नहीं, आप लोग जैसे लग रहे हैं अंडरग्राउंड हो गए। तो चलिए आपका 1 मिनट वाला राउंड है, चलिए आप देखते हैं अपनी टीम को जिता पाती हैं कि नहीं, क्योंकि जीतने के लिए आपको सीधे सीधे चाहिए पॉइंट्स 530। और अभी आप लोग की टीम के पॉइंट्स कितने आपने देखे ही होंगे, ठीक है? तो चलिए आप कहें तो मैं आपका टाइमर शुरू करूं।
1: बिल्कुल मैम,
0: आर यू रेडी? आपका समय शुरू होता है अब।
1: खिलौना है टूटे दिल दीवार, दिल दिल प्यार वा, दिल है कि मानता नहीं, दिल वालों का दिल का शीशा हो या दिल हो, ये दिल तुम दिन दिल तो है, दिल दिल का है कौने दिशा में लेके, पखियों के झरोखों से तुमने पुकारा और हम चले, आज कल याद और आए हो मेरी जिंदगी, राम तेरी गंगा मेरी पत्थर के सनम, बरसात में जब आए झुमका गिरा रे मैं ना भूलूंगा, तेरा साथ है तो अपने सनम को खतली का जिंदगी प्यारी का गीत है, तुमसे बढ़कर दुनिया जाने क्यों लोग मुहब्बत, हम तुम्हें इतना प्यार करें जब हम जवान होंगे, ताल से ताल मिला मैं तेरी दुश्मन, तुझे जीवन की डोर से कोयल से तेरी बोली बदमा हो बलमा, मेरे सनम पत्थर के सनम तुझे हमने घर से निकलते जन्म जन्म का साथ आने से उसके आए बाहर भोरे ने खिलाया।
0: स्टॉप, अरे बाप रे, ये कौन सी ट्रेन में बैठ के आप आई थी? क्या बात है, बहुत बढ़िया। मनी लिख रहे हैं कि चीटिंग हुई, मतलब देखिए मैंने लड़कों को 2 बार 3 बार मौका दिया और एक बार लड़कियों को मौका ना दूं तो मतलब ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी मैं आप लोग के 10 मिनट्स ले चुकी हूँ आपके अपने शो यानी कि गीत आपके नाम से, और इसी के साथ आपने पूरे 33 गाने गाए हैं आशु जी। थैंक यू। तो देखिए इसी के साथ लड़कियों ने जो है अपनी जो जीत है उस पर अपना नाम लिखने की कोशिश पूरी की है। चलिए नंबर जोड़ने के बाद ही पता चलेगा कि लड़कियों ने कैसा खेला है, और देखते हैं इनके पहले 330 पॉइंट्स थे और इसी के साथ मैं इनको पॉइंट दे देती हूँ 330 ही फिर से, क्योंकि इन्होंने 33 गाने गाए हैं और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके लड़कियों की टीम के हो जाते हैं, टीम ए के हो जाते हैं सीधे सीधे तौर पे 660 पॉइंट्स। ओ माई गॉड, देखिए मनी मैंने सब बॉयज़ को मौका दिया था और इसी के साथ गीता जी शायद एक गाना मुझसे मिस हो गया हो, लेकिन मैंने 33 गिने हैं तो हो सकता है दिल दिल से कोई गाना मिस ओवरलैप कर गया हो, लेकिन मैंने 33 गाने गिने इसलिए मैं 33 के हिसाब से पॉइंट दूंगी। और इसी के साथ आप लोग की टीम के पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हैं, 660 पॉइंट्स हैं, और ये इस वजह से हैं क्योंकि आप लोग को पता था कि एक मिनट में कैसे गाने गाने हैं। और मेरे जो नए नए लिसनर्स हैं जैसे कि राकेश और अविनाश और पूनम, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, आप लोग नहीं जान पाए कि आपको एक मिनट में गाने कैसे गाने हैं। आप लोग आराम आराम से म्यूज़िकली गा रहे थे, तो एक्चुअली मैं गाने ऐसे ही गाने थे, एक मिनट के अंदर आपको सिर्फ मुखड़ा स्टार्ट करना था, मैं गाने को गेस कर लेती, वो मुझे गेस करना है, आपको बस गाने की शुरुआत करनी थी। और इसी के साथ लड़कियों ने 33 गाने गा के ये जीत अपने नाम कर ली है। और मुझे पता है लड़कों की टीम से भी कुछ ऐसे पुराने दिग्गज अगर वो आ जाते तो लड़कों की टीम ही जीतती। तो मेरे लिए दोनों ही टीम विजय है क्योंकि दोनों टीमों ने स्टार्टिंग से पूरी मेहनत की है, कहीं भी कोई रुका ही नहीं, बैक टू बैक कॉल किया आपने और बैक टू बैक ये दिखाया कि यू आर लाइव एंड यू आर रेडी टू विन, आप जीतने के लिए बिल्कुल आ जाए हैं। और मेरे लिए स्पेशली आज दोनों ही टीमें विजेता हैं। और आज का जो आपका गिफ्ट है वो यही है कि लड़कियों की टीम से कोई भी एक मेंबर सभी लड़कियों की जो फरमाइशें हैं वो मुझे लिख के या तो मुझे चैट रूम में या फिर मुझे इनबॉक्स में कहीं भी या व्हाट्सएप नंबर तो आप लोग के पास नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग जो हमारा ये नंबर है जो जिस पे आप कॉल करते हैं इस पे भेज देंगे मेरे नाम के साथ, जिससे कि मैं आप लोग जो भी भेजेगा वो मुझे ज़रूर बता देगा चैट रूम में अगले दिन या कॉल करके कि आरजेबी ना ये हम लोग की लिस्ट है। तो एक दिन पूरे के पूरे गाने विनर टीम के बजेंगे, तो ये आपको डिसाइड करना है, जो भी विनर टीम है यानी कि लड़कियों की टीम विन हुई है तो आपकी प्लेलिस्ट एक दिन पूरी बजेगी मेरे शो में। तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ टीम, लेकिन जीतना हारना एक तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ना सिर्फ खेला है बल्कि मुझे एकदम मतलब शॉक कर दिया कि इतने दिन बाद हम लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं लेकिन इतनी हाई एनर्जी, ओ माय गॉड। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बोथ टीम, हर मेंबर को बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि आपने ना सिर्फ खेला है आपने अपनी, स्पेशल थैंक्स टू आशू जो लास्ट मोमेंट पे आके अपनी टीम को एकदम जिता के चली गई। फिलहाल दोनों ही टीमें मेरे लिए विजेता हैं, बहुत अच्छा खेला, सुपर सुपर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगले बुधवार फिर मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ और जीतेंगे कुछ नए रूल्स के साथ। तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन, अपने आरजे बीना के साथ शो गोंडा मैसे मसाला में। और अभी आप कुछ देर में सुनना शुरू करेंगे गीत आपके नाम से जो सिर्फ आपके नाम से बजते हैं, आरजे सिंपल के साथ। स्टे ट्यून्ड।

परमानशी विद आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा आहू आहू आहा आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट वाला रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और हमेशा की तरह लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो स्वागत और इस्तकबाल करती हूँ आप सभी का तहे हुए दिल से, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो बबीता जी गोंडा से, मनीष शर्मा खुरासा गोंडा से, मालवे नगर से राजेश सिंह जी, इट्स कुमार एमपी रीवा से, विजय पाल यादव जी ललहुआ लखीमपुर खीरी से, मुस्तफा साउदी से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, सबलू सावंत जी बोरीवली मुंबई से, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राजू सलमानी जी आवास विकास गोंडा से, नागेश्वर धाकड़ आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल। सो क्या कहती है पब्लिक, इस अंताक्षरी के पल को सेलिब्रेट करते करते करते करते क्यों ना चले फरमाइशी के गीतों की तरफ और आप सभी के पसंदीदा गीतों को इंजॉय किया जाए। सो हमारे पास में पहली फरमाइश है दोस्तों बबीता जी की गोंडा से, बबीता जी को गोंडा से सुनना है गाना क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा एसआरके काजोल रानी मुखर्जी का सिर्फ और सिर्फ बबीता जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

कुछ कुछ होता है, हमने एंजॉय किया है ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा बबीता जी की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी के। राजेश सिंह जी को मालवे नगर से सुनना है गाना जीवन के रास्ते में। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार जी की आवाज में घर संसार का ये गाना ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

घर संसार का ये गाना जीवन के रास्ते में किशोर कुमार जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। सो चलिए वक्त तो चला है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का, और अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से। इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना ब्लो आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैनू और आई स्वेर छोटी ड्रेस में वॉर्म लगती मैनू। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग यो यो हनी सिंह का इट्स कुमार की फरमाइश पर।

हमने एंजॉय किया है यो हनी सिंह का ये नगमा, ये ब्लॉकबस्टर सॉन्ग इट्स कुमार की फरमाइश पर जो कि है एमपी रीवा से। चले चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ और आप सभी को ये नए गाने का तड़का इट्स कुमार की तरफ से कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि इट्स कुमार का कहना है कि जब तक नए गानों का तड़का नहीं लगेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। सो हम वैसे भी फरमाइशी गीतों में फरमाइशी गीतों का खिचड़ी ही सुनते हैं और वही हमें सबसे अच्छा लगता है। क्यों? कोई बहुत पुराने गानों की डिमांड करता है, कोई उससे थोड़े नए गानों की, कोई उससे थोड़े, कोई उससे थोड़े, फिर उसके बाद में कोई एकदम ट्रेंडिंग सॉन्ग्स की डिमांड कर देता है। तो इसी फरमाइशी गीत में हम हर एक तरीके के गाने को एंजॉय कर लेते हैं और जिन लोगों को मेरी तरह मूड स्विंग्स होते रहते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनका मन किस तरीके का गाना सुनने का हो रहा है, वो तो जरूर फरमाइशी के गीतों को सुनने जरूर आया करें और फरमाइशी की महफिल में अपना दाखिला जरूर करवा लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हर एक मूड के गाने, हर एक मूड का संगीत और आपके मूड से कौन सा मैच हो रहा है आपकी मूड को तुरंत पता चल जाएगा जैसे वो आला नगमा बजेगा। सो अपनी पारी का इंतजार करते रहना है और अपने पसंदीदा गीतों का भी इंतजार करते रहना है और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय पाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से, और ललहुआ लखीमपुर खीरी से विजय पाल यादव जी को सुनना है गबन मूवी का गाना एहसान मेरे दिल पर तुम्हारा है। सो एंजॉय करते हैं फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा मोहम्मद रफी जी की आवाज में, लेकिन इस बार विजय पाल यादव जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, और ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। हमने इंजॉय किया है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ये फ्रेंड्स फॉरएवर वाला गाना। किसकी फरमाइश पर जानते हैं? विजय पाल यादव जी की फरमाइश पर, जो कि है ललहुआ लखीमपुर खीरी से। इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले नागेश्वर धाकड़ का वेलकम है इनके फरमाइशी की महफिल में। और इन्होंने आते ही कहा है कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरा है दोस्तों। क्या खूब कहा है आपने, और आपकी ये लाइन्स मुझे तो बहुत भा गई हैं। सो इंजॉय कर लेते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुस्तफ़ा जी की सऊदी से, और उनको सुनना है गाना खुदा भी आसमां से। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाला सुपर डुपर हिट नगमा, लेकिन इस बार मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो धरती मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है मोहम्मद रफी जी की आवाज में, मुस्तफा जी की फरमाइश पर। चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो लवली सिंह और आंचल चौबे मोतीगंज से आपका भी स्वागत है आपकी फरमाइशी की महफिल में एंड वेलकम इन योर शो। मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा एंड सन्नू शुक्ला स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? ओहो नहीं जानते हैं तो बता देती हूँ, अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सबीहा की, और सबीहा को सुनना है गाना ख्वाब देखे झूठे मूठे। ओह माय गॉड आई लव दिस सॉन्ग, सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर तड़कता भड़कता सनगमा सबीहा की फरमाइश पर। Stay tuned.

ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रेस मूवी का सिर्फ और सिर्फ सबीहा की फरमाइश पर। सो चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही रोमांटिक से और इश्क मोहब्बत प्यार वाले नगमे की। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश है अनिल वर्मा जी की, सैदापुर से। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना, मोहब्बत तो हम छोड़ दें लेकिन मोहब्बत हमें छोड़ती ही नहीं। सो शायद यही वाला नगमा है। सो इंजॉय करते हैं उदित नारायण जी की आवाज़ में, अलका याग्निक जी की आवाज़ में एक हिंदुस्तानी का ये गाना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मुमताज अंसारी जी गोंडा से, नीना, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो।

ये आदत हमें छोड़ती ही नहीं। हमने एंजॉय किया है अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा हाउ रोमांटिक वाला नगमा अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर जो की है सैदापुर से। चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना वो बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना आग लगे उसकी जोबन को और दिल मत देना मेरी सौतन को। सो छुपा रुस्तम का ये गाना है जिसकी फरमाइश आई हुई है अजय मिश्रा जी की तरफ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। सो अजय जी की तरह किन किन मेरे लिसनर्स को ये गाना अच्छा लगता है मुझे चैट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं आप।

0: छुपा रुस्तम का ये नगमा हमने इंजॉय किया है अजय मिश्रा की फरमाइश पर, जो कि है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और दोस्तों जानते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में किसकी है। हमारे पास में अगली फरमाइश है कृष्णा वर्मा की, और कृष्णा वर्मा है दुकरनाथ से। दुकरनाथ गोंडा से कृष्णा वर्मा को सुनना है हरियाणवी गाना गुलजार छानी वाला का। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा, ओ माई गॉड, हमारे छोटा पैकेट मीन्स कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।
1: ओ, आज तो मैडम के ब्याह का लड्डू खुआवांगे था ना।
0: I really love this song. Thank you so much.
2: देख, ए तू ढंग से बजा।
1: न्यू कर रहा है। ओ, सही जुगाड़ लगा गया भाई।

बहुत खेल खेल लिए मैडम, असली रिश्ता का तो नहीं बिरा पटेगा। अरे यार का किस है, यार तो छड़ा से न्यू एक अच्छे काटेगा। लंडा लाले, राम राम।

गुलजार छानेवाला का ये गाना हमने एंजॉय किया है कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और बहुत दिनों बाद आशु जी को सुनना है गाना। एंजॉय करते हैं उदित नारायण जी की आवाज में, घर से निकलते ही आशु जी की फरमाइश पर स्टे ट्यून।

क्या है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उदित नारायण जी की आवाज में हमारी आशा मिश्रा जी की फरमाइश पर, जो कि है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले मेरे एक बहुत ही प्यारे से लिसनर हैं जिनका नाम है मुकेश यादव और वो हैं गोंडा से। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन किया है मुझसे और उनका इतना प्यारा क्वेश्चन था कि उसका आंसर दिए बिना मेरे से रहा ही नहीं गया दोस्तों। उनका कहना ये है कि माय डियर सिंपल मैम जी, क्या शायरी का कीड़ा आपके अंदर से मर गया? जब तक आप फेंक कर मारती नहीं थी शायरियों का फुहारा, तब तक मेरे कीड़ों को भोजन नहीं मिलता था। सो मैं इसका बस यही जवाब देना चाहूंगी आपसे, बहुत छोटा सा और बहुत जल्दी जवाब देना चाहूंगी कि मशवरा ये था कि लफ्जों को जरा कम कर दूं। मशवरा ये था कि लफ्जों को जरा कम कर दूं, वक्त बचाने की खातिर मैं खामोश ही दम भर लूं। वक्त बचाने की खातिर मैं खामोश ही दम भर लूं, मगर आपकी ये चाहत देखकर दिल फिर से पिघल गया। मुकेश जी, आपकी ये चाहत देखकर दिल फिर से पिघल गया, सोचा कि आपके जहन में फिर से शायरी का मौसम कर दूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली सो मच। और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, बढ़ेंगे हमारे अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगले फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन पर। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से, श्याम नाम की पगली जी गोंडा से, मीन्स सुमित्रा जी गोंडा से, आपका भी स्वागत है। और एंजॉय करते हैं सबलू सावंत जी की फरमाइश जो की है मुंबई से, और सबलू सावंत जी को सुनना है रिमिक्स वर्जन मितवा रे ओ मितवा का। सो एंजॉय करते हैं ये दर्द भरा नगमा, हाउ सैड सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ सबलू जी की फरमाइश पर। मिलते हैं इस छोटे से न्यूज वाले ब्रेक के बाद में, और कहीं मत जाइएगा, पेट पूजा करके फटाफट से वापस आइएगा अपनी फरमाइशी की महफिल में। स्टे ट्यून्ड।

0: के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: that Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
5: We had 26 delegates from
6: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
7: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदार जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजानी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
8: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
9: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, क्या आप लोग न्यूज़ से रूबरू हो चुके हैं? और अगर देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो चुके हैं और आप सभी ने पेट पूजा भी कर ली है, सो फिर देरी किस बात की है, फटाफट से चलते हैं ना हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आवाज़ विकास गोंडा से रवि, नेहा जी बहराइच से आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। इंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है आंचल चौबे की मोतीगंज से, और आंचल चौबे को मोतीगंज से सुनना है यो यो हनी सिंह का गाना। सो एंजॉय करते हैं यो यो हनी सिंह का सॉन्ग एना वीना डोप शोप मारिया करो। सो एंजॉय करते हैं आंचल चौबे की फरमाइश पर ये वाला गाना जो कि है मोतीगंज से, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

है ना वीना डॉप शॉप मारिया करो, हमने एंजॉय किया है यो यो हनी सिंह का ये ब्लॉकबस्टर सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ हमारी हमारी हमारी आंचल जॉबी की फरमाइश पर जो की है मोतीगंज से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों लवली सिंह की, और लवली सिंह को सुनना है गाना तुम मुझको याद ना करना। सो एंजॉय करते हैं ये हाउस सैड वाला नगमा लवली सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

फरमाइश थी लवली सिंह की। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर हैं जिनका नाम है मुकेश यादव, वो हैं गोंडा से। इनका कहना है कि रेत पर नाम कभी लिखते नहीं, रेत पर नाम कभी टिकते नहीं, रेत पर नाम कभी लिखते नहीं, रेत पर नाम कभी टिकते नहीं। लोग कहते हैं कि हम पत्थर दिल हैं, लोग कहते हैं कि हम पत्थर दिल हैं, लेकिन पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। अच्छा जी, सो मैं भी कहना चाहूंगी आपसे कि पत्थर का दिल होना भी एक हुनर है इस जमाने में, पत्थर का दिल होना भी एक हुनर है इस जमाने में, जो टूट कर भी बिखरता नहीं किसी के बहाने में। माना कि पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं दोस्त, माना पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं दोस्त, पर जो जज्बात दिल में हैं वो कहाँ समाते हैं किसी पत्थर के अफसाने में। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में चांदनी की, और चांदनी को सुनना है गाना।

बहुत ही बेहतरीन सा गाना चांदनी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, हमारे आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन इसके पहले मेरे एक लिसनर का कहना है कि चुप बैठने से मसले सुलझते नहीं, चुप बैठने से मसले सुलझते नहीं, किसी के मना करने से चुप बैठते नहीं, वक्त कितना भी मिले हंसी खुशी बतियाने में गुजार दो, घड़ी रुक जाने से वक्त रुकते नहीं। अच्छा जी, और इनका कहना है ये है आपकी शायरी का जवाब। सो आपकी इस शायरी का भी जवाब मैं फटाक से देना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि मशवरा आपका सर आँखों पर हम खामोश ना रहेंगे, मशवरा आपका सर आँखों पर हम खामोश ना रहेंगे, शायरी के इन फूलों को हम हर पल ऐसे ही सजाएंगे, घड़ी चलती रहे अपनी रफ्तार से हमें क्या परवाह, अरे ये घड़ी चलती रहे अपनी रफ्तार से हमें क्या परवाह, हम तो महफिले शायरी में उम्र गुजार देंगे। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री जी की गोरखपुर से, उनको सुनना है गाना मेरी मोहब्बत जवां रहेगी। सो मोहम्मद रफी जी की आवाज में ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा एंजॉय करते हैं अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सदा रही है सदा रहेगी जानवर का ये गाना मेरी मोहब्बत जमा रहेगी। मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है। अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? अगली फरमाइश हमारे पास में है मोहित की मालवे नगर गोंडा से, और उनको सुनना है गाना लेडीज वर्सेस रिकी बहल का ठगले। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा मोहित की फरमाइश पर जो की है मालवे नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनम। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर का कहना है कि खुशबू आ नहीं सकती गुलाब के फूलों से, हम वो महक लाएंगे शायरी के फूलों से। आप शायरी पर शायरी मारते जाओ, आप शायरी पर शायरी मारते जाओ, हम शायरी से पूरी महफिल सजा देंगे। सो इसी के साथ में मैं भी एक लास्ट जवाब आपको देना चाहूंगी और इसी के साथ में अलविदा लेना चाहूंगी। इरादा आपका पक्का है तो हम भी कहाँ पीछे हटने वाले हैं, आप फरमाइश करते जाइए, हम लफ्ज नए बुनने वाले हैं। महफिल सजेगी ऐसी कि फिजाओं में शायरी घुल जाएगी, महफिल सजेगी ऐसे कि फिजाओं में शायरी घुल जाएगी, जब आप और हम मिलकर लिखेंगे तो ये महफिल की हवा भी गुनगुनाने लग जाएगी। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की और उनको सुनना है गाना तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। एंजॉय करते हैं रवि की और नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर ये वाला गाना और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट्स।

हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, आप जाने क्या कहेंगे आप रहने दीजिए। लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आँखों को पहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज़ लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गज़ल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
5: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
4: और जेंट्स के लिए?
5: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
4: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और आज की शाम तो इसलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि आज के दिन जो हमारे श्रोता होते हैं वो बन जाते हैं वक्ता। तो जी हाँ, आज बिल्कुल आप श्रोता नहीं हैं, आज आपको बिल्कुल वक्ता बन जाना है। और इसके लिए अब समय को व्यर्थ न करते हुए, क्योंकि हम जो है वो समय बाद में बढ़ाना पड़ता है साहब, और आप लोग की पूरी दास्तान मुकम्मल नहीं हो पाती, तो भाई बिना व्यर्थ समय व्यर्थ किए हुए चलिए चलते हैं। जी हाँ, रवि जी हमारे साथ, वो कुछ पलों के लिए ही पास होते हैं ज़िंदगी में जो खास होते हैं, क्या बात। और वैसे भी स्पेशल चीज़ों का महत्व जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम तक ही होना चाहिए, नहीं तो वो चीज़ें आइडेंटिटी हो जाती हैं। बिल्कुल शुभ संध्या आपको भी जी। और भाई अब बगैर देरी किए हुए, और मुकेश यादव जी हैं, गुड इवनिंग सर, लव यू, आई टू लव यू। और सर हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ही कहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही कहूँगा। और नागेश्वर धाकर जी भी हैं भाई, कल फिर मिलते हैं। कल फिर क्यों मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। जी हाँ, तो कहा जाता है फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टिपिकल, पहला कदम बहुत कठिन होता है, और देखते हैं भाई इस पहले कदम को कौन उठाता है। तो पहले कदम की शुरुआत, पहला गीत, पहला नगमा, देखते हैं भाई आज किसकी तरफ से है। और आपकी प्रतीक्षा यहाँ हो रही है, 9:39:33 हो चुके हैं, यानी हमने अब तक 9 मिनट लगभग गंवा दिया है। जी हाँ, क्या बात है भाई, बहुत ही ऐ मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना। सविता शास्त्री जी चरण स्पर्श करते हैं आपको, शुभ संध्या। मनु सर जी आपको भी शुभ संध्या। और हम चाहते हैं कि भाई न हो तो आज शुरुआत आप ही से कर ली जाए, क्योंकि चैट बॉक्स में आप ही दिखाई पड़ी। और रवि गोंडा जी से हमने कभी कोई गीत नहीं सुना, और क्या बात है जी, इसका मतलब हम आज प्यारी से शुरुआत करने वाले हैं, ऐसा मेरे दिल को लग रहा है। क्योंकि जी वर्सेटाइल जीनियस जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि आवाज़ बहुत प्यारी सी गूंजने वाली है स्टूडियो में। हेलो ओहो, चरण स्पर्श
1: संध्या सर जी।
0: जी जी, पहले
1: संध्या सर कहते हैं,
0: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको वैवाहिक जीवन की।
1: अरे धन्यवाद।
0: हमने कहा ऑनलाइन, जब कभी बोलेंगे तो ऑन एयर ही बोलेंगे। और
1: चलिए बहुत अच्छी बात है,
0: और मतलब अच्छी बात तब होगी जब हम मिठाई खा लेंगे, मतलब अभी तो हमने बोल दिया है।
1: तो उसके लिए तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा।
0: हम हर कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं।
1: तो जब आइए तब आपके लिए मिठाई हाजिर है।
0: जी बिल्कुल, हम हर कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, और बिल्कुल आएंगे मिठाई खाने के लिए।
1: आज हमने कहा कि जो है इतने दिन का जो अनुपस्थिति थी मेरी
0: जी,
1: उसको मैं पहले गाने से ही जो है भरपाई कर पाऊंगी शायद।
0: क्या बात है। नहीं नहीं, वास्तव में फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टिपिकल, पहला कदम कठिन होता है, और आपने कठिन कदम उठा दिया है, और आपके लिए कठिन है नहीं, आपके लिए तो बहुत आसान है। तो हम क्या मधुर आवाज में क्या सुनने वाले हैं आज
1: जी? लता जी का मैं गाना सुनाना चाहती हूँ।
0: क्या बात,
1: लज्जा गले।
0: क्या बात है, पहला गीत और शानदार गीत।
1: शुरू करें सर?
0: जी जी, निसंदेह।

0: में मुलाकात हो न हो, लग जागने। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई। और देखिए आज दादा का संदेश आ चुका है, बहुत सुंदर गाया तुमने शिल्पी जी, और निहाज ने गाया, कहा भाई शिल्पी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है भाई, मतलब शुरुआत बहुत शानदार हुई ऐसा लोगों का कहना है।
0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मतलब लेकिन हमको लगता है कि आप अनुपस्थित रही कई बुधवार से, तो एक
0: जी मैं, हाँ जी जी मैं करीब 10 दिनों के लिए, 11 दिन के लिए मैं बाहर गई हुई थी
1: जी, तो तुमको पता है। लेकिन हमको लगता है कि एक से काम चलेगा नहीं,
0: एक से काम नहीं चलेगा,
1: नहीं चलेगा,
0: तो आप ही कह दीजिए तो मैं सुना दूं।
1: नहीं, जो जो आपके दिल में हो।
0: चलिए थोड़ा सा मुझे याद है
1: जी,
0: मेरी दीदी ने सजेस्ट किया था वो गाना मैं गाती हूँ
1: जी, बिल्कुल
0: किशोर का है, किशोर जी का है।
1: हाँ तब तो आवाज ही मिलेगी
0: जी।

0: मुझे मेरे याद नहीं था सर।
1: नहीं नहीं, अब आपको एक होमवर्क देते हैं
0: जी।
1: जी अगले बुधवार को हम आपसे सुनेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
0: अच्छा अच्छा बिल्कुल सर
1: जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मुझे लगता है कि इस गीत को बहुत अच्छा गाएंगे आप।
0: कोशिश करेंगे सर।
1: नहीं नहीं, हमको मतलब मैं श्योर हूँ आपकी कोशिश पर हमको कोई शक नहीं है। कुछ तो लोग
0: अच्छा सर, एक चीज पूछना था, वो आपके सर जो थे वो आजकल नहीं गाते हैं।
1: कौन?
0: आपके श्रीवास्तव जी।
1: बिल्कुल गाएंगे आज, बिल्कुल गाएंगे वो।
0: हाँ तो बिल्कुल, मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई वो गाए आज।
1: जी वो बिल्कुल गाएंगे, आप निश्चिंत रहिए।
0: जी जी ठीक है सर।
1: अच्छा चरण स्पर्श और प्रणाम।
0: प्रणाम सर।
1: जी हाँ भाई, तो क्या बात है, शुरुआत बहुत शानदार हो चुकी है भाई। और खिलते हैं गुल यहाँ, क्या बात है, लग जा गले। और इसमें ने लिखा है भाई, क्या बात है, प्रभावपूर्ण प्रस्तुति है। अरे तो प्रभाव तो वही है भाई, स्वभाव भी है और प्रभाव भी है, दोनों है, बहुत दोनों बहुत शानदार है भाई। नेहा जी आज हमको लगता है कि बहुत अच्छा गीत कोई तैयार कर चुकी हैं। और सविता जी भी हमको लगता है, और दादा तो बस अपने रंग में आने ही वाले होंगे। देखते हैं भाई, अब सबसे पहले अपने रंग में कौन आता है, इसकी प्रतीक्षा हमको करनी पड़ेगी कि रंग किसका सर चढ़ के बोलेगा। फिलहाल एक रंग तो ऐसा है जो सर चढ़ के बोल चुका है, अब दूसरे रंग की प्रतीक्षा है। और जी हाँ, फोन आ चुका है। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ रे दादा प्रणाम।
2: अरे बहुत बहुत खुश रहिए, बहुत ज्यादा तरक्की कीजिए, बताए सर।
1: जी जी जी दादा, कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: आज तो बहन जी ने शुरुआत बहुत शानदार कर दी है।
2: मैंने बहुत प्यारा गाया
1: है। हाँ, और इसके पश्चात हमने ये भी कह दिया है कि कुछ तो लोग कहेंगे अगले बुधवार को सुनेंगे।
2: अच्छा,
1: हाँ, अब एक होमवर्क दे देते हैं।
2: बहुत बढ़िया गाना,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लग जाए गले। क्या
2: सामने का शुरुआत हो गई, तो शायद मैं भी कुछ दो चार लाइन सुनाई दूं।
1: जी बिल्कुल निसंदेह,
2: मैं रफी साहब का गाना ही गाऊंगा, बताने।
1: हाँ हाँ वो तो,
2: और वो जानवर पिक्चर का गाना है, शायद अभी कुछ दिन पहले सिंपल ने गाना बजा दिया मेरे गाने।
1: जी जी, तो आज बुधवार है और अच्छा आपको।
2: जी, जी मेरी मोहब्बत जमा रहे,
1: मेरी मोहब्बत जमा रहेगी। जी
2: तो क्या मैं शुरू करूं?
1: जी जी
2: एक मिनट। मैंने मोहब्बत जमा रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जमा रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर ये कहेगी, सदा रहेगी, सदा रहेगी। ना तुमसा कोई जमान भर में ओ, ना तुमसा कोई जमान भर में तुम्हें कचा मेरे नजर में, तुम्हें कचा मेरी नजर में, तुम चुनो है, तुम चुनेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तुम्हारे पहलो मगर मरे हम ओ, तुम्हारे पहलो मगर मरे हम, वो मौत कितने
3: होगे तो आज कितने हसीन होगे, चिताएं जलकर नहीं मिटेगी, सदा रही है सदा रहेगी मेरी मोहब्बत, जवां रहेगी सदा रही है सदा रहेगी, तड़प तड़प कर ये कहेगी सदा रही है सदा।

0: यही तो मंदिर के रोशनी है, यही तो मंदिर के रोशनी है, नए बुझे नए बुझेगी सजा रही है, सजा रहेगी मेरी मोहब्बत जवा रहेगी, सजा रही है सजा रहेगी, सजा रही है सजा रहेगी। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, और आपको देखकर आपको सुनकर लगा कि मेरी भी मोहब्बत जवां रही थी, जवां रही है और जवां रहेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मतलब वो पूरा होना चाहिए। और देखिए भाई, शिल्पी ने लिख दिया है, वाह दादा क्या बात है
0: भाई।
1: सचिन शुक्ला ने बहुत सारे स्टार्स दे दिए भाई। सचिन जी आपका भी प्रणाम है, अभिनंदन है आपका। और जी दादा क्या गीत गाया, तो नहीं नहीं और क्या, अगर सविता जी भी हो तो लगे हाथ सुन लिया जाए, नहीं तो पता नहीं फिर कब मौका मिले।
0: ऐसा है क्या, एक मिनट चल भी जाओगी, बोले लगे हाथ जाते।
2: हेलो
1: जी, प्रणाम।
2: हाँ प्रणाम, खुश रहिए, क्या चल है,
1: कैसी हैं आप?
2: ठीक है, अच्छे हैं, आप बताइए।
1: आपकी अमानत गोंडा आई, हमने सकुशल उनको गोरखपुर पहुंचा दिया।
2: हाँ बहुत ही सकुशल यहाँ पहुंच गए, बहुत खुश थे, उनकी बहुत दिनों से इच्छा थी वो पूरी हो गई।
1: हाँ बड़ी दिनों से उनकी भी इच्छा थी और हमारी भी इच्छा थी।
2: अच्छा, तो अच्छा है, दोनों का मिलना हो गया, तो
1: दोनों का मिलना हो गया। हम चाहते हैं कि हम दो पति आपस में मिल चुके हैं
2: और, हाँ, अब हम पत्नियां मिले।
1: नहीं हमने कुछ कहा नहीं है। हाँ मतलब हाँ ये सोच रहे थे कि हम दो लोग तो मिल चुके।
2: नहीं
1: नहीं, अगर आप गोंडा आइए तो आपका स्वागत है, और हम गोरखपुर आएंगे तो आपको हमारा स्वागत करना पड़ेगा।
2: हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तैयार
1: हैं, तैयार हैं, इधर से हम भी तैयार हैं, देखिए पहले कौन आ जाए।
2: अच्छा ठीक है,
1: तो आज क्या सुनने वाले हैं हम आपसे?
2: आज मैं थोड़ा ये वाला गाना है ना, अपनी सजन सावन में चुपके चुपके का,
1: क्या बात है,
2: उसे गाने का प्रयास कर रही हूँ।
1: रोमांटिक मूड में हमारे दादा भी हैं और आप भी एकदम उनके ताल से ताल
2: नहीं।
1: जी बिल्कुल, बहुत प्यारा
2: ठीक है सर, शुरू करें।
1: जी जी

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, क्या बात है। लता मंगेशकर की है प्यारी सी आवाज, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है फिल्म चुपके चुपके।
0: हाँ जी, चुपके चुपके।
1: और मैंने जितनी भी कॉमेडी मूवीज आज तक देखी, इससे अच्छी मूवी हमको कॉमेडी किसी कोई नहीं लगी।
0: बिना एक भी
1: अभद्र शब्द का प्रयोग किए हुए, और एक झापड़ की मार भी कहीं नहीं है, और वास्तव में फिल्म दिल को छूती है। वो बायोलॉजी के टीचर जो है वो इंग्लिश के प्रोफेसर हो जाते हैं, क्या बात है। बहुत प्यारा ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, और ये हमने थोड़ा बहुत आपका साथ चुटकियों पर दिया।
0: अच्छा, हाँ,
1: जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार भाई। आपकी जो है वो शिल्पी जी ने आपकी तारीफ पर तारीफ कर दी है, बहुत लगा अच्छा प्रयास, बहुत भूल पे सुर लय ताल गति का बेहद सामंजस्य।
0: उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया है।
1: जी जी, उन्होंने बहुत अच्छा गाया है। हाँ। वास्तव में जी हाँ, आप तीनों बहुत अच्छा गा रहे हैं।
0: सर एक बार आप भी गाइए प्रोग्राम में किसी।
1: असली में हम जो है गा नहीं पाते, इसलिए नहीं गाते, नहीं तो जरूर गाते।
0: नहीं, जितना गाते उतना ही अच्छा लगता है।
1: नहीं हाँ, ठीक है, बिल्कुल आपकी आज्ञा हुई है तो जरूर कभी हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल गाएं। बिल्कुल, मतलब अगले बार कोशिश रहेगी, और दो तीन पंक्तियाँ जो हमको थोड़ी बहुत आती है वो आपको जरूर सुनाएंगे। अच्छा, चरण स्पर्श। जी हाँ, तो भाई ये आपके सजन सावन में फिल्म चुपके चुपके, लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज, और ये जो चिचक कर रहे थे ये हम कर रहे थे ना जी, आपको लगा कि वो कर रहे हैं ये। जी हाँ, ये जी हाँ, आप देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
2: हेलो,
1: हेलो,
2: नमस्कार सर। कैसे हैं आप?
1: कैसे हैं, जैसा ईश्वर रखेगा आप लोग की जैसी दुआएं रहेंगी वैसे ही हैं।
2: अरे सर, हम नहीं रखेंगे, मौसम विभाग वाले अगर स्वस्थ रखे तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल, आप जाइए और ऊपर से पानी बरसाइए।
2: सर मतलब आप चाहते हैं हम अभी ऊपर चल गए?
1: मतलब आपकी प्रार्थनाएं ऊपर तक जाए और पानी पहुंचाए। आप
2: सर वैसे आपके कहने पर हम देखिए एक मंजिल चढ़ाए।
1: अच्छा, एक मंजिल? नहीं।
2: जी हाँ, एक मंजिल चढ़ाए, दूसरी मंजिल जाए क्या?
1: नहीं, बस कुछ नहीं, प्रार्थनाएं आप ऊपर पहुँचाइए और कहिए कि पानी बरस दे।
2: अब देखिए आप ही की वजह से हमने इतनी जल्दी जल्दी खाना खाया है।
1: अच्छा, मतलब खाना आपने खा लिया कहिए हमारी वजह से? नहीं
2: जी जी हाँ, वो दरअसल क्या है ना कि 9:15 के करीब हम लोग बैठे तो दीदी ने कहा आस्था या तो तुम पहले मतलब बाद में खा लो या तो पहले खाओ, क्योंकि अगर तुम अभी जाओगी गाना सुनाने के लिए तो जाहिर सी बात है आधा घंटा लगेगा। हमने कहा आधा घंटा नहीं लगेगा, तो कहे कि पहले खाना खा लेते हैं साथ में, क्योंकि तुम नहीं खाओगे तो अभी सब लोग बैठे रहेंगे।
1: हाँ, सही बात,
2: साथ ही में खाते। हमने कहा ठीक है खाना खा लेते उसके बाद। तो कह रही है अब तुम्हें नहीं सुनाना? हम कहे नहीं सुनाना, पहले खा ले फिर जाए।
1: खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
2: नहीं, ऐसी कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं सर, अभी हम लेट से खाते, कॉल हम भी पहली कॉल हम ही करते, लेकिन करनी पर उस वक्त हम खाना खा रहे थे।
1: जी जी, तो चलिए शुरू कर दिया जाए।
2: जी हाँ, शुरू कर दिया जाए। तो आज मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगी, आनंद राज आनंद जी का गाया हुआ,
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
2: जी, उसका सेकंड वर्जन।
1: जी अच्छा
2: जी हाँ, तो मैं वो सुनाऊंगी आपको।
1: जी,
2: कैसी नसीब में था ये दिल हमारा, मोल समझा नहीं ये क्यों तुम्हारा, कैसी नसीब में था ये दिल हमारा, मोल समझा नहीं ये क्यों तुम्हारा, सर को झुका के आया मैं तेरे सामने, जो भी हुई वो सारी गलतियां मानने, मुझको जहां से ऐ खुदा उठा ले, यार की जो सांसे पड़े कम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,

रब दी कसम यारा, रब दी कसम, इन आँखों को होने ना देंगे नम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम।

0: रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, हो दगा नहीं करेंगे सनम। थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। आपने जैसे ही आनंद राज आनंद कहा था, मेरे दिमाग में आ गया था कि गीत तो वही उनका सबसे मधुर है, दिल दे दिया।
0: मुझे ये गाना बहुत पसंद है और मैं परसों आ रही थी सफर से, तो ट्रेन में मैंने कम से कम इस गाने को 10 बार सुना कम से कम।
1: आप ये जान लीजिए कि अगर आप 10 बार सुनी थी और 2 बार सुना देती तो ट्रेन का किराया आपको मिल जाता।
0: क्या बात है, थैंक यू। बस अगली बार ध्यान रखेंगे। इसकी एक और बहुत खूबसूरत लाइन है, फिर कभी आपको सुनाएंगे। दरअसल दीदी चाहती थी कि आज मैं ये सॉन्ग सुनाऊं।
1: जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा गीत सुनाया आपने, जोक सपाट, लेकिन मतलब वास्तव में अगर ट्रेन में गीत आपने सुना है तो बहुत प्यारा गीत सुना।
0: बहुत बहुत
1: और बहुत दिन के बाद हमने भी सुनने को मिला, इसके लिए आपके हम आभारी हैं।
0: जी थैंक यू आपको।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, नमस्कार।
1: अच्छा, नमस्कार। जी हाँ भाई, न्याज निकला बहुत खूब। जी और अब देखते हैं भाई कौन हमारे साथ फिर। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो सर, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
2: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
1: जी अरे मुमताज जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
2: वालेकुम अस्सलाम, बस खुदा का करम है, आप लोगों की दुआएं।
1: जी वो हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज
2: हम आप जो बताइए।
1: जी हम बताएं जो आप
2: सुना।
1: हाँ सुना दीजिए और क्या,
2: स्टार्ट करें।
1: जी जी निसंदेह।
2: तेरी चाहत मुझे किस मोड़ पे ले आई है, गम ही गम

वादा अंदाजे मसीहाई है, अगर आग दिल में लगी हो तो जानो, अगर आग दिल में लगी हो तो जानो, मोहब्बत कभी तुमने की हो तो जानो, मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत की हो तो जानो।

0: कहती है मोहब्बत की हो तो जानो, मोहब्बत की हो तो जानो। जी सर,
1: क्या बात है भाई, मोहब्बत की हो तो जानो। और वास्तव में हम उम्मीद करेंगे कि जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग करें।
0: जी सर।
1: हाँ, और फिर आपके जैसा ही बता पाए मोहब्बत की हो तो जानो, आपको आपकी मुबारक मोहब्बत हो।
0: मगर सर आजकल का जमाना है
1: जी,
0: दिल लाइन और सुनाना चाहता हूँ।
1: मोहब्बत अब तिजारत बन गई है।
0: मोहब्बत अब तिजारत तो बन ही गई है, मगर एक शायर बीच में सुनाता हूँ
1: जी,
0: आजकल के जमाने के हिसाब से
1: जी,
0: कि अगर हम मोहब्बत करेंगे तो रोते रहेंगे।
1: हाँ,
0: और अशकों से दामन को अपने भिगोते
1: रहेंगे।
0: मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। बस दो लाइन ही सुनाकर
1: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, खुदा हाफिज। हेलो हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो सर जी, नमस्ते
1: जी। नमस्ते,
2: संतोष बोल रहे हैं गिलौली से।
1: जी संतोष जी, आप गिलौली से बोल रहे हैं। वैसे बोल आप मुँह से रहे हैं, लेकिन स्थान गिलौली है।
2: और सर बताइए कैसे हैं?
1: बस आपका आशीर्वाद है, जान लीजिए बस।
2: तो आज प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा चल रहा है आपका।
1: जी जी, अच्छा चलेगा, वो मजबूरी है।
2: रेडियो पर सुन रहा हूँ।
1: हाँ,
2: अभी मुमताज अंसारी जी ने गाया था
1: जी, ये भी गाया है। हाँ,
2: खाली यही लाइन गाया था, छोड़ दिया गाना, तो बड़ा बढ़िया जानते हैं वो
1: जी।
2: मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत कब मोहब्बत बन गई है। किसी से खेलना फिर छोड़ देना, ऐसी लाइन तो बहुत अच्छी है सर। लेकिन
1: आपको भी नहीं,
2: सपेर कुमार का कोई सपेर कुमार का गीत आपके रेडियो पर सुनाने जा रहा हूँ
1: जी।
2: मुबारक हो हम सबको हज का महीना, न थी मेरी किस्मत कि तू देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बसरे के सब में खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बसरे के सब में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है जीना उसी का है मरना। न थी मेरी किस्मत कि तू देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, बिल्कुल। और हम दुआ करेंगे कि आपका, और क्या बात है भाई, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व, तो श्री अशोक त्रिपाठी जी, और हम उनको उपाधि दे चुके हैं सुल्ताने राग यमन कल्याण। मतलब हम भाई, आपका संदेश आपको प्राप्त हो चुका है और लिखावट आपकी बहुत अच्छी है, और हम चाहते हैं कि आपके गले से भी हमको सुने भाई। क्या बात है, आप पधार चुके हैं, इस बात की बहुत खुशी। और श्री बी श्री तेजनाथ शुक्ल जी भी मेरे साथ हैं, शुभ संध्या मनु जी, वृंदावन धाम में हूँ, सबको राधे राधे जी। हाँ, दिल दे दिया है जान तुझे देंगे, खाने जल्दी जल्दी खाने के बाद गाया, लेकिन गाया बहुत तबीयत से, बहुत सुंदर। जी हाँ, और अब देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
3: हाँ नमस्कार।
1: हाँ दस कुमार जी, क्या हाँ क्या बात है।
3: अरे बार लग गया किसी तरीके से है।
1: जी जी बिल्कुल, लग वो लगाने की कोशिश इंसान की होती है तो भगवान को पा लेता है।
3: चलो बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी।
3: और आप ठीक हैं
1: जी?
3: चलो भैया तो छोटा सा है
1: जी,
3: निकाल दे रहा हूँ, मौका मिला तो है, समय है ना?
1: जी जी समय है।
3: है जन्नत वे दुनिया जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का, है जन्नत ये दुनिया जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में, लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में, उसी ने है लूटा मजा जिंदगी मोहब्बत में जो गया किसी का, है जन्नत ये दुनिया जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया किसी का, सजदे के काबिल और वो दीवाना के जो बन गया है तस्वीर जाना, है सजदे के काबिल और वो दीवाना के जो बन गया तस्वीर जाना, सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की जमाना का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। थैंक्स।
1: क्या बात है भाई, और आज जानिए हमारी एक बड़ी कंफ्यूजन दूर हुई। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा जमाना किसी का, ये भजन सुनते थे हम और ये आज तक पकड़ नहीं पाए थे कि ये कौन सा गीत है जिस पर ये भजन बना है, और हमको लगता है इसी पर बना है ना।
3: हाँ।
1: इसी गीत पर है ना, वो कौन सा गीत आपने गाया? हाँ। पहली पंक्ति क्या है?
3: है जन्नत उसी की जमाना उसी का,
1: है जन्नत
3: मोहब्बत में जो
1: है,
3: है दुनिया उसी की जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का।
1: क्या बात है,
3: ये मूवी,
1: ये क्या,
3: ये मूवी है कश्मीर की कली।
1: कश्मीर की कली, क्या शम्मी कपूर के साथ शर्मिला टैगोर?
3: जी हाँ, यस
1: जी जी जी जी जी। क्या बात है भाई, हमारी कंफ्यूजन दूर कर दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा गाया और बहुत उमदा, और हमारी वो कंफ्यूजन तो गई, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दर्द कुमार जी।
3: ठीक है, नमस्कार।
1: अच्छा जी, प्रणाम। जय भाई, और आप चाहते हैं कि हम राग यमन कल्याण के सम्राट से करबद्ध निवेदन करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हुए कहते हैं कि भाई श्री अशोक त्रिपाठी जी का हमें कुछ राग यमन कल्याण मिले, क्योंकि देखिए वो चार धाम की यात्रा पर गए और इधर होकर के चले आए, और मेरे साथ श्री चैतन्य शुक्ला जी वो वृंदावन धाम में है। सबको राधे राधे भाई, आपको भी राधे राधे। और इसके बाद फिर कायनाथ, हेलो जी। जी हाँ, हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप कायनाथ जी बिल्कुल अच्छी होंगी, और अभी आपने बताया कि थोड़ी सी दुखी हैं आप, तो चलिए आपके उस दुख को गीतों के माध्यम से थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। और अब व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व तो से अनुरोध है भाई कि वो राग यमन कल्याण के जो बादशाह हैं, कम से कम वो हमारे पास इस महफिल में उनकी आवाज़ सुनने की बड़ी इच्छा है, शोध करके लाते हैं, और वो शोध का विषय जो होता है वो हमको बहुत कुछ सिखा करके जाता है। तो भाई उनसे अनुरोध है, अगर वो सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ अगर वहाँ तक पहुँच रही हो, तो हमको लगता है कि हमको भी कुछ राग यमन कल्याण में सुनने को मिलेगा। हमको लगता है कि मेरी मुराद पूरी हो गई। हेलो,
3: हेलो, हेलो,
1: चरण स्पर्श प्रभु।
3: जय हो, जय हो, मैं ही हूँ अशोक त्रिपाठी, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि
1: जी जी, बस वो
3: सुनने की बात, तो मैं आ गया, लाइन पर आ गया हूँ।
1: और राग यमन कल्याण के सम्राट
3: जी हाँ, ऐसा ना कहिए, यमन कल्याण के सम्राट जरूर ही होंगे कोई न कोई, लेकिन हम ऐसा अपने लिए नहीं समझ रहे हैं।
1: नहीं नहीं, मतलब जो आपने खोज की, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, उसके बाद 10-12 गाने सुनाए आपने।
3: हाँ, खोज तो की है, तो उसके तो सैकड़ों गाने ही हैं। हमने तो कहा था आपसे कि साल भर चलता रहेगा, तो भी हाँ ये है कि एक छोटा सा हम जरूर आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जो अपने श्रोताओं का एक कार्यक्रम है, इसका थोड़ा सा समय और कुछ बढ़ा दीजिए, कुछ 9 बजे से 11 बजे तक कर दीजिए।
1: अच्छा, श्रोताओं की हम तुरंत के बाद जो है वो पहुंचाते हैं अपने ऊपर तक।
3: आज कुछ कुछ न कुछ और भी जो श्रोता कहीं संकोच में रह जाते होंगे और मिलाने के लिए वेट करते रह जाते होंगे, उनको भी समय मिलना चाहिए।
1: जी जी,
3: आपके सामने तमाम सारी प्रतिभाएं।
1: अभी हम अनुरोध करेंगे कि तत्काल जो है बुधवार को एक दिन के लिए इस कार्यक्रम को 2 घंटे का कर दिया जाए।
3: हाँ बिल्कुल, कर दिया जाए, कुछ श्रोताओं की चीजें सामने आएंगी, सुना जाएगा, अच्छा लगेगा, सभी लोग वेट करते हैं अपनी बातें रखने के लिए, और जो लोग भी गा रहे हैं मैं उनको सुनता हूँ, सारे लोगों को बहुत तबीयत से गाते हैं। हाँ। जो मन से आवाज निकलती है वो आवाज ही कुछ और होती है। हाँ। उसमें कोई राग हो या ना हो, लेकिन जो मन का राग है वो जरूर ही प्रस्फुटित होता है, अच्छा लगता है।
1: राग हो या ना हो, लेकिन अनुराग होता है।
3: हाँ बिल्कुल होता है। तो मैं आपको, आपने कहा है तो कुछ एक दो लाइनें सुना ही दूंगा। फिल्म का नाम तो कुछ अलग हट करके ही, फिल्म का नाम तो है कि मैं चुप रहूंगी।
1: अच्छा।
3: लेकिन गाना कुछ अलग का है क्या, कि एक भजन मानिए उसको या एक फिल्मी गीत मानिए, जैसा भी माने आप, तो मैं उसकी कुछ लाइनें गुनगुना रहा हूँ। राग यमन के बजाय राग खमाज भी रात को 9 बजे के बाद सही गाया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए।
1: जी,
3: खमाज का है।
1: हाँ, हाँ। तो आप समय को बहुत ध्यान में रखते हैं।
3: हाँ, तो बस उसी टाइम के हिसाब से इसलिए चाहता हूँ कि उसकी टोन थोड़ा पकड़ में आती है, जब आप बे टाइम गाएंगे तो उसको आपको खींचना पड़ जाता है, ये टाइम से रहेगा तो खींचना नहीं पड़ता।
1: ये बात है। अच्छा, मतलब आपका शरीर ऐसा उस स्थिति में होता है।
3: हाँ, वो टोन वो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगी, उसको फिर खींचना पड़ेगा, तब पकड़ में आएगी, वो भागेगा जैसे गाना, इसी टाइम से लगेगा आपको।
1: तो ये कौन सा राग है जो आप गाने जा रहे हैं?
3: खमादी, खमादी।
1: खमादी।
3: हाँ जी, खमादी।
1: खमादी, जी।
3: शुरू करता हूँ मैं।
1: जी जी, निसंदेह।
3: जी हाँ। कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आने पड़ी मैं तेरे द्वार।
2: बूंद ही बूंद में प्यार की चुनकर प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर।

0: करो या स्वर्ण बना लो तन को मेरे चरणों में लगा लो मुरली समझ हाथों से उठा लो सोचो ना कछु अब है इस निमरा कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार मुहे चाकर समझ निहार काना काना आन पड़ी मैं तेरे द्वार।
1: क्या बात है भाई, हमको लगता है कि ये लता जी की आवाज को टच कर रहा है, ये लता शायद लता जी का गाया हुआ ही है।
2: हाँ ऐसी आवाज तो निस्संदेह है, ये गीत गाने के लिए लता जी ही का स्पेशलाइजेशन था और रागों पर आधारित काफी गीत उन्होंने ही गाए हैं।
1: वाह क्या बात है, लेकिन आज तो आपने भजन गाकर वह मन से मुग्ध कर दिया।
2: भजन कहें या फिल्म का कहें, लेकिन ये गीत हमको पसंद आता है, भगवान से निवेदन है, प्रार्थना है।
1: मतलब बूंद बूंद में प्यार की शुरू कर, प्यासी
2: रही पर लाई हो गिर।
1: हाँ, क्या बात है, टूट ही जाए आस मगर।
2: जिसकी जो प्यासा नहीं है खुद वो ला रहा है तो उसकी बात कुछ और है, जो खुद प्यासा रह करके ला रहा है। हाँ, कुछ और बात।
1: मतलब क्या भाव है,
2: और क्या
1: मतलब इस भाव को छूती हुई पंक्तियां जाती है, लगता

0: सकते हैं, उतरना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: मतलब वहाँ पर कहीं भी स्टैग्नेशन, कहीं कोई ठहराव नहीं, कुछ न कुछ सीखते रहने
1: की।
0: सही बात है, क्या बात है, क्या बात है, हर क्षेत्र में महारत हासिल।
1: जीवन ऐसा, हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, बस ये है कि आप सबसे जो लगाव है, मैं उस लगाव को समेटना चाहता हूं कि अपने साथ ये जुड़ाव बना ही रह जाए, और इसीलिए हर बार मैं आपके बीच में आना ही चाहता हूं, मन ही बनाए रहता हूं कि आऊं जरूर।
0: नहीं, और ये जान लीजिए हमारा सौभाग्य है। मतलब वो एक पंक्ति थी कि मुझको याद नहीं है कि कविता ने लस्सी तुलसी पाकर तुलसी को, पता नहीं ऐसी कोई पंक्ति है, तो उसका भाव ये है कि कविता जो है वो तुलसी कविता को पाकर धन्य नहीं हुए, कविता तुलसी को पाकर धन्य हो गई। तो उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि आपको पाकर हमारा रेडियो गणस्थली परिवार धन्य हो गया।
1: धन्यवाद है आपको कि आप हमें इस तरह से, हमें और अपने सारे श्रोताओं को देते हैं सम्मान, तो हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है, और इसीलिए हमने आपसे अनुरोध किया कि हमें और समय दिया जाए, ऐसा हमें लगा कि ये हमारा अधिकार बना जा रहा है कि हम आपसे थोड़ा समय और मांगे।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, और हम अगले बुधवार से ही कोशिश करेंगे कि नौ नहीं लेकिन 9:15 से प्रयत्न रहेगा कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: शुरू कर दिया जाए।
1: बिल्कुल, बहुत थैंक यू।
0: अच्छा चल स्पष्ट प्रभु
1: जय।
0: जी हाँ भाई, तो क्या बात है भाई, श्री अशोक त्रिपाठी जी जो है प्रयागराज में इस समय डाक अधीक्षक के पद पर हमारे साथ हैं, और भाई वृंदावन में तेज नारायण शुक्ल जी हैं, तो फिर मैं चाहूँगा कि भाई कुछ भजन वहाँ से भी हो जाए, और देखते हैं अब कौन है हमारे साथ। हेलो,
2: अरे सर जी, दर्द कुमार को गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: अच्छा, दर्द कुमार को आप डेडिकेट कर रहे हैं।
2: जी सर
0: जी,
2: स्टार्ट करूं?
0: जी जी।
2: प्यार की वो सौगात किस तरह भुला दूं मैं, आपका हर एक आंसू पलकों पे उठा लूं मैं, पलकों से उठा लूं मैं, किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है, आज जो मैं कुछ भी हूँ वो आपकी इनायत है, जिंदगी से कैसा शिकवा खुद से ही शिकायत है, आज जो मैं कुछ भी हूँ वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है, आपकी इनायत है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है भाई। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मिलेंगे आपके ही कार्यक्रम बहार गज़ल में ठीक 9:30 बजे, तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी हमराही। लगभग 3 साल बाद दीप्ति लखनऊ जा रही थी। लखनऊ उसके लिए एक शहर ही नहीं, एक तीर्थ था, क्योंकि वो उसका मायका था। उस शहर में पांव रखते ही जैसे उसका बचपन लौट आता था। 10 दिन के बाद भैया की बड़ी बेटी शुभ्रा की शादी थी। दीप्ति और मेघना दोपहर की गाड़ी से जा रही थी, राजीव बाद में पहुंचने वाले थे। कुछ तो उन्हें काम की अधिकता थी, दूसरे उनका तो ससुराल था, ऐन वक्त पर पहुंचकर अपना भाव भी तो बढ़ाना था। दीप्ति की बात और थी, उसने सोचा था कि कुछ दिन वहां चैन से रहेगी।

सबसे मिलेगी, बचपन की यादें ताजा करेगी और कुछ भैया भाभी के काम में भी हाथ बटाएगी। शादी वाले घर में 100 तरह के काम होते हैं। अपनी शादी के बाद पहली बार दीप्ति शादी जैसे अवसर पर मायके जा रही थी। माँ का आग्रह था कि वो पूरी तैयारी के साथ आए। माँ पूरी बिरादरी को दिखाना चाहती थी कि आखिर उनकी बेटी कितनी सुखी है, कितनी संपन्न है, या शायद दूर के रिश्ते की बुआ को दिखाना चाहती होंगी, जिनका लाया रिश्ता ठुकरा कर माँ ने दीप्ति को दिल्ली में ब्याह दिया था। लक्ष्मी बुआ भी तो उस दिन से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। शुभ्रा के विवाह में जाने का कुछ तो अपना ही चाव कम नहीं था। उस पर माँ का आग्रह, दोनों माँ बेटी बड़े ही मनोयोग से समारोह में शामिल होने की तैयारी में थीं। हर मौके पर पहनने के लिए नई और आधुनिक पोशाक, उससे मैचिंग चूड़ियां, गहने, सैंडल और न जाने क्या क्या जुटाया था। पूरी उमंग और उत्साह के साथ वो दोनों स्टेशन पहुंची। राजीव उन्हें विदा करने आए थे। उनके सहयात्री कॉलेज के लड़के थे जो किसी वर्कशॉप में भाग लेने लखनऊ जा रहे थे। हालांकि गाड़ी चलने से पहले वो सब अपने सामान के यहाँ वहाँ रख रखाव में ही लगे थे, फिर भी उन्हें देखकर दीप्ति कुछ परेशान हो उठी। उसकी परेशानी शायद उसके चेहरे से झलकने लगी थी, जिसे राजीव ने भांप लिया था। ऐसे में वो कुछ खुलकर तो नहीं कह पाए, लेकिन उसे होशियार रहने के लिए जरूर कह गए। यही कारण था कि चलते चलते उन्होंने उन लड़कों से भी कुछ इस तरह से बात की जिससे यात्रा के दौरान माहौल हल्का फुल्का बना रहे। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, वो सब अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ने लगे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है हमराही। अब तक आपने सुना दीप्ति अपनी बेटी के साथ मायके जा रही थी भैया की बेटी की शादी में। उनके सहयात्री थे कुछ लड़के जो शायद किसी वर्कशॉप में भाग लेने जा रहे थे। अकेली लड़की को लेकर सफर करती दीप्ति उन लड़कों को देखकर थोड़ी परेशान हो गई थी। अब आगे लड़कों ने अपनी अपनी जगह तय करने के लिए छीना छपटी चुहलबाजी शुरू कर दी। वैसे दीप्ति को युवा पीढ़ी से कभी कोई शिकायत नहीं रही, ना ही उसने कभी अपने और उनसे कोई दूरी महसूस की। वो तो हमेशा घर परिवार के बच्चों और नौजवानों की मनपसंद आंटी रही थी। उसका तो मानना था कि नौजवानों के बीच रहकर अपनी उम्र के बढ़ने का एहसास ही नहीं होता। लेकिन उस समय वो लड़कों की शरारतों और नोकझोंक से कुछ परेशान सी हो उठी थी। ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ गलत कर रहे थे, शायद उसके साथ मेघना का होना उसे उनके साथ जुड़ने नहीं दे रहा था। कुछ आजकल के हालात भी उसे परेशान किए हुए थे। देखने में तो सब भले घरों के ही लग रहे थे, फिर भी एक साथ 6 लड़कों का ग्रुप, उस पर किसी बड़े का उनके साथ ना होना, उस पर उम्र का ऐसा मोड़ जो उन्हें शांत सौम्य और गंभीर नहीं रहने दे रहा था। दीप्ति भला परेशान कैसे ना होती। उसका ध्यान शुभ्रा की शादी, मायके जाने की खुशी और रास्ते में बाग बगीचों खेत खलिहानों से हटकर बस उन लड़कों पर ही केंद्रित हो गया था। थोड़ी ही देर में वो उन लड़कों को नामों से ही नहीं बल्कि आदतों से भी जानने लगी। घुंघराले बालों वाला सावला सा नाटे कद का अंकित फिल्मों का शौकीन लगता था। उसके उठने बैठने में फिल्मी अंदाज था, तो बातचीत में फिल्मी डायलॉग और गानों का पुट था। एक लड़के को सब सैम कहकर बुला रहे थे। ये उसके माता पिता का रखा नाम तो नहीं हो सकता था, शायद ये दोस्तों द्वारा किया गया नामकरण था। चुस्त दुरुस्त सैम चाल ढाल और पहनावे से खिलाड़ी लगता था। मंझली कद काठी वाला ईश ग्रुप का लीडर जान पड़ता था। नेवी कट बाल, मूंछों की पतली सी रेखा और बड़ी बड़ी आंखों वाले ईश से पूछे बिना लड़के कोई काम नहीं कर रहे थे। बिना मैचिंग की ढीली ढाली टी शर्ट पहने बिखरे बाल वाला बेपरवाह तबीयत वाला समीर था, जो हर समय च्युइंगम चबाता हुआ बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा था। दीप्ति के पास बैठे लड़के का नाम मनीष था। लंबा गोरा चिट्टा नजर का चश्मा पहने वो नीली जीन्स और कीमती टी शर्ट में बड़ा स्मार्ट लग रहा था। कुछ शर्मीले स्वभाव का पढ़ाकू सा लगने वाला मनीष एक अंग्रेजी नॉवल लेकर बैठा ही था कि आगे बढ़कर रजत ने उसका नॉवल छीन लिया। रजत बड़ा ही चुलबुला गोल मटोल हसमुख लड़का था। हंसते हुए उसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ते थे। रजत पूरे रास्ते हंसता हंसाता रहा। पता नहीं क्यों दीप्ति को लगा कि उसकी हंसी उसकी शरारतें सब मेघना के कारण है। इसीलिए हंसना तो दूर, उसकी नजरों का पहरा हर दम मेघना पर बैठा रहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है हमराही। अब तक आपने सुना दीप्ति अपनी बेटी मेघना के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। उसके सहयात्री थे 6 लड़के और उन लड़कों की वजह से मेघना को अकेले लेकर सफर करने की चिंता दीप्ति को परेशान किए हुए थी। अब आगे दीप्ति के ही कारण मेघना बेचारी भी दबी घुटी सी या तो खिड़की से बाहर झांकती रही या आंखें बंद करके सोने का नाटक करती रही। अपने हम उम्र उन लड़कों के साथ ना खुलकर हंस पाई, ना ही उनकी बातचीत में शामिल हो सकी। वैसे ना ही दीप्ति ऐसी माँ थी और ना ही मेघना ही इतनी पुरातनपन थी। वो तो हमेशा कोएड में ही पढ़ी थी। वो क्या कॉलेज के लड़कों के साथ बातचीत हंसी मजाक नहीं करती होगी? फिर भी न जाने क्यों, शायद घर से दूरी या अकेलापन दीप्ति के मन में असुरक्षा की भावना को जन्म दे रहा था। उनसे परिचय के आदान प्रदान और बातचीत में दीप्ति ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। उसे लगा वो मेघना तक पहुंचने के लिए उसे सीढ़ी बनाएंगे। उन लड़कों के बहानों से उठी नजरें जब मेघना से टकराती तो दीप्ति बेचैन हो उठती। उस दिन पहली बार मेघना दीप्ति को बहुत खूबसूरत नजर आई और पहली बार उसे बेटी की खूबसूरती पर गर्व नहीं, भय हुआ। उसे शादी में इतने दिन पहले इस तरह जाने के अपने फैसले पर भी झुंझलाहट होने लगी। वास्तव में मायके जाने की खुशी वो भूल ही गई थी कि आजकल औरतों का अकेले सफर करना कितना जोखिम का काम है। वो सभी खबरें जो पिछले दिनों उसने अखबारों में पढ़ी थीं, एक एक करके उसके दिमाग पर दस्तक देने लगी। कई घंटों के सफर में आमने सामने बैठे यात्री भला कब तक अपने आसपास से बेखबर रह सकते थे। काफी देर तक तो वो दोनों मुंह सी कर बैठी रहीं, लेकिन धीरे धीरे दूसरी तरफ से परिचय पाने की उत्सुकता बढ़ने लगी। शायद यात्रा के दौरान ये स्वाभाविक भी था। यदि सामने कोई परिवार बैठा होता तो क्या खाने पीने की चीजों का आदान प्रदान किए बिना वो रह सकती थी? और सफर में कुछ महिलाओं का साथ होता तो क्या वो ऐसे ही अजनबी बनी रहती? उन कुछ घंटों के सफर में तो वो एक दूसरे के जीवन का भूगोल, इतिहास, भूत, वर्तमान सब बांच लेती। चूंकि वो जवान लड़के थे और दीप्ति के पास जवान बेटी थी, इसलिए उनकी उठी हर नजर उसे अपनी बेटी से टकराती लगती। उनकी कही हर बात उसी को ध्यान में रखकर कही हुई लगती। उनकी हंसी मजाक में दीप्ति को छींटाकशी और ओछापन नजर आ रहा था। कुछ घंटों का सफर जैसे सदियों में फैल गया था। दोपहर कब शाम में बदली और शाम कब रात में बदल गई उसे खबर ही ना हुई, क्योंकि उसके अंदर भय का अंधेरा बाहर के अंधेरे से ज्यादा घना था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है हमराही। अब तक आपने सुना दीप्ति अपनी बेटी मेघना के साथ ट्रेन से मायके जा रही थी। रास्ते में उसके आसपास जो लोग बैठे थे वो 6 लड़के थे जो कि मेघना के ही हम उम्र थे। दीप्ति को बहुत डर लग रहा था, वो पूरी तरह से सचेत होकर बैठी हुई थी। अब आगे, जब भी कोई स्टेशन आता लड़के उनसे पूछते कि उन्हें चाय पानी या किसी दूसरी चीज की जरूरत तो नहीं। उन्होंने मेघना को गुमसुम बैठे बोर होते देखा तो अपनी पत्र पत्रिकाएं भी पेश कर दी। जब जब उन्होंने कुछ खाने के लिए पैकेट खोले तो बड़े आदर से पहले उन्हें पूछा, हालांकि उन लोगों ने हमेशा मना कर दिया। दीप्ति ने अपने आप को बहुत समझाया कि जब आपत्ति करने लायक कोई बात नहीं है तो वो क्यों परेशान हो रही है, वो क्यों सहज नहीं हो जाती। लेकिन तभी मन के किसी कोने में बैठा भय फन फैला देता, कहीं उसकी जरा सी ढील बात को इतनी दूर तक ना ले जाए कि वो उसे समेट ही ना सके। वो तो पल पल यही मना रही थी कि ये सफर खत्म हो और वो खुली हवा में सांस ले सके। कानपुर स्टेशन आने वाला था, गाड़ी वहां कुछ ज्यादा देर के लिए रुकती थी। डिब्बे में स्वाभाविक हलचल शुरू हो गई थी, तभी एक अजीब सा शोर कानों से टकराने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। स्टेशन आते आते बाहर का कोलाहल कर्णभेदी हो गया था। हर कोई खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश कर रहा था कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी। बाहर का दृश्य सन्न कर देने वाला था। हजारों लोग गाड़ी के पूरी तरह रुकने से पहले ही उस पर टूट पड़े थे, जैसे शेर शिकार पर झपटता है। स्टेशन पर चीख पुकार, लड़ाई झगड़ा, अभद्र भाषा, हर तरफ जैसे आतंक का वातावरण था। इससे पहले कि दीप्ति और मेघना कुछ समझ पाते, बीसियों लोग डिब्बे में चढ़कर उनकी सीटों के आसपास यहां वहां जुटने लगे, जैसे गुड़ की डली पर मक्खियां चिपकती हैं। वो स्टेशन नहीं, मानो मनुष्यों के समुद्र पर बंधा हुआ बांध था जो गाड़ी के आते ही टूट गया था। प्लेटफॉर्म पर सिर ही सिर नजर आ रहे थे, दिल रखने की भी जगह नहीं थी। मेघना को पीछे हटाकर सैम और अंकित ने खिड़कियां बंद कर दी। पलट कर देखा, मनीष, रजत और ईश तीनों अंदर घुस आए आदमियों की भीड़ को खदेड़ने में लगे थे। किसी को धकिया रहे थे तो किसी से हाथापाई हो रही थी। समीर ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी सारा सामान बंद खिड़कियों के पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लड़कों को उन धोती कुर्ताधारी निपट देहातियों से उलझते देखकर जैसे ही दीप्ति ने हस्तक्षेप करना चाहा तो ईश और सैम एक साथ बोल उठे, आंटी जी आप दोनों निश्चिंत होकर बैठिए, बस जरा सामान पर नजर रखिएगा, इनसे तो हम निपट लेंगे। तब याद आया कि सुबह लखनऊ में एक विशाल राजनीतिक रैली होने वाली थी जिसमें भाग लेने ये सारी भीड़ लखनऊ जा रही थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु। हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है हमराही। अब तक आपने सुना दीप्ति अपनी बेटी मेघना के साथ ट्रेन से मायके जा रही थी। रास्ते में उसके सहयात्री बने 6 उसकी ही बेटी की उम्र के लड़के, जिसकी वजह से दीप्ति बहुत चिंतित थी और उनसे उचित दूरी बनाकर रखे हुए थी। तभी एक स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो जैसे यात्रियों का सैलाब ट्रेन पर चढ़ गया और वो लड़के दीप्ति और मेघना को सुरक्षित रखते हुए उस भीड़ से जूझने लगे। अब आगे पूरी गाड़ी में लूटपाट और जंग छिड़ी थी, जैसे वो गाड़ी ना होकर शोर और दहशत का बवंडर था जो पटरियों पर दौड़ता चला जा रहा था। लड़कों का पूरा ग्रुप उन दोनों माँ बेटी की हिफाजत के लिए डट गया था। एक मजबूत दीवार खड़ी थी उनके और अनचाही भीड़ के बीच। उन 6 की तत्परता, लगन और निष्ठा को देखकर मन ही मन दीप्ति नतमस्तक थी। उस पल शायद उसका अपना बेटा भी होता तो क्या इस तरह अपनी माँ और बहन की रक्षा कर पाता? कानपुर से लखनऊ तक के उस कठिन सफर में वो ना बैठे ना उन्होंने कुछ खाया पिया। इस बीच में अपनी शरारतें, चुहलबाजी, फिल्मी अंदाज सब कुछ भूल गए थे। उनके सामने जैसे एक ही उद्देश्य था, दीप्ति और मेघना और सामान की हिफाजत। दीप्ति आत्मग्लानी के दलदल में धंसती जा रही थी। इन बच्चों के लिए उसने क्या धारणा बना ली थी जिसके कारण उसने एक बार भी इनसे ठीक से व्यवहार नहीं किया, एक बार भी इनसे प्यार से नहीं बोली, ना ही इनके हास परिहास अथवा बातचीत में शामिल हुई। क्या परिचय दिया उसने अपनी शिक्षा, अनुभव, सभ्यता और संस्कारों का, और बदले में इन्होंने दिया इतना शिष्ट सम्मान और सुरक्षा। लखनऊ स्टेशन का हाल तो उससे भी बुरा था। प्लेटफॉर्म तो जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया था। सामान, बच्चे, महिलाओं को लेकर यात्री उस भीड़ से निपट रहे थे। चीख पुकार मची थी, भीड़ स्टेशन की दुकानें लूट रही थी, दुकानदार अपना सामान बचाने में लगे थे। प्रलय का सा आतंक हर यात्री के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। दीप्ति की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। इतना सारा कीमती सामान और साथ में खूबसूरत जवान बेटी, उस पर ऐसी भीड़ जिसकी ना कोई नैतिकता थी ना सोच, बस एक उन्माद था। वैसे तो दीप्ति के भैया उन्हें लेने स्टेशन आए हुए थे, लेकिन उस भीड़ में वो उन्हें कहां मिलते? उस भीड़ में तो सामान उठाने के लिए कुली भी नहीं मिल सका। उन लड़कों के पास अपना तो मात्र एक एक बैग ही था। अपने बैग के साथ सैम ने उनकी अटैची उठा ली। छोटी अटैची दीप्ति के मना करने पर भी मनीष ने उठा ली। मेघना के पास पानी की बोतल और दीप्ति के पास मात्र उसका पर्स रह गया। उनके दोनों बैग भी ईश और अंकित के कंधों पर लटक गए थे। उन सब ने भीड़ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक घेरा सा बना लिया जिसके बीच वो दोनों चल रही थीं। उन्होंने उन्हें स्टेशन से बाहर ऐसे सुरक्षित निकाल लिया जैसे आग से बचाकर निकाल लाए हों। दीप्ति के पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उस दिन अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना सोचने मात्र से उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। दीप्ति ने उनका आभार प्रकट किया तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात कर रही हैं आप आंटी, ये तो हमारा फर्ज था। दिल ही दिल में सैकड़ों आशीर्वाद देते हुए दीप्ति ने उन्हें शुभ्रा की शादी में शामिल होने की दावत दी। लेकिन उनका आना संभव नहीं था क्योंकि वो मात्र 4 दिनों के लिए ही लखनऊ एक कार्यशाला में शामिल होने आए थे। उनके लिए 10 दिन रुकना असंभव था।
फिर भी एक शाम दीप्ति ने उन्हें घर पर खाने पर बुलाया, सबसे उनका परिचय करवाया। वो मुलाकात बहुत ही सहज, रोचक और यादगार रही। सभी लड़के सुशिक्षित, सभ्य और मिलनसार थे। सच, कभी कभी सफर में ऐसे हमराही मिल जाते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता, पर जिंदगी भर का एक प्यारा बंधन बंध जाता है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी हमराही। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: दिल के सूने आंगन को जो सुरों से सजा दे, रूठे हुए जज्बातों को एक बार फिर जगा दे। संगीत वो पावन जुबान है इस कायनात की, जो बिना कुछ बोले ही हर दर्द को मिटा दे। सांसों की लय में जब कोई साज बजता है, खामोश धड़कनों में भी फिर एक राग सजता है। शब्द कम पड़ जाते हैं हाले दिल कहने के लिए, तब संगीत ही रूह की आवाज बनकर बहता है।
2: जिंदगी के शोर में जो अजब सा सुकून दे जाए, खोई हुई खुशियों को जो वापस मोड़ लाए, ये संगीत ही है जो तन्हाइयों का साथी बनकर आंखों की नमी को भी सुरों में मुस्काना सिखाए। सुर, ताल और शब्दों का ये वो हसीन संगम है जिसके बिना जिंदगी का हर एक रंग मध्यम है। जो डूब गया एक बार संगीत के समंदर में, उसकी रूह के लिए फिर हर मौसम खुशनुमा सा शबनम है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर लेकर के आए हैं एक खुशनुमा सा मौसम कह लें, शबनम कह लें, या फिर रात के सफर का वो जादू भरा नगमा कह लें। मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
3: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: लेकर के आए हैं एक नए संगीतकार, एक नए संगीत को सजाने वाली शाम को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रात के सफर को एक बहुत ही प्यारे संगीतकार के साथ। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

सलिल चौधरी ऐसे पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने 13 भाषाओं में संगीत दिया, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती और इसके सहित कई सारी भाषाओं में। उन्हें इसीलिए जाना जाता है कि भाषा कोई भी हो पर हर भाषा पर उनकी एक पकड़ और अपने शास्त्रीय संगीत के लिए उनका लगाव कुछ अलग ही है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को ही अपनी पूजा माना और हमेशा उनके गीतों में इसकी एक झलक भी हमने देखी है। सलिल चौधरी जी की बात करें तो वो हमेशा जमीन से जुड़ी हुई कहानियों में कुछ ना कुछ ढूंढ लिया करते थे। जमीन से जुड़ी हुई कहानियों का मतलब है कि एक बार एक ऐसी चीज़ हुई कि सलिल चौधरी जी जो थे वो अपने गांव में थे और वहां पर दो लोग जो थे वो अपनी 2 बीघा जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 2 बीघा जमीन के लिए उनके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। सलिल चौधरी जी ने जब उसे देखा तो उन्होंने अपनी एक फिल्म के लिए, जिसका नाम भी उन्होंने 2 बीघा जमीन ही रखा, जो कि 1953 में रिलीज हुई, उसकी कहानी को बिल्कुल उन्हीं के झगड़े को देखते हुए उन्होंने लिखा। तो कुछ ऐसा ही अंदाज था उनका कि वो हमेशा जिन चीज़ों को देखते थे, सुनते थे, उन्हें अपनी फिल्मों में और अपने संगीत में ढाल लिया करते थे। और कुछ अलग ही था उनका ऑरा, कुछ अलग ही था उनका जुनून, उनका नशा, उनके गीतों का नशा, जो बिल्कुल ही कुछ अलग था।

कहा जाता है कि जो जादूगर होता है वो किसी न किसी कला के साथ में अपनी जादूगरी दिखाई देता है। बिल्कुल, संगीत को महसूस करने वाले लोग, संगीत को अपनाने वाले लोग कुछ यूं ही होते हैं, जिनके स्वरों में ऐसा जादू होता है कि उनकी आवाज हर किसी में फिट हो जाती है, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो वतन को समर्पित। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक ऐसा ही गीत जो कि सलिल जी की आवाज में बहुत ही प्यारा आज भी हम सभी के लफ्जों में है, ऐ मेरे

वतन ए मेरे प्यारे वतन। फिल्म काबुलीवाला 1961 में ये फिल्म आई थी। इनके पीछे भी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है इस गीत के पीछे। जब ये गीत रिलीज हुआ था, जब ये गीत गाया गया था, एक छोटी सी कहानी है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। मन्ना डे द्वारा गाया गया यह गीत देशभक्ति भी आज भी लोगों को रुला देता है। इस गाने को बनाते समय सलिल दा खुद अपने देश और अपने घर असम के बागानों की यादों में खोए हुए थे। उन्होंने इस गाने में अफगानी संगीत यादों में इस तरीके से उसे पिरोया कि रबाब वाद्य यंत्र और भारतीय शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया गया कि यह गाना हर उस व्यक्ति का राष्ट्रगान बन गया जो अपने घर से दूर रहता है, यानी कि सैनिक, हम और आप। आइए इस प्यारे से गीत को सुनेंगे, लेकिन एक गीत और है जो कि हम सभी को बहुत प्यारा है, कोई होता जिसको अपना कहते। फिल्म मेरे अपने जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। इस गाने के पीछे भी एक छोटी सी याद है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ये गाना किशोर कुमार के सबसे बेहतरीन उदास गानों यानी कि सैड सॉन्ग में से एक है। इस गाने के पीछे की कहानी यह है कि सलिल दा आमतौर पर गंभीर धुनों के लिए जाने जाते थे, जबकि किशोर कुमार अपने चुलबुली गायकी के लिए मशहूर थे। सलिल दा ने किशोर कुमार को बिना किसी बड़े वाद्य यंत्र के बिल्कुल शांत होकर गाने को कहा। फिर क्या था, किशोर कुमार ने इस गाने को इतनी शिद्दत से गाया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक संगीतकार की आवाज में, दिल में, जहन में एक प्यारा सा, एक जादूगर वाला इंसान छिपा होता है जो अपनी आवाज के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से हर किसी को जीत लेता है। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को और हम फिर मिलते हैं आपको एक छोटे से इस गीत के बाद।

वो गाना तो आप सभी ने सुना होगा, आनंद का मशहूर गाना, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। सलिल दा ने पहली बार आके ये गाना दिया था। मन्ना डे को लगा कि वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सलिल दा ने कहा जो जादू पहली बार आया है वो दोबारा नहीं आएगा। और उनकी ये बात कुछ अलग सी भी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी किसी काम को हम पहली बार करते हैं तो पहली बार में वो कुछ अलग सा ही होता है। इसलिए सलिल दा का भी कहना यही था कि मुझे ये गाना बिना रीटेक के शूट करना है और मैं बिना रीटेक के शूट करके दिखाऊंगा। और उन्होंने दिखाया भी। इसीलिए तो कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं, मतलब जिनके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, उनकी अपनी बातों पर जुड़े रहने की और अड़े रहने की जो एक काबिलियत होती है ना, वो भी कुछ अलग होती है कि मतलब अगर ठान लिया है तो फिर तो हम करके ही रहेंगे। और कुछ ऐसे ही मानना हमारे सलिल दा का भी था, जिनका कहना था कि भाई अब कह दिया है तो अब तो मैं करके ही रहूंगा। एक किस्सा और बहुत मशहूर है कि आप जानते हैं फिल्म मधुमती के गाने आ जा रे परदेसी की कंपोजिशन हो रही थी, जो कि इतनी खूबसूरत थी कि रिहर्सल के दौरान ही लता मंगेशकर जी बेहद तनाव में आ गईं। रिकॉर्डिंग रूम में ही कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा कि मैं इसे कैसे करूंगी, क्या करूंगी, किस तरीके से करूंगी। लेकिन जब सलिल दा ने उन्हें समझाया, उनसे बात की, तो उन्होंने तुरंत ही उस गाने को रिकॉर्ड कर लिया। उनका सारा डर, उनका सारा जो भी मतलब जो भी वो सोच रही थी, डर रही थी, घबरा रही थी, वो सब खत्म हो गया। तो कहते हैं ना कि हमें हमेशा हमारी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, कोई तो चाहिए जो आपको आपकी जब भी आप डरें तो आपको मोटिवेट कर सके। और ऐसे ही स्टार्स को मोटिवेट करने वाले, हर किसी को आगे ले जाने वाले और सबके डर को अपने संगीत और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट से खत्म करने वाले थे हमारे सलिल दा। तो आइए चलिए सुनते हैं उन्हीं का एक प्यारा सा सॉन्ग,

बिल्कुल, ये मैं क्या सोच रही थी आपको पता है? मैं सोच रही थी कि हर उस इंसान को सम्मान पाने का अधिकार होता है जो पूरी शिद्दत से काम करता है, पूरे तत्परता से काम करता है, अपने देश को समर्पित, अपने लोगों के प्रति बहुत गंभीर प्यार और अपने काम को ही पूजा करने वाला इंसान। तो ऐसे इंसानों को पुरस्कार और सम्मान तो जरूर मिलना चाहिए। उनमें से ही एक सलिल चौधरी हैं, जिनके अद्भुत योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे पहली फिल्म जो कि मधुमती आई थी, उनके सदाबहार गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार भी फिल्म संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने जीता। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। महाराष्ट्र का गौरव पुरस्कार कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। अब आते हैं वो क्षण जो हर किसी के लिए जीवन में आता ही है, यानी कि जीवन का अंत। मरणोपरांत भी बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके क्रांतिकारी गानों और योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार ने उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा था। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था, जिसे हम आज भी देखते आ रहे हैं। आइए चलते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर और सुनते हैं उनके प्यारे से नगमों को। मैंने

मौसम हसी। ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा, सुना भी होगा और कभी कभी हम इस गाने पे झूमते भी हैं, क्योंकि भाई गाना ही कुछ ऐसा है, सुहाना सफर और उस पर मौसम हसी। तो मतलब सफर भी सुहाना है और मौसम भी हसीन है, तो फिर तो क्या ही कहना। तो चलिए अब जानते हैं कि इस गाने के पीछे की कहानी आखिर क्या है। तो इस गाने को गाया है मुकेश ने, और सलिल दा चाहते थे कि इस गाने में वो पूरी तरीके से ये दिखाएं कि हमारी जो मदर नेचर है वो कितनी खूबसूरत है, यानी कि अगर आप जाते हैं प्रकृति के बीच तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है और वो आपसे कितना कुछ कहती है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। क्या है ना, हम इंसानों में एक क्वालिटी होती है, क्या होती है आपको पता है? मैं बताती हूँ, हम सिर्फ शोरगुल सुनना चाहते हैं, इतनी प्यारी सी मीठी सी डिसेंट सी आवाज सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन सुनाने का काम इस गाने ने किया है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम में किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बजाय मुकेश जी को सीधा कहा कि आप माइक से थोड़ा दूर और पास खड़े होकर गाने गाएं, जिससे वो ऐसा लगे उसमें एक गूंज पैदा हो और ऐसा लगे कि वो हमारी नेचर से जुड़ी हुई है, जो आज भी हमारे कानों में मतलब ऐसे मिठास घोलती है ना कि उसके आगे आम की मिठास भी कम पड़ जाती है। तो कुछ ऐसे ही गाने हैं और कुछ ऐसी है इन गानों की मिठास। तो भाई हम भी खोना चाहते हैं ना इन गानों की मिठास में, आप खोना चाहते हैं या नहीं? मुझे तो लगता है खोना चाहते हैं। तो चलिए खोते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: ओ सजना बरखा बहार आई। भाई फिल्म परख, अगर आप फिल्म परख के इस गाने को याद करेंगे ना, तो बरखा आई या नहीं आई पर बहार तो जरूरी आ जाएगी। और बहार कहाँ आएगी पता है आपको? बहार आएगी आपके चेहरे पे, क्योंकि इतना प्यारा सा गाना अगर कोई मेरे सामने चलाएगा तो भाई मैं तो रोते रोते भी हंस दूं। तो चलिए जानते हैं कि ये गाना है क्या, क्या कहानी है और क्या जुड़ा हुआ है इस गाने में जो ये गाना इतना ज्यादा खूबसूरत है। तो ये गाना भारतीय सिनेमा में सबसे बेहतरीन बारिश के गानों में से एक है। सलिल दा ने इस गाने में सितार और संतूर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है जो बारिश की बूंदों के गिरने का एहसास हमें ऐसा कराता है ना कि ऐसा लगता है कि बस बारिश में ही खड़े हैं और बस बारिश ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने को गाते समय उन्हें सचमुच ऐसा लगा जैसे वो बारिश के बीच खड़ी होकर भीग रही हों। तो आप भी करना चाहते हैं बारिश का एहसास? भाई देखिए गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अब इन गर्मियों में कौन नहीं करना चाहता है बारिश का एहसास? आप करना चाहते हैं, मुझे तो यहीं से बैठे बैठे ऐसा महसूस हो रहा है लिसनर्स कि आप करना चाहते हैं। तो चलिए इस प्यारे से गाने के साथ करते हैं भीनी प्यारी प्यारी बारिश का एहसास और खो जाते हैं इस प्यारे से गाने में।
1: ओ सजना

0: बिखरे जो स्वर अनगिनत उन्हें पिरोया साज में, हर एक लय हर एक ताल डूबी हो जैसे राज में। छोड़कर दुनिया की बातें संगीत की धुन में खो गया, पत्थर भी पिघल जाए ऐसा संगीतकार वो हो गया।
1: जब उंगलियां चलती हैं तारों पर तो जादू छाता है, हर एक गीत हर एक सुर सीधे दिल को छू जाता है। कभी धीमी सी गूंज कभी तूफान सा संगीत है, इस कला की साधना में ही छिपी उसकी हर जीत है। मंजिलें मिले न मिले उसे परवाह नहीं इस बात की, वो तो बस तलाश में है एक नई और मीठी रात की। धड़कनों को अपनी उसने संगीत का रूप दे दिया, दुनिया को जीने का एक नया सुरूर दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान हमारे बीच न रह करके भी हमारी धड़कनों में धड़कते हैं, कहीं आवाज बनकर तो कहीं सांच बनकर और कहीं मीठी सी याद बनकर। सलिल जी ने भी हमारे संगीत को यूं पिरो दिया कि हमारी धड़कनों में उनका नाम आज भी कहीं ना कहीं वाजिब है। आइए अब हम लेते हैं आपसे विदा रात के सफर में भूले बिसरे गीत में। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश,
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम,
1: फिर मिलेंगे एक नए दौर और एक नए संगीतकार के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।